0: चलो आप मुझे ये बताओ, आने वाली राखी की तैयारियां करनी है, आने वाले पूजा की सामग्री से लेकर लुम्बा से लेकर हर एक ओकेजन को खास बनाना है। इंडिया से दूर रहते रहते हम सब कोई सेलिब्रेशन अधूरा छोड़ते नहीं हैं, तो उसको और परफेक्ट बनाने की तरफ क्यों नहीं सोचते हाँ। एनीवेज, अगर आप भी आने वाली रक्षाबंधन के लिए परफेक्ट राखी के सॉल्यूशंस, गिफ्टिंग सॉल्यूशंस, पूजा के सॉल्यूशंस अगर ढूंढ रहे हैं, तो ऐसे में क्या करना है, घर बैठे बैठे पहले तो एक्सप्लोर करना है कि चल क्या रहा है मार्केट में और सिंगापुर में आपको बेस्ट कलेक्शन कहाँ मिलेगा। अब ये काम आप करें उससे अच्छा हम करके आ जाए हाँ। सो डेफिनेटली मैं आज अनुपम मसी मॉर्निंग शो पर आपको बताना चाहेगी, ज्योति स्टोर्स एंड फ्लावर शॉप अब ऑनलाइन भी आ चुकी है jyoti.com.sg पर। यहाँ पे आप एक्सप्लोर करके अपने फेवरेट प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हैं एंड डिटेल्स भी जान सकते हैं। तो तैयारी कीजिए राखी पूजा लुम्बा की एंड सुनते रहिए रेडियो मसी 24/7 लाइव। मैं आरजे नुपुर आपके साथ।
1: श्रेया जरा उठ के रेडियो मस्ती स्पीकर पे लगा देना।
2: बाय की डन है मम्मा।
3: ड्यूटी
4: लास्ट टाइम मैं उठा था ना,
3: मैं उठता था।
5: तेरी मेरी बनती नहीं पर तेरे बिना मेरी चलती भी नहीं। इस रक्षाबंधन इस नोक झोक से बंधे रिश्ते को और भी मजबूत करें ज्योति स्टोर्स एंड फ्लावर शॉप के साथ, वन कैंपल लेन। राखी लुम्बा और पूजा के सभी सामान के लिए आपका वन स्टॉप शॉप अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल एट ज्योति।

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर
1: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन जोश में
2: ऐसा होता है जब आप फिल्टर के भी फिल्टर लाइफ में लगा देते हैं ना, तब किसी और का नहीं हमारा ही नुकसान हो जाता है। अरे यार, हमें तो ये चीज पसंद है, इस कलर में पसंद है, इस डिजाइन में पसंद है, इस हाइट में पसंद है और इस ब्रांड में पसंद है। और वो लोग जो ये सब स्पेसिफिकेशंस पर नहीं घिरते उन्हें सारी चीजें जल्दी मिल जाती है। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं आरजे नुपुर आपके साथ। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि शुरुआत में बॉलीवुड सिंगर्स जो है या एक्टर्स जो है ना, वो अपने लिए बहुत स्पेसिफिकेशंस बना देते थे कि ये करूंगा, ये नहीं करूंगा एंड ये तो डेफिनेटली नहीं करूंगा। इस चक्कर में उनका बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है मॉनेटरी। एंड ये बात का जिक्र किया है किसने, 90s के एवरग्रीन सिंगर कुमार सानू ने। उन्होंने बोला कि जब किसी सॉन्ग्स में वल्गर लिरिक्स होते थे तो मैं उनको इनकार कर देता था। और कई बार जो मुझे बड़े बड़े डॉन्स और इन सब से मुझे सिंगिंग की डिमांड्स आती थी, उन चीजों को लेकर भी मैं इनकार कर देता था। तो मॉनेटरी जितना मुझे लॉस हुआ है, आई डोंट थिंक किसी और को हुआ होगा। तो डेफिनेटली ये जो लॉस है, ये तो सालों साल याद आता है। आपके साथ भी तो कभी ऐसा हुआ होगा कि बहुत ही प्रॉफिटेबल कोई प्रोजेक्ट था, कोई डील थी, लेकिन आपने वक्त रहते उसे मना कर दिया। क्यों? क्योंकि वो आपके एथिक्स के अकॉर्डिंग नहीं थी। कोई बात नहीं, जो हो गया उस पर मिट्टी पाते हैं और सुनते हैं आगे बातचीत। रेडियो मसी 24/7 लाइव पर मैं आरजे नुपुर आपके साथ।
3: You're tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste, behnor bhaiyo. Main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

जब राजस्थान की हवाएं सिंगापुर के शाही स्वाद में घुल जाए, जब लाल मांस, दाल बाटी चूरमा, केर सांगरी और मीठे मीठे घेवर की खुशबू दिल को छू जाए, जब शाही महारानी नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट लेकर आए द रॉयल फ्लेवर्स ऑफ राजस्थान का एक्सक्लूसिव 10-day फेस्टिवल, तो बस बात शाही बन जाए। रॉयल फ्लेवर्स ऑफ राजस्थान बाय शाही महारानी नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट 14th to 23rd August. रिजर्व एंड प्रीपे ऑनलाइन टू एंजॉय द अर्ली बर्ड मेन्यू एट जस्ट $78 plus पर पर्सन एक्सक्लूसिवली फॉर डिनर। बुक योर रॉयल एक्सपीरियंस टुडे एट www.shahimaharani.com.

यू नो व्हाट, ऐसे कहा जाता है ना कि शेर को सवा शेर जरूर मिल जाता है. हाँ, तो देखो अच्छे लोगों को अच्छे लोग मिल ही जाते हैं या उनसे बेटर मिल जाते हैं. और मैं तो कहूंगी अच्छे ऑफर्स में बेटर ऑफर्स भी मिल जाते हैं अगर आप उस डायरेक्शन में सोचे तो. रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं आरजे नुपुर आपके साथ. और आजकल ना आप बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल ऑप्ट कर रहे हैं, दिखाई तो दे रहा है, असर भी आने लगा है. लेकिन हेल्दी लाइफस्टाइल में सबसे बड़ा रोल होता है आपकी ईटिंग हैबिट्स. एंड डेफिनेटली उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे, जीजी मार्ट के प्लेटफॉर्म के साथ, जहां पे आपको प्रीमियम वैल्यू के कृषिवल नट्स मिलते हैं, ड्राई फ्रूट से लेकर हर एक तरह की रेंज आपको ऑर्गेनिक मिलती है. एंड अगर आप मस्ती मीडिया के यानी हमारे लिसनर हैं तो आपके लिए एक स्पेशल ऑफर है. पता है क्या, कृषिफल नट्स अगर आपने मिनिमम 100 सिंगापुर डॉलर के परचेज किए एट फेयर प्राइस रोड शो जो कि सिटी स्क्वायर मॉल में चल रहा है, वहां से खरीदने पर वो जो रिसिप्ट है अगर आप जीजी मार्ट के बैलेस्टियर रोड वाले ब्रांच में दिखाएंगे तो आपको एडिशनल 40% का वैल्यू ऑफ मिलेगा हर तरह के प्रोडक्ट्स पर, वो चाहे नट्स हो, ग्रोसरी हो, एवरीथिंग. राइट, सो आप 100 सिंगापुर डॉलर के नट्स खरीदिए और अपनी रिसिप्ट सबमिट कीजिए एंड डेफिनेटली आप ना ये ऑफर 23rd of August तक अवेल करके ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स उठा सकते हैं. रेडियो मसी 24/7 लाइव पर मैं आरजे नुपुर आपके साथ.

0: सुन टकाटक।
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
2: सो यू नो व्हाट, आज ना बहुत ही स्पेशल ओकेजन है। क्यों? क्योंकि आप थोड़ा सा और गहराई से मेरी बातों को सुन सकते हैं और एक फेमस सी मूवी का एक फेमस सा डायलॉग गेस कर सकते हैं। देखो, आज है नेशनल रेडियो डे एंड डेफिनेटली ये प्लेटफॉर्म हमारे लिए कितना बेहतर है, हमारे लिए कितना रिलेटेबल है, हम लोग कितना आपस में कनेक्ट कर पा रहे हैं, ये बातें हमें भूलनी नहीं चाहिए, राइट? 18वीं सदी में जब इसका पहली बार यूज हुआ था, अलग तरह से, है ना, बहुत ही आप कह सकते हैं कुछ सौ मीटर जो है ना उन तक रेंज जाती थी। लेकिन वो कहते हैं ना, इंडिया की आजादी के दौरान रेडियो का जो यूज है वो अलग लेवल पर किया गया, और इस लेवल पर किया गया कि उस थीम के ऊपर मूवीज बना दी गई। सो डेफिनेटली मैं आज नेशनल रेडियो डे के ओकेजन पर एक फेमस सी मूवी का एक फेमस डायलॉग प्ले करने वाली हूँ, और ये डायलॉग कौन सी मूवी से है, यू हैव टू गेस। तो चलिए डायलॉग सुनिए।
3: अंग्रेजों को लग रहा है कि उन्होंने क्विट इंडिया का सर कुचल दिया है, लेकिन आजाद आवाजें कैद नहीं होती। यह हिंदुस्तान की आवाज, हिंदुस्तान में कहीं से कहीं पे हिंदुस्तान में।
2: बिल्कुल लग रहा, पहचान गए हैं सारा अली खान की आवाज में ये डायलॉग। कौन सी मूवी से है जिसमें रेडियो का एक अहम हिस्सा दिखाया गया है, तो बता दीजिए मेरी जान। और आप पहुंच सकते हैं 9151-8963 पर टेक्स्ट या व्हाट्सएप के थ्रू सही जवाब देने के लिए। आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ है।

0: दस का बीस।
1: अरे अरे, अब बस 10 से दिल कहाँ भरेगा।
2: मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है। टाइम टू रेज द बार। रम्मा मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक, फुल ऑन रेणुका स्टाइल। Now, pumping up your Thursday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rockstar Renuka with the week's top chart busters.

0: कुछ पुरानी धुनें, कुछ भूली बिसरी यादें,
1: किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान,
0: कोई आवाज, कोई साज। सिनेमा की दुनिया के किस्से रुलाते, हंसाते, उदासी भरे, खिलखिलाते किस्से समर के साथ रेडियो मसी 24/7 लाइव पर।

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर
1: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन जोश में
2: You know what? अगर कोई मूवी रिलीज होने वाली है ना तो पहले से माहौल बना दो पॉजिटिव नहीं नेगेटिव मतलब लोग उस मूवी को ट्रोल करने लगे और वो सोचें क्यों ना इस मूवी को हम थिएटर जाकर देखें और इस तरह से देखें कि हम उसकी वीडियोस को ट्रोल कर पाए है ना आप समझ रहे हैं ना मेरी बात लोग मूवी देखने तो जाते हैं लेकिन किस लिए जाते हैं ताकि उसके बारे में बात कर सके उसको और ज्यादा ट्रोल कर सके और खुद बहुत ज्यादा फेमस हो सके सो ऐसे में ही टॉक्सिक मूवी जो है यश स्टारर बहुत जल्द आने वाली है और इसमें फीमेल किरदार निभाया है कियारा आडवाणी ने और जब उन्होंने ये मूवी शूट करी थी तब वो थी प्रेग्नेंट एंड इसको लेकर यश ने पता क्या बोला है कि उन्होंने एक बॉडी गार्ड की तरह कियारा आडवाणी का ध्यान रखा है उन्होंने डबल रोल अदा करे हैं मतलब एज एन एक्टर तो काम किया ही किया है बट एज अ बॉडी गार्ड भी एक्ट्रेस का पूरा ख्याल रखा है और बहुत सेंसिटिविटी के साथ काम किया है तो इन्होंने तो अपनी तारीफ कर दी लेकिन क्या हमें तारीफ करने का मौका मिलेगा मतलब ये मूवी हमारे अकॉर्डिंग बन पाएगी हाँ आर जे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ है डोंट गो एनीवेयर मिर्जान आती हूँ मैं इन अ शॉर्ट वाइल
3: This is Radio Masti 24/7 Live, the only local connect with global expat Indians. Anytime, anywhere.

0: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें।
1: आई लव यू रचना।
0: समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, musty 90s mixtape with aapki 90s wali antra. Thursdays 11 a.m. onwards only on Radio Musty 24/7 Live.

0: अच्छा, बहुत सारे ऐसे रियलिटी शोज में एक्टर्स रहे हैं जो छोटे से बड़े हो गए, है ना, और हमें पता भी नहीं चला, और उन एक्टर्स को ओटीटी प्लेटफॉर्म या टेलीविजन इंडस्ट्री से बहुत ज्यादा लेवरेज मिल गया। उनमें से एक कोई तो थी जो शायद आपकी भी फेवरेट है। एनी गेसेस? हाँ जी, मैं बात कर रही हूँ शहनाज गिल की। सो रेडियो मसी 24/7 लाइव पर मैं आरजे नुपुर आपके साथ। शहनाज गिल की बातें, डायलॉग्स, उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं, उससे भी ज्यादा इनका जो एक लव लाइफ रहा है सिद्धार्थ के साथ, ये चीजें सोशल मीडिया पर डेफिनेटली पॉप अप होकर आई हैं और हमने उन्हें ऑब्जर्व किया है। लेकिन शहनाज गिल ने बोला कि रियलिटी शोज में पार्टिसिपेट करके उनकी जो इमेज है बॉलीवुड इंडस्ट्री में तो बहुत बड़ी बनी नहीं, लेकिन वो पंजाबी इंडस्ट्री की सुपरस्टार बन गई। मतलब रीजनल सिनेमा में उन्हें जितनी इज्जत मिली, जितना उन्हें सम्मान मिला, जितना उन्हें काम मिला, उतना बॉलीवुड यानी हिंदी सिनेमा से नहीं मिला। रेडियो मसी 24/7 लाइव पर मैं आरजे नुपुर आपके साथ। डोंट गो एनीवेयर, वेरी जान आती हूँ मैं इन अ शॉर्ट व्हाइल।
1: You're tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping the world Bollywood entertained anytime, anywhere.

0: श्रेया जरा उठ के रेडियो मस्ती स्पीकर पे लगा देना।
1: माइकी डन है मम्मा।
2: जूटी
3: लास्ट टाइम मैं उठा था ना,
1: मैं उठता था।
0: तेरी मेरी बनती नहीं पर तेरे बिना मेरी चलती भी नहीं। इस रक्षाबंधन इस नोक झोक से बंधे रिश्ते को और भी मजबूत करे ज्योति स्टोर्स एंड फ्लावर शॉप के साथ वन कैंपल लेन। राखी लुम्बा और पूजा के सभी सामान के लिए आपका वन स्टॉप शॉप अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल एट ज्योति।

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste, behnor bhaiyo. Main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर
1: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन जोश में
2: बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो आज के टाइम पर तो अच्छे लगते ही लगते हैं, लेकिन जब उनका फोटोशूट पुराने जमाने का निकल कर आता है ना, आय हाय हाय हाय, तब तो वो और भी प्यारे लगते हैं। बिकॉज ऐसा लगता है कि इतने

0: किया है बटवारा 1947 मूवी में, एंड उसमें जो एक पुराने जमाने की हीरोइन की तरह इन्होंने अपना लुक टेस्ट करवाया था ना, वो फोटो सोशल मीडिया पे डेफिनेटली वायरल हो गई, बिकॉज हर कोई ना प्रीति जिंटा को एक अलग ऑरे की तरह देखता है, एक अलग तरह से देखता है, एक अलग इज्जत के साथ देखता है, राइट? चलो ठीक है, बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आपको याद दिलाते हैं कि रेडियो मस्ती 24/7 लाइव के फेसबुक का नाम हो चुका है रेडियो मस्ती 24/7 या मस्ती मीडिया नेटवर्क नाम से आप हमें ढूंढ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर मस्ती मीडिया 24/7 और ऐप का नाम आपको डेफिनेटली सामने नजर आ रहा होगा मस्ती मीडिया 24/7, बस नाम बदला है, अंदर के जज्बात नहीं। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं आरजे नुपुर आपके साथ, डोंट गो एनीवेयर मेरी जान।
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।

जब राजस्थान की हवाएं सिंगापुर के शाही स्वाद में घुल जाए, जब लाल मांस, दाल बाटी चूरमा, केर सांगरी और मीठे मीठे घेवर की खुशबू दिल को छू जाए, जब शाही महारानी नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट लेकर आए द रॉयल फ्लेवर्स ऑफ राजस्थान का एक्सक्लूसिव 10-day फेस्टिवल, तो बस बात शाही बन जाए। रॉयल फ्लेवर्स ऑफ राजस्थान बाय शाही महारानी नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट 14th to 23rd August. रिजर्व एंड प्रीपे ऑनलाइन टू एंजॉय द अर्ली बर्ड मेन्यू एट जस्ट $78 plus पर पर्सन एक्सक्लूसिवली फॉर डिनर। बुक योर रॉयल एक्सपीरियंस टुडे एट www.shahimaharani.com.

0: सुन टकाटक।
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान। जोश में रहो। देखो जब हम छोटे थे तो शायद एक विश हमारी रह गई कि यार मैजिक शो देखने जाना है, लेकिन अब हम जब बड़े हुए हैं तो यार मैजिक भी ना एक अलग लेवल पे पहुंच चुका है। साइकोलॉजिकली आपकी चीजें समझने लगा है, सो व्हाई नॉट गो विद द ट्रेंड एंड गेट एन एंटरटेनमेंट। सो रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं आरजे अनुप के साथ। सो सिंगापुर इस बार अगर आप कुछ माइंडफुली मैजिक देखना चाहते हैं तो इस 20th September सुहानी शाह, जो कि द वर्ल्ड्स मोस्ट सब्सक्राइब्ड मेंटलिस्ट है, वो सिंगापुर में लाइव आ रही है। अपना वेन्यू जो रहेगा वो है 30A क्रेटा अय्यर रोड, सिंगापुर, क्रेटा अय्यर पीपल्स थिएटर में। सो इस 20th September 6 PM ऑनवर्ड्स इन इंग्लिश डेफिनेटली आप इंजॉयमेंट ढूंढ सकते हैं और फैमिली के साथ इस शो को एंजॉय कर सकते हैं। सो सिस्टिक सिंगापुर की वेबसाइट पे जाके आप टिकट्स बुक कराइए ASAP। आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: दिस इज रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, द ओनली लोकल कनेक्ट विद ग्लोबल एक्सपर्ट इंडियंस, एनीटाइम एनीवेयर।

0: श्रेया जरा उठ के रेडियो मस्ती स्पीकर पे लगा देना।
1: बाइकी कौन है मम्मा?
2: जूटी।
3: लास्ट टाइम मैं उठा था ना,
2: मैं उठता था।
0: तेरी मेरी बनती नहीं, पर तेरे बिना मेरी चलती भी नहीं। इस रक्षाबंधन, इस नोकझोंक से बंधे रिश्ते को और भी मजबूत करें ज्योति स्टोर्स एंड फ्लावर शॉप के साथ, वन कैंपल लेन। राखी, लुम्बा और पूजा के सभी सामान के लिए आपका वन स्टॉप शॉप अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल एट ज्योति।

सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।

0: सुन टकाटक।
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान। जोश में रहो। ऊपर ऊपर से पता चला है कि भाई ऋतिक रोशन का जो है ब्रेकअप हो चुका है सबा आजाद के साथ। हाँ देखो पता चला है, कंफर्मेशन तो वक्त ही बताएगा। रेडियो मसी 24/7 लाइव पर मैं आरजे नुपुर आपके साथ। एंड डेफिनेटली मैंने थोड़ी देर पहले ना एक सवाल पूछा था। हाँ जी, आज है नेशनल रेडियो डे। ऑन दिस ओकेजन मैंने आपको एक फेमस सी मूवी का एक फेमस सा डायलॉग सुनाया था और उसमें भी सारा अली खान ना रेडियो प्रेजेंटर की तरह आपसे बातचीत कर रही थी। आपको गेस करके बताना था कि कौन सी मूवी से है ये डायलॉग। तो डायलॉग था,
2: अंग्रेजों को लग रहा है कि उन्होंने क्विट इंडिया का सर कुचल दिया है, लेकिन आजाद आवाजें कैद नहीं होती। यह हिंदुस्तान की आवाज, हिंदुस्तान में कहीं से कहीं पे हिंदुस्तान में।
1: एग्जैक्टली मूवी का नाम था ए वतन मेरे वतन। 2024 में ये मूवी आई थी। जिस तरह से रेडियो प्रेजेंटर ने देश जब आजाद होने वाला था 1942 के दौरान, जब अंग्रेजों में और इंडियंस के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा जनरेट हो चुकी थी, उस बीच एक रोल अदा किया रेडियो ने, एक ब्रिज बना बहुतों के बीच। इंडिया क्विट मूवमेंट को लेकर जो एक होता है ना, बहुत सारी बातें सच्चाई से पहुंचाने वाला काम जो है ना, वो इस मूवी ने दिखाया था। तो वो जो फ्रीडम फाइटर थी जिन्होंने रेडियो प्रेजेंटर का काम किया था, वो थी उषा मेहता, राइट? और उनकी लाइफ के ऊपर बनी थी ये मूवी ए वतन मेरे वतन। बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया है हमारे फेसबुक पेज पर, जिसका यूजर नेम बदल चुका है। आपको एक बार और रिमाइंड कर देती हूँ, रेडियो मस्ती 24/7 या मस्ती मीडिया नेटवर्क नाम से हम मिल जाएंगे। ऐप पर हमारा नाम मस्ती मीडिया 24/7 नजर आएगा, इंस्टाग्राम पर भी सेम नेम आपको नजर आएगा। चलिए ऑन द साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, मुलाकात होगी बहुत जल्द। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू मेरी जान।
3: दिस इज रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, द ओनली लोकल कनेक्ट विद ग्लोबल एक्सपर्ट इंडियंस, एनी टाइम एनीवेयर।

Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियाँ दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। On Masti Media Network, we're opening a safe space. Dear Masti, दिल से, जहाँ आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।

0: नाचने गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।

0: अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे।
2: आमिर खान wondered.
3: Wow, look, I could have thought of anything. That's amazing.
2: सलमान खान wanted answers.
4: कैसे किया ये?
2: R. Madhavan said.
5: Awesome. You're very good, yaar. Very well done.
2: And Boman Irani?
6: I say this with great respect. This is actually it's blown my mind.
2: सभी का एक ही सवाल, कैसे कर लेती है सुहानी शाह ये कमाल?
7: Anybody talks about magic in the country, I want them magic Suhani.
2: Singapore, get ready to be spellbound with Suhani Shah, the first Indian to win at what's known as the Oscars of Magic. Wow! Wonderful Escapades and Epic Encounters present Spellbound with Suhani Shah, an incredible evening of mind reading, mentalism and impossible experiences. 20th September, 6 p.m. Quetta Ayer, People's Theatre, hosted in English. Tickets at Sistik. Come curious, leave spellbound with Suhani Shah.
8: How do you know these things? Stop reading my mind.
9: श्रेया जरा उठ के रेडियो मस्ती स्पीकर पे लगा देना।
10: भाई की डन है मम्मा।
11: ड्यूटी
12: लास्ट टाइम मैं उठा था ना,
11: मैं उठता था।
9: तेरी मेरी बनती नहीं, पर तेरे बिना मेरी चलती भी नहीं। इस रक्षाबंधन, इस नोक झोक से बंधे रिश्ते को और भी मजबूत करें ज्योति स्टोर्स एंड फ्लावर शॉप के साथ, वन कैंपल लेन। राखी, लुम्बा और पूजा के सभी सामान के लिए आपका वन स्टॉप शॉप, अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल एट

0: जब राजस्थान की हवाएं सिंगापुर के शाही स्वाद में घुल जाए, जब लाल मांस, दाल बाटी चूरमा, केर सांगरी और मीठे मीठे घेवर की खुशबू दिल को छू जाए, जब शाही महारानी नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट लेकर आए द रॉयल फ्लेवर्स ऑफ राजस्थान का एक्सक्लूसिव 10-day फेस्टिवल, तो बस बात शाही बन जाए। रॉयल फ्लेवर्स ऑफ राजस्थान बाय शाही महारानी नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट 14th to 23rd August. रिजर्व एंड प्रीपे ऑनलाइन टू एंजॉय द अर्ली बर्ड मेन्यू एट जस्ट $78 plus पर पर्सन एक्सक्लूसिवली फॉर डिनर। बुक योर रॉयल एक्सपीरियंस टुडे एट www.shahimaharani.com.
1: हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गेम जय सिंगापुर, सारू जय।
2: No talking allowed. सिर्फ म्यूजिक बोलेगा। Back to back गाने only on Musti Music Cafe.
3: Where you Musti 24/7 live, a part of Musti Media Network Singapore.

की शुरुआत हो थोड़ी सी न्यूज के साथ, थोड़ी सी गॉसिप के साथ और बहुत सारी मस्ती के साथ। क्योंकि जब ट्यूसडे आता है ना, तो आती है आरजे अंतरा की बातों की बारिश। Your daily scoop of what's hot, what's viral and what's worth knowing. Served fresh with great music and my unbeatable charm, you see. Tune in to me on Masti Ka Mantra with RJ Antara. Har Tuesday subah 7 baje, sirf Radio Masti, 24/7 live fan. ना करण अर्जुन आएंगे, ना ही आरजेस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे।

0: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें।
1: आई लव यू रसना।
0: समोसा पैटीज, फूटी, लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, musty 90s mixtape with aapki 90s wali antra. Thursdays 11 a.m. onwards only on Radio Musty 24/7 Live.
2: Your musty music cafe is open. Freshly brewed beats

जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें, समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन, योर डोज ऑफ 90s नॉस्टैल्जिया, मस्ती 90s मिक्सटेप विद आपकी 90s वाली अंतरा, थर्सडेज 11 AM ऑनवर्ड्स ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: प्रेम, निशा,
1: राहुल,
0: अंजलि, टीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s नॉस्टैल्जिया का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s मिक्स डे।
2: एक बहुत ही मतलब उमदा जिसको कहते हैं वो सवाल पूछूं, क्या 90s में आपको पता था कि आप 90s में जी रहे हैं? रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, मैं अंतरा यहाँ पर 90s वाली बिल्कुल यहाँ पर पहुंच चुकी हूँ। शुरू हो चुका है ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ मस्ती 90s मिक्स डे। मतलब सीरियसली, क्या कभी स्कूल से घर आते हुए हमने ये सोचा कि वाओ, क्या आइकॉनिक डेकेड में आई एम काइंड ऑफ लिविंग थ्रू? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हम तो बस बड़े हो रहे थे, जो आसपास था वही नॉर्मल था, जो फैशन पहना वही कूल था, जो गाना बज रहा था वही लेटेस्ट था, जो फिल्म फ्राइडे को रिलीज हुई उसकी कहानी मंडे तक पूरे स्कूल, कॉलेज और ऑफिस तक पहुंच जाया करती थी, और बॉलीवुड बॉस उस वक्त सटल तरीके से एक छुट्टी ही मान लो मानी जाती थी। कलर्स ब्राइट, शर्ट्स जो है ब्राइटर, डांस स्टेप्स फुल पावर, रोमांस फुल ड्रामेटिक, म्यूजिक में ढोलक भी, सिंथेसाइजर भी और फ्लूट भी, और जरूरत पड़े तो 40 वायलेंस भी साथ साथ में। एंड वी लव्ड इट कंप्लीटली बिकॉज नोबडी वाज ट्राइंग टू मेक लाइफ लुक एस्थेटिक। लाइफ बस लाइफ थी। फोटो खराब आ गई तो आ गई, क्या कर सकते हैं। हेयर कट वियर्ड हो गया तो अब 3 महीने उसी के साथ जियो। किसी मोमेंट का वीडियो नहीं बना, कोई प्रॉब्लम नहीं, मेमोरी में तो सेव हो गया। और परहैप्स दैट्स द स्ट्रेंजेस्ट थिंग अबाउट ग्रोइंग अप, जिस वक्त को हमने कम्प्लीटली ऑर्डिनरी समझ कर जिया, उसी वक्त को एक छोटी सी चीज मिल जाए और हम वहां पे जो है रुक जाए कि अरे याद है, याद है। So, आज के मस्ती 90s मिक्स टेप में हम सब वो जो फेमस मेमोरीज, क्या मतलब आई थिंक जो मेमोरी हम उठाते हैं हमको लगता है कि यार क्या ही था। सो वेल, 90s के घरों से, गलियारों से, फैशन से, फूड से, एंड ऑफ कोर्स हिंदी सिनेमा के कुछ ऐसे ऐसे किस्से और बिहाइंड द सीन्स ट्रिविया से, जो स्क्रीन पर तो कभी नजर नहीं आए बिकॉज मे बी नॉस्टैल्जिया का सारा असली मजा इन्हीं सब चीजों में है। जब कोई आपको वो चीज याद दिला दे जो आपको याद भी नहीं था कि आप भूल चुके हैं। बातों की गहराई देख रहे हो आप, बोलते हुए कैसे एकदम फ्लो में आती है मस्ती 90s मिक्सटेप में। चलिए भाई, 90s वाला म्यूजिकल ब्रेक, एंड ब्रेक के उस पर मैं हाजिर। सो स्टे ट्यून्ड।

0: श्रेया जरा उठ के रेडियो मस्ती स्पीकर पे लगा देना।
1: भाई की डन है मम्मा।
2: ड्यूटी
3: लास्ट टाइम मैं उठा था ना,
0: तेरी मेरी बनती नहीं पर तेरे बिना मेरी चलती भी नहीं। इस रक्षाबंधन इस नोकझोंक से बंधे रिश्ते को और भी मजबूत करे ज्योति स्टोर्स एंड फ्लावर शॉप के साथ वन कैंपल लेन। राखी, लुम्बा और पूजा के सभी सामान के लिए आपका वन स्टॉप शॉप अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल एट jyoti.com.sg।
4: You're tuned into Radio Masti 24/7 live, keeping the world Bollywood entertained anytime, anywhere.

0: प्रेम, निशा,
1: राहुल,
0: अंजलि, टीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s nostalgia का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s मिक्सटेप।
2: कैची जिसको कहते हैं हम, उसको लाने का पेशेंस किसके पास था? हमारी जुबान ही कैची की जैसी है। लिटरली हमने कितनी बार उसको प्रूव किया होगा 90s में। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव मैं अंतराब के साथ, और यहाँ पर

चल रहा है मस्ती 90s मिक्स टेप, दैट इज राइट। मतलब शैम्पू का सैशे जो होता है भाई, हम वो 90s वाले हैं जिन्होंने सैशेज यूज किए हुए हैं सनसिल्क क्लिनिक प्लस के, दैट इज राइट। भाई शैम्पू सैशे कभी सिसर्स से आपने खोला है? हमने तो नहीं, मेरे को तो याद नहीं कि कब हमने सिसर्स का यूज किया हो उसको खोलने के लिए। मतलब टेक्निकली पैकेट के कॉर्नर पर वो छोटा सा कट बना होता था राइट, जिसका पर्पज था कि टियर फ्रॉम हेयर राइट। लेकिन हमारे होते थे गीले हाथ, शैम्पू का सैशे हाथ में और बाथरूम में खड़े खड़े सीधा दांतों के कॉर्नर से कचैक करके सिजर लेने के लिए बाथरूम से बाहर कौन जाएगा उस वक्त। इतना ऑर्गेनाइज्ड बचपन थोड़ी ना था हमारा, और वो भी मतलब क्या ही जमाना था इफ यू कम टू थिंक अबाउट इट। बाथरूम की शेल्फ पर बड़े बड़े फैंसी पंप बॉटल्स की लाइन बिल्कुल भी नहीं हुआ करती थी, छोटे छोटे शैम्पू सैशेज पड़े होते थे, क्लिनिक पल्स, सनसिल्क, हैलो करके भी एक आता था, और कभी वो सैशे जिसका टीवी का एड देखकर मम्मी ने सोचा कि चलो ये भी ट्राई कर लेते हैं। एक सैशे निकाला, कॉर्नर काटा और फिर शैम्पू निकालने का भी पूरा प्रॉपर टेक्निक था। पहले टॉप से स्क्वीज, ठीक है, फिर फिंगर से पैकेट को नीचे तक प्रेस करो, फिर उसको फोल्ड करो, फिर एक फाइनल स्क्वीज, एक बूंद भी अंदर नहीं रहनी चाहिए थी बॉस। और अगर शैम्पू कम निकला तो पानी सैशे के अंदर, एंड देन शेक शेक शेक, एंड लो जी बोनस शैम्पू आपके लिए। 90s के बच्चों को रिसोर्स मैनेजमेंट किसी MBA ने नहीं सिखाया, ये सब ट्रेनिंग घर पर ही हो गई थी हमारी। और वैसे भी शैम्पू के जो सैशेज का इंडियन स्टोरी में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा एंगल भी है। सो 90s के इंडिया में स्मॉल सैशे पैकेजिंग ने पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स को बहुत ही ज्यादा एक्सेसिबल जो है वो बना दिया, एंड स्पेशली फॉर द मिडिल क्लास की जनता जो है उनके लिए। फुल बॉटल लेने के बजाय लोग एक या दो वॉशेस के लिए छोटा सा सैशे खरीद लेते थे। मतलब वो वही छोटा सा प्यारा सा, सिर्फ बाथरूम की मेमोरी नहीं, 90s के चेंजिंग इंडियन कंज्यूमर कल्चर का भी एक बड़ा हिस्सा था वो। लेकिन हम बच्चों की इकोनॉमिक से हमें क्या ही लेना देना था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। हमारा प्रॉब्लम तो एक ही था कि सैशे और गीले हाथ, कॉर्नर फट नहीं रहा है, सोल्यूशन दांत है ना। और कभी कभी तो शैम्पू मुंह में भी चला जाता था, क्योंकि जहां से टियर हेयर लिखा होता था वहां से कभी भी टियर नहीं हो पाता था दांतों से। बट एनीवेज 90s का कन्वीनियंस का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल था, जो हाथ से ना खुले उसमें दांत लगा दो। वाह वाह वाह वाह, इसी बात पे दांत देती हुई आ रही है एक 90s वाली म्यूजिकल ब्रेक। वाह वाह।

0: Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore.
1: Check it out.
2: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
3: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Musty 24/7. Email a brief intro to info@radiomusty.com.sg requesting for application form.
4: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
0: जब राजस्थान की हवाएं सिंगापुर के शाही स्वाद में घुल जाएं, जब लाल मांस, दाल बाटी चूरमा, केर सांगरी और मीठे मीठे घेवर की खुशबू दिल को छू जाए, जब शाही महारानी नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट लेकर आए द रॉयल फ्लेवर्स ऑफ राजस्थान का एक्सक्लूसिव 10-day फेस्टिवल, तो बस बात शाही बन जाए। The Royal Flavors of Rajasthan by Shahi Maharani North Indian Restaurant, 14th to 23rd August. Reserve and prepay online to enjoy the early bird menu at just $78 plus per person. Exclusively for dinner. Book your Royal Experience today at www.shahimaharani.com.

पेंसिल से कसरत की रील सुलझाना, क्रश का नाम हाथ पे लिखकर हाय शर्माना, ऐसा था 90s का जमाना। ये है मस्ती 90s मिक्स टेप जाने जाना। नाइन्टीज के किसी भी बच्चे को एक सिक्का दो, एक पेंसिल दो और भर आर्टिस्ट हमारे अंदर का बिल्कुल तैयार। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव मस्ती 90s मिक्स टेप यहाँ पर चल रहा है। 90s के बच्चों की क्रिएटिविटी का लेवल समझना अगर है तो हमें फैंसी आर्ट किट की इतनी ज्यादा भी जरूरत नहीं थी। बस आप हमें एक कॉइन दे दो, एक पेपर दे दो और एक पेंसिल दे दो, एंटरटेनमेंट ऐसे ही रेडी कर देंगे। याद आया कुछ? कॉइन को पेपर के नीचे रखा, पेपर को एक हाथ से टाइटली पकड़ा और पेंसिल को सीधा लिखने की जगह साइडवेज करके उसको रब करना शुरू किया। सो शुरू में तो कुछ रैंडम ग्रे लाइंस एंड फिर धीरे धीरे कॉइन का बॉर्डर नजर आने लगता था, फिर नंबर आने नजर लगता था और फिर डिजाइन, राइट? फिर सडनली पूरा सिक्का जो है पेपर पर छप जाता था एंड रिएक्शन, ओ देखा आ गया ना, जैसे दुनिया का पहला प्रिंटिंग प्रेस हमने ही इन्वेंट कर दिया हो। फिर ऑब्वियसली एक कॉइन पर एक्सपेरिमेंट रुकता थोड़ी ना था, एक रुपए वाला करो, फिर 50 पैसे वाला करो, फिर 25 पैसे का मिल गया तो वो भी कर लो और डिफरेंट कॉइन्स के जो है उसको भी साइड बाय साइड जो है रब करके, वैसे करके भी अपनी मिनी करेंसी एग्जिबिशन जो है वो हम ऐसे ही रेडी कर लिया करते थे। और सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक, पेंसिल बहुत हार्ड नहीं चलानी है वरना पेपर फट जाएगा, बहुत लाइट भी नहीं चलानी है वरना उसका इंप्रेशन नहीं आएगा। मतलब विदाउट नोइंग इट हम प्रेशर कंट्रोल की प्रैक्टिकल क्लास ले रहे थे। फिर एक्सपेरिमेंट नेक्स्ट लेवल पर जाता था, कॉइन हो गया, अब पत्ता यानी कि लीफ ट्राई करो, पत्ता पेपर के नीचे पेंसिल रब करो और उसकी वेन्स सडनली पेपर पर अपीयर होने लगते हैं। आपने कभी किया ये? आई मीन आई हैव डन इट अ लॉट, सो आई कैन टेल यू विद अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। हम ऑफिशियली आर्टिस्ट अपने आप को यही सब करके बुला लेते थे। आजकल बच्चों के पास डिजिटल ड्राइंग पैड्स है, स्टाइलस है, एप्स है, अंडू बटन है। हमारे पास अंडू बटन नहीं था बॉस, गलत हो गया तो नया पेपर लाओ। बट दैट्स व्हाट आई लव अबाउट दोस मेमोरीज। बोर्डम आता था तो इमीडिएटली स्क्रीन नहीं खुलती थी, दिमाग खुल जाता था। किसी ऑर्डिनरी सी चीज को उठाओ, उसके साथ कुछ करो और खुद ही अपना एंटरटेनमेंट बना लो। एक सिक्का, एक पेंसिल, एक पीस ऑफ पेपर, बस इतना ही तो था। लेकिन पता नहीं क्यों उस कॉइन को पेपर पर मैजिकली उभरते देखने की खुशी आज भी मेमोरी में बिल्कुल क्लियर प्रिंट हुई पड़ी है, न जाने क्यों। स्टे ट्यून्ड।

0: tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.
1: श्रेया जरा उठ के रेडियो मस्ती स्पीकर पे लगा देना।
2: भाई की डन है मम्मा।
3: ड्यूटी
4: लास्ट टाइम मैं उठा था ना,
3: मैं उठता था।
1: तेरी मेरी बनती नहीं, पर तेरे बिना मेरी चलती भी नहीं। इस रक्षाबंधन, इस नोक झोक से बंधे रिश्ते को और भी मजबूत करें ज्योति स्टोर्स एंड फ्लावर शॉप के साथ, वन कैंपल लेन। राखी, लुम्बा और पूजा के सभी सामान के लिए आपका वन स्टॉप शॉप, अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल एट jyoti.com.sg।
5: आमिर खान wondered.
6: Wow, look, I could have thought of anything. That's amazing. Yeah.
5: सलमान खान wanted answers.
7: कैसे किया ये?
5: R. Madhavan said.
8: Awesome. You're very good, yeah. Very well done.
5: And Boman Irani?
9: I say this with great respect. This is actually it's blown my mind.
5: सभी का एक ही सवाल, कैसे कर लेती है सुहानी शाह ये कमाल?
10: Anybody talks about magic in the country, I want them magic Suhan.
5: Singapore, get ready to be spellbound with Suhani Shah, the first Indian to win at what's known as the Oscars of Magic. Wow! Wonderful escapades and epic encounters present Spellbound with Suhani Shah, an incredible evening of mind reading, mentalism and impossible experiences. 20th September, 6 p.m. Quetta Ayer, People's Theatre, hosted in English. Tickets at Sistic. Come curious, leave spellbound with Suhani Shah.
11: How do you know these things? Stop reading my mind.
12: पेंसिल से कसरत की रील सुलझाना, क्रश का नाम हार पे लिखकर हाय शर्माना, ऐसा था 90s का जमाना। ये है मस्ती 90s मिक्स टेप, जाने जाना।
13: नाइन्टीज के घरों में एक फिलोसफी बहुत क्लियर थी, जब तक चीज कम्प्लीटली खत्म ना हो जाए वो खत्म नहीं होती थी। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, मैं अंतरा आपके साथ और यहाँ पर चल रहा है मस्ती 90s मिक्स टेप। ऑफ कोर्स मैं हूँ 90s वाली अंतरा, और इसी बात का सबसे बड़ा एग्जांपल था बाथरूम का हमारा साबुन। लाइफ बॉय हो, पियर्स हो, सिंथॉल हो, लक्स हो, रेक्सोना हो, नया साबुन तब तक ऑफिशियली चार्ज नहीं लेता था जब तक पुराने वाले की लास्ट ड्यूटी कम्प्लीट ना हो जाए। एक दूसरे से लिपट के रहते थे और वो लिपट लिपट के जो है ना एक नया ही साबुन बना दिया करते थे। क्योंकि क्या है ना, साबुन 90s में यूज होते होते इतना छोटा हो जाता था कि हाथ में पकड़ो तो फिंगर्स के बीच में से फिस करके फिसल गया, ठीक है। फिर वो या तो नीचे गिर जाता, उसको उठाने में भी कितनी ज्यादा दिक्कत होती थी, सीधा या तो बकेट में गिर जाए तो वो भी। अब नॉर्मल इंसान सोचेगा क्यों भाई इसका काम खत्म हो गया, नया निकालो। 90s की मम्मियां, एब्सोल्युटली नॉट। नया सोप निकला, दोनों को थोड़ा थोड़ा गीला किया, पुराने छोटे से सोप को नए वाले के ऊपर रखा और चिपका दो, बस पुराने सोप को मिल गया सर्विस एक्सटेंशन। और अगले दिन बाथरूम जाओ तो एक फैसिनेटिंग सी हाइब्रिड सोप जो है हमें रेडी मिलती थी, नीचे ब्रांड न्यू लक्स, ऊपर चिपका हुआ एक मिस्टीरियस सा पुराना पीस। कभी प्रॉपरली चिपक जाता था, कभी नहाते वक्त जो है फिर अलग हो जाता था, फिर हम दोबारा प्रेस करके उसको चिपका देते थे। इट वॉज बेसिकली 90s का मर्जर एंड एक्विजिशन। और सिर्फ सोप ही क्यों, टूथपेस्ट के ट्यूब को रोल कर करके लास्ट बिट निकालना, क्रीम की बॉटल उल्टी रख देना, ठीक है, देन पेन को झटका मार मार के लास्ट लाइन लिखना। सो 90s की जनरेशन का सिंपल सा एक फंडा था, अभी इसमें थोड़ी और जान बाकी है। आज हम इससे सस्टेनेबिलिटी, रीयूज, कॉन्शियस कंजम्पशन जैसे फैंसी नेम्स दे देते हैं, लेकिन तब मम्मी का एक ही सेंटेंस काफी होता था कि अरे पहले पुराना तो खत्म करो। सच कहूं शायद इसीलिए 90s की मेमोरीज की चीजों में जो है ना बहुत ही ज्यादा वैल्यू अलग सी ही लगती थी। हम नए का एक्साइटमेंट रखते जरूर थे लेकिन पुराने को भी साथ में रखते थे, लास्ट बबल तक छोड़ते नहीं थे। क्या करें, आई थिंक वो चीज आज की डेट में भी हमारे अंदर एकदम घोट घोट के, मतलब मैं टिल डेट राइट, टूथपेस्ट जो हमारा है जब तक बेचारा कह नहीं देता है कि बस करो बहन अब तो कुछ भी नहीं बचा है, तब तक मैं उसमें से निकालती ही रहती, एंड समहाउ निकल भी आता है, लाइक आई डू विद द क्रीम्स ऑल्सो। मैं तो बीच में से काट देती हूँ और फिर अंदर से स्क्रेप कर करके जो है ना वो निकालती हूँ। काफी सारे मेकअप प्रोडक्ट्स ना आई स्टिल यूज इट लाइक दैट, आई मीन व्हाई नॉट। जब पता है हम आर्टिस्ट हैं तो व्हाई नॉट मेक यूज ऑफ दैट स्किल. स्टे ट्यून्ड, मस्ती 90s मिक्सटेप सुन रहे हो आप.

0: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें।
1: आई लव यू रसना।
0: समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, musty 90s mixtape with aapki 90s wali antra. Thursdays 11 a.m. onwards only on Radio Musti 24/7 Live.

पेंसिल से कसेट की रील सुलझाना, क्रश का नाम हाथ पे लिखकर हाय शर्माना, ऐसा था 90s का जमाना। ये है मस्ती 90s मिक्स टेप जाने जाना। तरह तरह के शेप्स के आजकल आइस क्यूब्स निकलते हैं, राउंड एंड बिग क्यूब्स एंड एवरीथिंग, एंड इतने स्टाइलिश, इतने प्रिटी लगते हैं ना, नो डाउट अबाउट इट। बट क्या करें, हम उस टाइम से है, आई थिंक वी हैव जस्ट काइंड ऑफ सीन इट ऑल। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अंतराब के साथ, एंड यहाँ पे चल रहा है मस्ती 90s मिक्स टेप। भाई फ्रीजर खोलो, सिलिकॉन का वो आइस ट्रे निकालो, कोई भी शेप का हो, एंड एक हल्का सा पुश एंड प्लॉप, परफेक्ट आइस क्यूब आपका निकल आता था। बट 90s वालों, हमने इतनी ईजी लाइफ कहाँ देखी थी। हमारे फ्रीजर में होती थी वो स्टील या एल्यूमिनियम की आइस ट्रे, ठीक है, और उसमें से बर्फ निकालना, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक पीने से पहले का फुल बॉडी वर्कआउट हुआ करता था, वर्कआउट। ट्रे फ्रीजर से निकालो, और पहले तो वो इतनी ठंडी कि हाथ ही फ्रीज हो जाते थे हमारे। फिर ट्रे को ट्विस्ट करने की कोशिश, एक तरफ से दूसरी तरफ से, कुछ नहीं हुआ। काउंटर पे फिर टाक टाक टाक करके मारा, स्टिल नथिंग। फिर मम्मी का ट्राइड एंड टेस्टेड सोल्यूशन, नीचे थोड़ा उसके पानी चलाओ, टैप के नीचे ट्रे, थोड़ा सा वेट, फिर दोबारा ट्विस्ट, एंड सडनली क्रैक, सारे क्यूब्स एक साथ लूज हो जाया करते थे। अब प्रॉब्लम नंबर 2 इसमें ये आती थी कि हमें चाहिए थे 4 क्यूब, बाहर आ गए 12 क्यूब, 2 ग्लास में, 3 सिंक में, 1 फ्लोर पर, और 1 का पता नहीं कहाँ ही गया है वो। और अगर घर में गेस्ट आए हो तो प्रेशर डबल होता था, मम्मी किचन से जल्दी आइस निकालो, कोल्ड ड्रिंक गर्म हो रही है, और हम ट्रे के साथ वहां पे WWE खेल रहे होते थे। वैसे समर आफ्टरनून्स में उस आइस की वैल्यू भी कुछ और ही हुआ करती थी, नहीं, रूह अफजा हो, नींबू पानी हो, रसना हो, या वो एक स्पेशल ओकेजन वाली कोल्ड ड्रिंक हो। ग्लास में आइस गिरने की वो क्लिंक क्लिंक की वो जो आवाज थी, ड्रिंक ऑटोमेटिकली प्रीमियम लगती थी उससे। और ट्रे रिफिल करना उसको याद किया है आपने कभी? चलिए साथ में याद करते हैं। बिल्कुल केयरफुली फ्रीजर तक उसको ले जाना, एक बूंद नहीं स्पिल होनी चाहिए। फिर फ्रीजर के डोर को धीरे से बंद करना, तब जाके होता था हमारा मिशन अकम्प्लिश्ड। आज आइस मेकर्स है, फैंसी डिस्पेंसर्स है, एक बटन दबाओ आइस रेडी हो जाता है। लेकिन 90s के बच्चों को पता है कि एक चिल्ड ड्रिंक के पीछे मेहनत, टेक्निक और थोड़ा सा रेसलिंग एक्सपीरियंस, ये सारी की सारी चीजें इन्वॉल्व होती थी, एंड इसीलिए वो कोल्ड ड्रिंक भी थोड़ी ज्यादा ठंडी लगती थी और उसकी खुशी थोड़ी ज्यादा स्वीट। है ना, याद हो गया ना, ताजा हो गई ना। बस यही तो काम है मेरा मस्ती 90s मिक्स टेप में। रहिए मेरे साथ, चलते हैं, बढ़ते हैं आगे एक 90s वाले म्यूजिकल ब्रेक की ओर।

0: श्रेया जरा उठ के रेडियो मस्ती स्पीकर पे लगा देना।
1: भाई की डन है मम्मा।
2: जूटी लास्ट टाइम मैं उठा था ना,
1: मैं उठता।
0: तेरी मेरी बनती नहीं पर तेरे बिना मेरी चलती भी नहीं। इस रक्षाबंधन इस नोक झोंक से बंधे रिश्ते को और भी मजबूत करे ज्योति स्टोर्स एंड फ्लावर शॉप के साथ वन कैंपल लेन। राखी, लुम्बा और पूजा के सभी सामान के लिए आपका वन स्टॉप शॉप अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल एट jyoti.com.sg। आमिर खान wondered.
3: Wow, look, I could have thought of anything. That's amazing. Yeah.
0: सलमान खान wanted answers.
4: कैसे किया ये?
0: R. Madhavan said.
5: Awesome. You're very good, yaar. Very well done.
0: And Boman Irani?
6: I say this with great respect. This is actually it's blown my mind.
0: सभी का एक ही सवाल, कैसे कर लेती है सुहानी शाह ये कमाल?
7: Anybody talks about magic in the country, I want them magic Suhani.
0: Singapore, get ready to be spellbound with Suhani Shah, the first Indian to win at what's known as the Oscars of Magic. Wonder Soul Escapades and Epic Encounters present Spellbound with Suhani Shah, an incredible evening of mind reading, mentalism and impossible experiences. 20th September, 6 p.m. Quetta Ayer, People's Theatre, hosted in English. Tickets at Sistic. Come curious, leave spellbound with Suhani Shah.
8: How do you know these things? Stop reading my mind!

0: प्रेम, निशा,
1: राहुल,
0: अंजलि, टीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s nostalgia का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s मिक्स टेप।
2: I used to hate doodh pe malai and I till date I kind of don't like it. Radio Masti 24/7 live ultra aapke saath Masti 90s mixtape aap sun rahe ho yahan par. Bada hi serious sa childhood question hai mera. Doodh pasand nahi tha. राइट या दूध के ऊपर वो फ्लोटिंग मलाई पसंद नहीं थी. आई एम दी अदर वन. लाइक दूध तो जैसे तैसे करके पी लिया लेकिन वो मलाई के पता नहीं मुझे कुछ हो ही जाता था. लगता था कि बस ये नहीं चाहिए. मैं तो उसको स्पून से लेकर हटा देती थी लेकिन मम्मी वो भी बचा लेती थी बिकॉज वो बूंद बूंद से जो है मलाई ले लेके वो उनके घी बनता था घर पे तो उतना मलाई भी वो जाने नहीं देती थी कभी कभी. एंड आई यूज्ड टू बी लाइक मम्मी इसको तो छोड़ देते बिकॉज सी देयर्स अ डिफरेंस. 90s के मॉर्निंग्स में मम्मी ग्लास लेकर आए कि भाई दूध पी लो और हम दूध पीने से पहले ग्लास का फुल इंस्पेक्शन पहले करते थे कि भाई ऊपर मलाई तो नहीं है. अगर छोटा सा एक वाइट पैच भी फ्लोटिंग दिख गया तो बस इसमें मलाई है. एंड देन माय मॉम्स स्टैंडर्ड रिस्पांस कुछ नहीं है सब पी जाओ सब ठीक है कुछ नहीं है. अब मुझे क्लियरली दिख रहा है वहां पे. फिर शुरू होती थी स्ट्रेटजी. ऑप्शन नंबर वन, उसको फूंक मार मार के ग्लास के दूसरे कॉर्नर में भेज दो और ऑपोजिट साइड से जो है वो दूध पी लो. ऑप्शन नंबर दो, स्पून से चुपचाप निकाल कर ग्लास के साइड पर चिपका दो जैसे एविडेंस हम वहां पे छुपा रहे हो. ऑप्शन नंबर तीन, और ये था एडवांस लेवल का ऑप्शन, दूध को एक ही फ्लो में ऐसे फिनिश कर दो कि मलाई को रिएक्ट करने का मौका ही ना मिले. लेकिन सबसे बड़ा बिट्रेयल जब मलाई दिखी ही नहीं और आप कॉन्फिडेंटली सिप लेते हो और सडनली आपको रियलाइज होता है कि ये तो छुपी हुई थी. बस गेम ओवर. और 90s के घर में दूध वैसे भी सिर्फ दूध कहाँ था, कभी बॉर्नविटा, हॉर्लिक्स, कॉम्प्लान और चॉकलेट पाउडर डालने का एक ही हिडन पर्पस ये भी था कि मलाई जो है ना वो कैमोफ्लाज हो जाए. आज सुपरमार्केट में चॉइसेस आप देखो बाप रे बाप. ओके, फुल क्रीम, लो फैट, ओट मिल्क, आमंड मिल्क, स्किम्ड, लैक्टोज फ्री, ओ माई गॉड, सोय मिल्क. हम बचपन में चॉइस मतलब बहुत सिंपल थी, दूध पियोगे नहीं पीना पड़ेगा. ओके, बट यू नो व्हाट्स फनी, जिस क्लास से बचने के लिए हमने बचपन में इतनी प्लानिंग की आज वही मेमोरी याद करके हमें स्माइल आ जाती है बिकॉज 90s के चाइल्डहुड के ड्रामेज भी कितने ज्यादा इनोसेंट से थे. राइट, सुबह का बिगेस्ट क्राइसिस समटाइम्स बस इतना सा था कि मलाई मेरे ग्लास में तो नहीं है. बताओ, मुझे तो मलाई आज भी पसंद नहीं है कसम से, लेकिन मम्मी प्यार से बोल दे तो मैं पी ही जाती हूँ मलाई हटा के आज भी. रेडियो मस्ती 24/7 लाइव मस्ती 90s मिक्स टेप पे बने रहिए मेरे साथ.

0: जब राजस्थान की हवाएं सिंगापुर के शाही स्वाद में घुल जाए, जब लाल मांस, दाल बाटी चूरमा, केर सांगरी और मीठे मीठे घेवर की खुशबू दिल को छू जाए, जब शाही महारानी नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट लेकर आए द रॉयल फ्लेवर्स ऑफ राजस्थान का एक्सक्लूसिव 10-day फेस्टिवल, तो बस बात शाही बन जाए। रॉयल फ्लेवर्स ऑफ राजस्थान बाय शाही महारानी नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट 14th to 23rd August. रिजर्व एंड प्रीपे ऑनलाइन टू एंजॉय द अर्ली बर्ड मेन्यू एट जस्ट $78 plus पर पर्सन एक्सक्लूसिवली फॉर डिनर। बुक योर रॉयल एक्सपीरियंस टुडे एट www.shahimaharani.com।
1: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
2: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
3: Namaste, bahno aur bhaiyo. Main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

0: पेंसिल से कसट की रील सुलझाना, क्रश का नाम हाथ पे लिखकर हाय शर्माना, ऐसा था 90s का जमाना। ये है मस्ती 90s मिक्स टेप जाने जाना।
1: मेरे करण अर्जुन आएंगे, धरती का सीना फाड़ के आएंगे। कितनी देर हो गई 90s के बॉलीवुड की बात नहीं हुई। मुझे अजीब लग ही रहा था और लगने शुरू ही हुआ था कि मैंने कहा कि अभी वो वक्त है कि ये बात अभी कर लेनी चाहिए। वेलकम बैक मस्ती 90s मिक्स टेप में आपका बिल्कुल 90s वाली यात्रा करती है स्वागत। यह है रेडियो मस्ती 24/7। अच्छा 90s के बॉलीवुड फैंस, अगर मैं बोलूं कि मेरे करण अर्जुन आएंगे तो भाई दिमाग में हम सभी के आते हैं सलमान खान एंड शाहरुख खान। अब इमेजिन कीजिए कि राखी जी का वही डायलॉग वो बोल रही है। शाहरुख खान तो आ रहे हैं लेकिन सलमान खान की जगह अजय देवगन आ रहे हैं। यस 1995 की करण अर्जुन की ओरिजिनल कास्टिंग में राकेश रोशन सर जो है उन्होंने शाहरुख खान और अजय देवगन को कास्ट इनिशियली किया था। एंड इंटरेस्टिंगली फिल्म का नाम तब करण अर्जुन नहीं था, दैट टाइम इट वॉज कॉल्ड कायनात। इनफैक्ट राकेश रोशन जी जो है उन्होंने बाद में रिवील भी किया दैट अजय उस रोल में थे जो इवेंचुअली सलमान खान ने प्ले किया। लेकिन कहानी ये यहाँ पे जो है बिल्कुल इंटरेस्टिंग होती है। राकेश रोशन जी के अकॉर्डिंग शाहरुख खान और अजय अपने अपने कैरेक्टर्स को लेकर कंप्लीटली कन्विंस्ड नहीं थे और दोनों रोल्स को एक्सचेंज करना चाहते थे। डायरेक्टर रेडी नहीं हुए और इवेंचुअली दोनों प्रोजेक्ट से बाहर हो गए। फिर कास्टिंग में और मूवमेंट हुई और फाइनली वो कॉम्बिनेशन बना जिसे 90s बॉलीवुड ने परमानेंटली मेमोरी में सेव कर लिया। सलमान खान एज करण एंड शाहरुख खान एज अर्जुन। अब जरा सोचिए अगर ओरिजिनल कास्टिंग रह जाती तो करण अर्जुन के पोस्टर, गाने, एक्शन सीन्स और वो एंटायर ब्रदरहुड वाली केमिस्ट्री कितनी ज्यादा डिफरेंट होती नहीं। और यही तो मुझे आई थिंक 90s के बॉलीवुड के बिहाइंड द सीन्स की कहानियों में इतना फैसिनेटिंग लगता है कि हम जिस फिल्म को देखकर कहते हैं कि इस रोल में किसी और को इमेजिन करना बहुत ही इंपॉसिबल सा लगता है, समटाइम्स वो एक्टर एक्चुअली उसकी फर्स्ट चॉइस होती ही नहीं थी। सिनेमा में एक कास्टिंग का डिसीजन, एक डेट का प्रॉब्लम, एक क्रिएटिव डिसएग्रीमेंट और पूरी पॉप कल्चर हिस्ट्री जो है उसको बदल देती थी। बिकॉज टुडे करण अर्जुन बोलो तो सलमान और शाहरुख खान के बिना पिक्चर तो कंप्लीट ही नहीं होती। लेकिन समवेयर इन बॉलीवुड्स ऑल्टरनेट 90s वाला यूनिवर्स करण अर्जुन, शाहरुख खान और अजय देवगन भी हो सकते हैं। हो सकता है? नहीं यार, ना ना ना ना ना ना, बिल्कुल भी नहीं। आप बताओ हो सकता है?

0: श्रेया जरा उठ के रेडियो मस्ती स्पीकर पे लगा देना।
1: बाइकी डन है मम्मा।
2: जूटी
3: लास्ट टाइम मैं उठा था ना,
2: मैं उठता था।
0: तेरी मेरी बनती नहीं पर तेरे बिना मेरी चलती भी नहीं। इस रक्षाबंधन इस नोक झोक से बंधे रिश्ते को और भी मजबूत करे ज्योति स्टोर्स एंड फ्लावर शॉप के साथ वन कैंपल लेन। राखी लुम्बा और पूजा के सभी सामान के लिए आपका वन स्टॉप शॉप अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल एट ज्योति.com.sg।

0: प्रेम, निशा,
1: राहुल,
0: अंजलि, चीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s nostalgia का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s next day.
2: एक मिनट, क्या कह रहे हो यार, क्या कह रहे हो? मिलन सोमन होने वाला था वहां पे? मिलन सोमन? ओके, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अंतर आपके साथ, मस्ती 90s मिक्स टेप आप सुन रहे हो। यूजुअली मैं कहती हूँ, अभी थोड़ी देर पहले ही हम करण अर्जुन की बात कर रहे थे और हमने कहा कि भाई सलमान और शाहरुख ही सही लगते हैं करण और अर्जुन में, अजय देवगन को इमेजिन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट व्हेन वी टॉक अबाउट मिलन सोमन द सिनेरियो चेंजेस कंप्लीटली। अब आप कह रहे हो कि यहाँ पे मिलन सोमन इनकी जगह पे होने वाला था एंड हम कह रहे हैं कि क्या बात कर रहे हो, वो क्यों नहीं हुआ फिर? आई लव हिम so very much. So well, जो जीता वही सिकंदर मूवी याद है, राइट? आमिर खान, संजू, आयशा जुल्का, पूजा बेदी, वो साइकिल रेस, वो कॉलेज की राइवलरी एंड ऑफकोर्स राजपूत कॉलेज का एरोगेंट चैंपियन शेखर मल्होत्रा। अब शेखर बोलो और दिमाग में आता है ऑफकोर्स दीपक तिजोरी का जो है चेहरा सामने आ जाता है, बट Here's the twist. Shekhar originally Deepak Tijori the hi nahi. The role had actually gone to Milind Soman. Aur sirf cast hi nahi hue the. Deepak Tijori ne saalon ke baad ye reveal kiya that Milind ke saath film mein around 75% ka jo portion hai shoot bhi ho chuka tha. Now imagine kariye 1992 wala mara Milind Soman, that model look, okay? Long hair, cycling champion, rich, arrogant Shekhar Malhotra. Character ka entire vibe hi different hota, boss. इंटरेस्टिंग पार्ट ये भी है ना, दीपक तिजोरी ने खुद ओरिजिनली इस रोल के लिए ऑडिशन दिया था और वो रिजेक्ट हो गए थे। सो मिलन सोमन को रोल मिला, फिल्म का मेजर पोर्शन शूट हो चुका था, फिर प्रोडक्शन रुक गई और जब फिल्म इवेंचुअली दोबारा से मूव हुई, शेखर का रोल फाइनली गया उसी दीपक तिजोरी के पास जो पहले रिजेक्ट हो चुके थे। टॉक अबाउट बॉलीवुड की डेस्टिनी, आई टेल यू। और फिल्म जो है बाद में रिलीज हुई, दीपक तिजोरी वो स्मग सा शेखर, साइकिल पे वो कॉम्पिटिटिव सा एटीट्यूड, संजू के साथ राइवलरी, इतना परफेक्टली फिल्म का पार्ट वो बन गए थे सीमलेसली, राइट? कि आज किसी और एक्टर को उस रोल में इमेजिन करना थोड़ा सा स्ट्रेंज लगता है, बट मिलन सोमन ना, आई स्टिल थिंक ही वुड हैव लुक्ड बेटर। दैट्स द फैसिनेटिंग थिंग्स अबाउट मूवीज। हम स्क्रीन पर फाइनल वर्जन देखते हैं और अज्यूम कर लेते हैं कि यही तो पहले से ही प्लान था, बट बिहाइंड द फाइनल फ्रेम कभी एक्टर्स चेंज होते हैं, कभी सीन्स रीशूट होते हैं, कभी ऑलमोस्ट पूरी फिल्म का डायरेक्शन ही बदल जाता है, एंड समटाइम्स जो एक्टर पहले रिजेक्ट हुआ था वही इवेंचुअली रोल को आइकॉनिक बना देता है। सो यस, अगर आप कभी ऐसे वापस से जो जीता वही सिकंदर देखे शेखर मल्होत्रा को देखकर, एक बार इमेजिन जरूर करिएगा कि व्हाट इफ यहां पे मिलन सोमन होते। आई टेल यू, स्टे ट्यून्ड।

जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें। समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। योर डोज ऑफ 90s नॉस्टैल्जिया, मस्ती 90s मिक्सटेप विद आपकी 90s वाली अंतरा, थर्सडेज 11 AM ऑनवर्ड्स ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

पिंटरेस्ट बोर्ड क्या होता है? वो पिंटरेस्ट बोर्ड हमें नहीं पता था 90s में क्या होता है पिंटरेस्ट बोर्ड। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऑन ट्रैप के साथ मस्ती 90s मिक्स टेप आप सुन रहे हो। भाई क्या होता था 90s का पिंटरेस्ट बोर्ड, सोच के बताओ। मैं बताऊं, 90s के घर का ड्रेसिंग टेबल याद है? वो सिर्फ रेडी होने की जगह नहीं थी, वो घर का अनऑफिशियल मेमोरी बोर्ड भी था। नो मिरर्स के कॉर्नर को अगर आप थोड़ा सा ध्यान से मेरे साथ साथ मिलकर याद करें तो कहीं पर एक पासपोर्ट साइज फोटो जो है वो टक्ड इन, स्पेशली गोदरेज के क्योंकि वो खाचे खाचे टाइप के होते थे ना, तो वहां पर टक इन होकर रखती थी। कहीं फैमिली की छोटी सी फोटोग्राफ लगी हुई है, कहीं किसी मंदिर से मिला हुआ जो है भगवान जी का कार्ड लगा हुआ है, कहीं विजिटिंग कार्ड लगा हुआ है, और कभी किसी बच्चे की स्कूल की फोटो लगी हुई है जो पता नहीं कितने सालों से वहां पर अटकी हुई है। कोई फ्रेम नहीं, कोई टेप नहीं, कोई फैंसी होल्डर नहीं, बस मिरर और वुडन फ्रेम या वो गोदरेज के मेटल फ्रेम के बीच में थोड़ा सा कॉर्नर मिला, फोटो वहीं पे घुसा दो। एंड वो आल्सो कॉर्नर होता था मेरी मम्मी के बिंदियों का। अलग अलग तरह की बिंदियां जो है, क्योंकि मम्मी सुबह ऑफिस जाती थी ना, तो अब पूरी पत्ता जो है बिंदी का कौन निकाले, राइट? तो वो वहीं पे साइड में उसर से ही रोज रोज रीयूज कर करके उसको लगाया जाता था। एंड जिस आई थिंक पहले की पिक्चर्स भी उसमें जो लगी हुई होती थी पासपोर्ट साइज में, कोई एक्सप्रेशन पापा का सीरियस, मम्मी की आंखें आधी बंद है, किसी के पासपोर्ट फोटो में हम सीधे बैठे हुए हैं जैसे पासपोर्ट नहीं गवर्नमेंट जॉब का इंटरव्यू देने गए हुए हो। बट एक्चुअली 90s में नोबडी केयर्ड, फोटो अच्छी है या इंस्टाग्राम वर्दी ये क्वेश्चन हम पूछते ही नहीं थे, अपने लोग हैं बस, इसीलिए फोटो काफी इंपॉर्टेंट थी। और ड्रेसिंग टेबल के आसपास भी पूरी एक दुनिया हुआ करती थी, कंघी, बिंदी का पैकेट, टैल्कम पाउडर, हेयर क्लिप्स, रबर बैंड्स, एंड ड्रॉर खोलो तो भगवान जाने क्या क्या नहीं होता था। बट मुझे सबसे बिल्कुल ही प्यारा वो शीशा, हमारा आईना जो है वो लगता था, बिकॉज एवरी मॉर्निंग मम्मी उसके सामने रेडी होती थी। एंड रिफ्लेक्शन के आसपास जो है अपने फेवरेट लोग ऑलरेडी जो है ऐसे मौजूद होते थे। हम मूड बोर्ड्स आजकल बनाते हैं, पिंटरेस्ट के बोर्ड्स वगैरह में जाते हैं, डिजिटल गैलरीज बनाते हैं, फोन में हजारों फोटोग्राफ्स हमारी सेव्ड हैं। 90s में फोटोग्राफ्स कम होती थी और फैमिली एल्बम्स और डिस्प्लेड फोटोज का अपना एक स्पेशल प्लेस होता था, और इसीलिए हर फोटोग्राफ की फिजिकल प्रेजेंस आई थिंक उस वक्त ज्यादा थी, कोई एल्बम में, कभी वॉलेट में, कभी किसी फ्रेम में, और कभी मम्मी के ड्रेसिंग टेबल के मिरर के कोने। एक्चुअली पिंटरेस्ट बोर्ड से पहले हमारे घर की मेमोरीज पिन नहीं होती थी, टक होती थी। दोस नो दे नो द डिफरेंस बिटवीन द टू, स्टे ट्यून्ड। डूम, डूम।

0: प्रेम, निशा,
1: राहुल,
0: अंजलि, टीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s nostalgia का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s मिक्स डे।
2: वेलकम बैक रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर, मैं अंतराब के साथ और यहाँ पर चल रहा है मस्ती 90s मिक्स टेप। 90s वालों, इस जनरेशन के ट्रस्ट इश्यूज डेटिंग ऐप से शुरू नहीं किए गए थे, बिल्कुल भी नहीं किए गए थे। हमारा ट्रस्ट इश्यूज, उसकी शुरुआत हुई थी फ्रिज या अलमारी में रखे वो स्टील के मिठाई के डब्बों से। ना इमेजिन करिए कि आप घर में कुछ मीठा ढूंढ रहे हैं और सडनली आपकी नजर पड़ती है एक ब्यूटीफुल से मिठाई के डब्बे के ऊपर। दिल में एकदम एक्साइटमेंट आ जाता है कि ओहो मिठाई। हम तो ना, हम दूर से देख के रखते थे और हम नजर रखते थे, मैं और मेरा भाई, कि मम्मी कहाँ पे रख रही है। एंड दिल में ना एक्साइटमेंट ऐसी शुरू हो जाती थी कि अब हमें पता चल गया है, अब जब जैसे ही मम्मी नहीं होंगी, ऑफिस चल जाएंगे, तो हम उसको मिलकर दर दबोचेंगे। आप डब्बा नीचे उतारते हो, लिड उसका खोलते हो और अंदर से निकलता है क्या? सुई धागा, बटन मिठाई का है, नीडल्स, हुक्स, सेफ्टी पिंस और वो मेजरिंग टेप गोल गोल लपेटा हुआ। बिट्रेयल का लेवल बॉस एकदम मैक्सिमम। और सिर्फ स्विंग किट ही क्यों, 90s के घर में मिठाई के डब्बे की पॉसिबिलिटीज एंडलेस थी। कभी पुरानी रिसीट्स उसमें डाल देते थे, कभी मेडिसिन डाल के उसमें रखते थे, कभी पिक्चर फोटोग्राफ्स जो है वो डाल के रखते थे, कभी ग्रीटिंग कार्ड्स डाल के उसमें सजो के रखते थे, कभी रैंडम स्क्रूज एंड नेल्स उसमें रखा करते थे, और कभी वो मिसलेनियस कैटेगरी बन जाता था जिसका घर में कोई नहीं पता क्या होता था, कहाँ जाना है, लेकिन फेंकना अलाउड भी नहीं है, तो फिर वो उस डब्बे में चला जाएगा। और सबसे डेंजरस वो डब्बा जिस पर प्रिंटेड हो काजू कतली, है ना। आप एक्सपेक्टेशन लेके खोल रहे हो कि अंदर सिल्वर वाली वर्क वाली जो है हैप्पीनेस आपको मिलेगी, और मिलते हैं पापा के LIC के पेपर्स। एक्चुअली 90s घरों में पैकेजिंग का बड़ा ही सिंपल रूल था, डब्बा अच्छा है अगर तो संभाल के रख लो, बिकॉज अच्छा डब्बा कभी वेस्ट नहीं जा सकता। मेरे दोस्त, मिठाई खत्म हो गई लेकिन डब्बे की जिंदगी तो अभी शुरू ही हुई है। एंड द फनी थिंग इज, हम बचपन में इसे इरिटेटिंग समझते थे, आज अगर सोचो तो रीयूज और रीपर्पज का कंसेप्ट जो है घरों में कितना ज्यादा नेचुरली चलता था। कोई टर्मिनोलॉजी नहीं थी, कोई सस्टेनेबिलिटी का लेक्चर नहीं दे रहा होता था, बस मम्मी का डब्बा अच्छा है फेंकना मत, दैट्स ऑल। और मानना पड़ेगा उस एक सेंटेंस ने हमारी जनरेशन को मेंटली प्रिपेयर कर दिया, नेवर जज अ बॉक्स बाय इट्स कवर, बिकॉज 90s के घर में मिठाई के डब्बे में मिठाई मिल जाना ही एक्चुअली प्लॉट ट्विस्ट था। स्टे ट्यून्ड टू रेडियो मस्ती 24/7।

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: जब राजस्थान की हवाएं सिंगापुर के शाही स्वाद में घुल जाएं, जब लाल मांस दाल बाटी चूरमा केर सांगरी और मीठे मीठे घेवर की खुशबू दिल को छू जाए, जब शाही महारानी नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट लेकर आए द रॉयल फ्लेवर्स ऑफ राजस्थान का एक्सक्लूसिव 10-day फेस्टिवल, तो बस बात शाही बन जाए। The Royal Flavors of Rajasthan by Shahi Maharani North Indian Restaurant, 14th to 23rd August. Reserve and prepay online to enjoy the early bird menu at just $78 plus per person. Exclusively for dinner. Book your royal experience today at www.shahimaharani.com.

पेंसिल से कसरत की रील सुलझाना, क्रश का नाम हार्ट पे लिखकर हाय शर्माना, ऐसा था 90s का जमाना। ये है मस्ती 90s मिक्स टेप जाने जाना। वेलकम बैक, रेडियो मस्ती 24/7 पर चल रहा है मस्ती 90s मिक्सटेप। मैं अंतरा यहाँ पर आपके साथ 90s वाली। और 90s में एम्प्टी एक ओपिनियन था। आजकल बॉटल जो है खत्म होती है, पंप किया कुछ नहीं निकला, ओके फिनिश्ड, सीधा उसका जगह होता है डस्टबिन में फेंक दो। 90s के घरों में, जैसे कि मैं आज वहीं पे बता रही थी ना, वो सैशे के टाइम पर, कि एक्सक्यूज मी, किसने डिक्लेयर किया कि ये खत्म हो गया है? बिकॉज 90s में एम्प्टी एक फैक्ट नहीं, एक ओपिनियन हुआ करता था। शैम्पू की बॉटल को ही ले लो, अपना स्क्वीज किया, कुछ निकला नहीं, फिर मम्मी को दिया, खत्म हो गया। मम्मी बॉटल लेती, उसको देखती, और फिर वो लेजेंडरी सेंटेंस आता कि कहां खत्म हुआ है, अभी तो बहुत है इसमें। हमें उस टाइप पे समझ में नहीं आता है कि भाई उनको क्या दिख रहा है जो हमें नहीं दिख रहा है। बॉटल तो खाली हमें दिख रही है। देन द टेक्निक वहां पर आती थी, थोड़ा सा पानी अंदर डालो कि बेटा इसको पूरा यूज कर लिया करो ना, कितना पैसा खर्चा होता है इस पे। कैप क्लोज किया, शेक शेक शेक शेक, और लो जी एक और शैम्पू का सेशन आपके लिए तैयार हो जाता था। एक्चुअली एक नहीं, कभी कभी मम्मी उसे दो और तीन बार भी चला लेती थी। डिश वॉशिंग लिक्विड सेम, बॉटल में पानी, शेक शेक शेक, बोनस राउंड। हैंड वॉश, पानी, हेयर कंडीशनर, बॉटल अपसाइड डाउन करो, लोशन के लिए उसको उल्टा करके पूरी रात रखो, सुबह देखो एक और एप्लीकेशन मैजिकली अवेलेबल। और टूथपेस्ट तो मैंने वो बता ही दिया था कि फोल्ड कर करके, फिर रोल करके, फिर प्रेस करके, फिर किसी हार्ड सरफेस से स्क्वीज करते, फिर जब हम बोल दे कि अब तो डेफिनेटली खत्म, देन आता था सीजर कि इसको काट दो। अंदर से इतना प्रोडक्ट निकलता था कसम से कि हम अपने ही जजमेंट पर डाउट करने लगे। सो 90s के घरों में एक चीज काफी नेचुरल थी, वेस्ट करना अच्छा नहीं माना जाता था। उसके लिए कोई फैंसी टर्म नहीं था, नोबडी सेड लाइक लेट्स प्रैक्टिस सस्टेनेबल कंजम्पशन, वी यूज्ड टू जस्ट बी टोल्ड लाइक पैसे लगते हैं पूरा यूज करो। एंड समहाउ दैट वन लाइन टॉट अस अ लॉट, चीजों की वैल्यू करना, उसका पूरा इस्तेमाल करना, और थोड़ा सा लेजेंडरी इंडियन जुगाड़ भी, राइट? इसीलिए हम 90s वालों का सामने बॉटल को जल्दी एम्प्टी मत डिक्लेयर, कभी भी कोई नहीं कर सकता। हम उसको देखेंगे, थोड़ा पानी डालेंगे, शेक शेक शेक करेंगे एंड प्राउडली बोलेंगे, देखा अभी एक बार और चलेगा। और हम थोड़ी देर और आपके साथ यहाँ पे रहेंगे, तो आप भी बने रहो हमारे साथ।

0: बात शांति और श्रद्धा के साथ भक्ति प्रेरणा और सुकून भरे गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर मस्ती पे भक्ति सुबह 6 बजे।
1: श्रेया जरा उठ के रेडियो मस्ती स्पीकर पे लगा देना।
2: माइकी डन है मम्मा।
3: ड्यूटी
4: लास्ट टाइम मैं उठा था ना,
1: तेरी मेरी बनती नहीं पर तेरे बिना मेरी चलती भी नहीं। इस रक्षाबंधन इस नोकझोंक से बंधे रिश्ते को और भी मजबूत करे ज्योति स्टोर्स एंड फ्लावर शॉप के साथ वन कैंपल लेन। राखी लुम्बा और पूजा के सभी सामान के लिए आपका वन स्टॉप शॉप अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल एट ज्योति।

0: प्रेम, निशा,
1: राहुल,
0: अंजलि, चीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s nostalgia का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s नेक्स्ट डे।
2: नाइन्टीज के वो खूबसूरत दिन थे, शायद हमारे पास कम नहीं था, हमें कम में ज्यादा मिल जाता था। इसी बात के साथ आज का मस्ती 90s मिक्सटेप का रिवाइंड यहीं तक। वैसे आज की मेमोरीज को अगर एक साथ देखो ना, तो बड़ी एक फनी सी बात आप नोटिस करोगे। शैम्पू सैशे में लास्ट ड्रॉप तक उसका निकालना, छोटे सोप को नए सोप से चिपका देना, बॉटल सपोजिटली एम्प्टी हो जाए तो उसमें थोड़ा पानी डालकर एक और बार चलाना, मिठाई के डब्बे को एक दूसरी जिंदगी देना, एक कॉइन और पेंसिल से खुद को एंटरटेन कर लेना, मे बी हमारी जनरेशन का डिफॉल्ट सेटिंग ही कुछ ऐसा था। थोड़ा और निकल सकता है इसमें, और सिर्फ चीजों में नहीं, खुशी में भी। एंटरटेनमेंट के लिए बहुत कुछ नहीं चाहिए था, एक पेंसिल काफी थी, एक कॉइन काफी था, एक ड्रेसिंग टेबल का मिरर के कोने में लगी फैमिली फोटोग्राफ काफी थी। कभी कभी मतलब, और बॉलीवुड भी अगर देख लो, जो करण अर्जुन हम जानते हैं वो कास्टिंग के ट्विस्ट के बाद बना, जो जीता वही सिकंदर का, शेखर भी जर्नी के बीच में बदल गया। मतलब स्क्रीन के पीछे भी परफेक्ट प्लान से ज्यादा जुगाड़, चेंजेस और हैप्पी एक्सीडेंट्स चल रहे थे। मे बी दैट्स व्हाई 90s स्टिल फील्स सो ह्यूमन। एवरीथिंग वॉज नॉट पॉलिश्ड, एवरीथिंग वॉज नॉट इंस्टेंट, एवरीथिंग डेफिनेटली वॉज नॉट परफेक्ट, बट समहाउ एवरीथिंग फेल्ट इनफ। और जब लाइफ में चॉइसेस हजार है, स्क्रीन्स हजार है, फोटोज हजार है, कभी कभी याद उन्हीं छोटी चीजों की आती है जिनके बारे में तब हमने सोच के भी नहीं सोचा था एक दिन इनकी इतनी याद आएगी। सो अगर आज किसी मेमोरी ने आपको सडनली किसी पुराने घर, किसी बाथरूम के शेल्फ, किसी ड्रेसिंग टेबल या अपने बचपन के किसी वर्जन तक पहुंचा दिया, तो आई थिंक आई हैव डन माई जॉब वेल। मैं 90s वाली आंत्रा बस जाते जाते इतना कहूंगी कि 90s जरूर चले गए, हम भी बड़े हो गए, लेकिन हमारे अंदर वो बच्चा अभी भी कहीं है जो एम्प्टी बॉटल को देखकर कहता है कि रुको, इसमें अभी थोड़ा और बाकी है। एंड परहैप्स यादों के साथ ये भी तो एग्जैक्टली यही है, हर बार लगता है कि सब याद कर लिया और फिर कोई छोटी सी बात निकल आती है कि अरे हाँ यार, ये भी तो होता था। मिलते हैं अगले मस्ती 90s मिक्स टेप के नए एपिसोड में एक और ऐसी ही बिल्कुल खूबसूरत सी शानदार जर्नी हम रखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। बाय बाय एंड टेक केयर।

0: नाचे गया एग्जिट पर और गाने आ गए नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक इट आउट.

0: श्रेया जरा उठ के रेडियो मस्ती स्पीकर पे लगा देना।
1: भाई की डन है मम्मा।
2: ड्यूटी
3: लास्ट टाइम मैं उठा था ना,
2: मैं उठता था।
0: तेरी मेरी बनती नहीं, पर तेरे बिना मेरी चलती भी नहीं। इस रक्षाबंधन, इस नोक झोक से बंधे रिश्ते को और भी मजबूत करें ज्योति स्टोर्स एंड फ्लावर शॉप के साथ, वन कैंपल लेन। राखी, लुम्बा और पूजा के सभी सामान के लिए आपका वन स्टॉप शॉप, अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल एट ज्योति।

0: सस्वीकार गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर
3: चेक इट आउट

0: जब राजस्थान की हवाएं सिंगापुर के शाही स्वाद में घुल जाएं, जब लाल मांस दाल बाटी चूरमा केर सांगरी और मीठे मीठे घेवर की खुशबू दिल को छू जाए, जब शाही महारानी नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट लेकर आए द रॉयल फ्लेवर्स ऑफ राजस्थान का एक्सक्लूसिव 10-day फेस्टिवल, तो बस बात शाही बन जाए। The Royal Flavors of Rajasthan by Shahi Maharani North Indian Restaurant, 14th to 23rd August. Reserve and prepay online to enjoy the early bird menu at just $78 plus per person. Exclusively for dinner. Book your royal experience today at www.shahimaharani.com.
1: ना करण अर्जुन आएंगे ना ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे।

0: पहुंचे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।

0: करण अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे।
2: आमिर खान wondered.
3: Wow, look, I could have thought of anything. That's amazing. Yeah.
2: सलमान खान wanted answers.
4: कैसे किया ये?
2: R. Madhavan said.
5: Awesome. You're very good, yaar. Very well done.
2: And Boman Irani?
6: I say this with great respect. This is actually it's blown my mind.
2: सभी का एक ही सवाल, कैसे कर लेती है सुहानी शाह ये कमाल?
7: Anybody talks about magic in the country, I want them magic सुहानी.
2: Singapore, get ready to be spellbound with Suhani Shah, the first Indian to win at what's known as the Oscars of Magic. Wow! One Soul Escapades and Epic Encounters present Spellbound with Suhani Shah, an incredible evening of mind reading, mentalism and impossible experiences. 20th September, 6 p.m. Quetta Ayer, People's Theatre, hosted in English. Tickets at Sistic. Come curious, leave spellbound with Suhani Shah.
8: How do you know these things? Stop reading my mind.
9: जब राजस्थान की हवाएं सिंगापुर के शाही स्वाद में घुल जाएं, जब लाल मांस, दाल बाटी चूरमा, केर सांगरी और मीठे मीठे घेवर की खुशबू दिल को छू जाए, जब शाही महारानी नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट लेकर आए द रॉयल फ्लेवर्स ऑफ राजस्थान का एक्सक्लूसिव 10-day फेस्टिवल, तो बस बात शाही बन जाए। The Royal Flavors of Rajasthan by Shahi Maharani North Indian Restaurant, 14th to 23rd August. Reserve and prepay online to enjoy the early bird menu at just $78 plus per person. Exclusively for dinner. Book your royal experience today at www.shahimaharani.com.

0: श्रेया जरा उठ के रेडियो मस्ती स्पीकर पे लगा देना।
1: बाइकी डन है मम्मा।
2: जूटी
3: लास्ट टाइम मैं उठा था ना,
2: मैं उठता था।
0: तेरी मेरी बनती नहीं पर तेरे बिना मेरी चलती भी नहीं। इस रक्षाबंधन इस नोकझोंक से बंधे रिश्ते को और भी मजबूत करें ज्योति स्टोर्स एंड फ्लावर शॉप के साथ वन कैंपल लेन। राखी लुम्बा और पूजा के सभी सामान के लिए आपका वन स्टॉप शॉप अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल एट ज्योति।

0: नमस्कार आदाब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.

0: Your musty music cafe is open. Freshly brewed beats served hot and back to back.
1: You're tuned into Radio Musty 24/7 live, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.
2: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
3: अगर हम सब की जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं।
4: मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Musti 24/7. Email a brief intro to info@radiomusti.com.sg requesting for application form.
5: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
6: अर्जुन आएंगे
0: न करण अर्जुन आएंगे ना ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे।

0: नचे गया एग्जिट पर और गाने आ गए नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.

0: करण अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, फिर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे।
2: Aamir Khan wondered.
3: Wow, look, I could have thought of anything. That's amazing. Yeah.
2: Salman Khan wanted answers.
4: कैसे किया ये?
2: R. Madhavan said.
5: Awesome. You're very good, yaar. Very well done.
2: And Boman Irani?
6: I say this with great respect. This is actually it's blown my mind.
2: सभी का एक ही सवाल, कैसे कर लेती है सुहानी शाह ये कमाल?
7: Anybody talks about magic in the country, I want them magic Suhani.
2: Singapore, get ready to be spellbound with Suhani Shah, the first Indian to win at what's known as the Oscars of Magic. Wonder Soul Escapades and Epic Encounters present Spellbound with Suhani Shah, an incredible evening of mind reading, mentalism and impossible experiences. 20th September, 6 p.m. Quetta Ayer, People's Theatre, hosted in English. Tickets at Sistik. Come curious, leave spellbound with Suhani Shah.
8: How do you know these things? Stop reading my mind.
9: जब राजस्थान की हवाएं सिंगापुर के शाही स्वाद में घुल जाएं, जब लाल मांस, दाल बाटी चूरमा, केर सांगरी और मीठे मीठे घेवर की खुशबू दिल को छू जाए, जब शाही महारानी नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट लेकर आए द रॉयल फ्लेवर्स ऑफ राजस्थान का एक्सक्लूसिव 10-day फेस्टिवल, तो बस बात शाही बन जाए। The Royal Flavors of Rajasthan by Shahi Maharani North Indian Restaurant, 14th to 23rd August. Reserve and prepay online to enjoy the early bird menu at just $78 plus per person. Exclusively for dinner. Book your royal experience today at www.shahimaharani.com.

0: श्रेया जरा उठ के रेडियो मस्ती स्पीकर पे लगा देना।
1: माइकी डन है मम्मा।
2: जूटी
3: लास्ट टाइम मैं उठा था ना,
2: मैं उठता था।
0: तेरी मेरी बनती नहीं पर तेरे बिना मेरी चलती भी नहीं। इस रक्षाबंधन इस नोक झोक से बंधे रिश्ते को और भी मजबूत करे ज्योति स्टोर्स एंड फ्लावर शॉप के साथ वन कैंपल लेन। राखी, लुम्बा और पूजा के सभी सामान के लिए आपका वन स्टॉप शॉप अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल एट

0: आदाब, सत श्री अकाल, गेम जय सिंगापुर, सारू जय।
1: नो टॉकिंग अलाउड, सिर्फ म्यूजिक बोलेगा। बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे।
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। चेक इट आउट।

0: Your Masti Music Cafe is open. Freshly brewed beats served hot and back to back.
1: Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
2: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
0: छोटी छोटी बातें छोड़ो और बड़े बड़े हिट सुनो। आपके रिक्वेस्ट सी बनाएंगे शो का ब्लॉकबस्टर प्लेलिस्ट। रोमांटिक, फिल्मी, पार्टी वाइब्स, सब मिलेगा यही के यही। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
3: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।
4: चेक इट आउट।
0: न करण अर्जुन आएंगे, ना ही आरजेस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे।

शुरुआत हो थोड़ी सी न्यूज के साथ, थोड़ी सी गॉसिप के साथ और बहुत सारी मस्ती के साथ। क्योंकि जब ट्यूसडे आता है ना, तो आती है आरजे अंतरा की बातों की बारिश। Your daily scoop of what's hot, what's viral and what's worth knowing. Served fresh with great music and my unbeatable charm, you see. Tune in to me on Masti Ka Mantra with RJ Antara. Har Tuesday subah 7 baje, sirf Radio Masti, 24/7 Live Fan. Your Masti Music Cafe is open. Freshly brewed beats

ओ तैयब टेल मी हाउ हाउ, तैयब टेल मी हाउ हाउ, ओ लड़की तेरी ताजमहल सी हम करे वाओ वाओ।

0: रूलिंग द काउंटडाउन. ये है मस्ती टॉप 20. नाउ पंपिंग अप योर थर्सडे इवनिंग्स 5 PM ऑनवर्ड्स द लेटेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट द वीक्स टॉप चार्ट बस्टर्स.
1: बिल्कुल जोश में रहिए. यहाँ पर रेडियो मस्ती 24/7 पर आ गई है. जी हाँ, दी ओरिजिनल ओनर ऑफ दिस शो. एंड कहते हैं ना ओजी ओरिजिनल गैंगस्टर भी. गुड इवनिंग. 5:01 और यहाँ पर रेडियो मस्ती 24/7 पर रेणुका आपकी सेवा में. जी हाँ बिल्कुल, आपकी सेवा में बिल्कुल हमेशा की तरह. क्यों नहीं, क्योंकि भाई ये वाला शो होता है मेरा फेवरेट. नॉट बिकॉज मुझे टॉप चार्ट्स पसंद है, ऐसा कुछ नहीं है. मुझे थर्सडे शाम पसंद है और मुझे आप लोग पसंद है और मुझे पसंद है हमारी गप्पे शप्पे. ठीक है, तो चलो वही करेंगे हम और खूब सारी बातें करेंगे. अब देखो यहाँ पर हमने किसी को हाल ही में एक हैम्पर भेजा था. 2-3 महीने पहले हमारा यहाँ पर एक कॉन्टेस्ट चल रहा था. हैम्पर भेजा था हमने जीजी मार्ट की तरफ से और उन्होंने खाना शुरू किया है. सब कुछ खा रहे हैं और उसमें जो जामुन ट्रायंगल्स हैं वो उनको बहुत ज्यादा भा गए. तो बोल रहे हैं हमें फोटो भेज के कि भाई डब्बा खत्म हो रहा है, कहां से ले हम बताइए. जीत के बैठे हैं और फिर भूल गए कि ये जिताया किसने था. यही होता है रेडियो मस्ती 24/7 पर, बिल्कुल यही होता है. तभी तो हमें आप इतने अच्छे लगते हैं. सो फ्रैंक एंड सो यूजलेस मेनी ऑफ यू. Nevertheless, we love you because आप ही हमारी choice. Radio Masti 24/7 पर चल रहा है मस्ती टॉप चार्ट्स. शुरू करेंगे गाना नंबर 20.

0: अपन, पता नहीं इतनी लड़ाई हुई यहाँ पर ऑफिस में हमारे आज कि भैया ये गाना हटा दो, मेरे को बहुत ढीला लगता है। बोला नहीं नहीं नहीं बहुत अच्छा चल रहा है, आपको कुछ नहीं पता होता, आप सुनते गाँव में। ओ ओके, हमेशा की तरह हार मानती हुई रेणुका गाना नंबर 20 आपको चलाती हुई वापस आती हूँ। खबरें बिल्कुल करेंगे, गप्पे शप्पे मारेंगे, एंड ऑफकोर्स वी विल बी टुगेदर टिल 8 इन द इवनिंग। वेल अ ब्यूटिफुल थर्सडे इवनिंग गाइस, इन केस आप सुन रहे हैं इसका एनकोर, तो संडे है वो भी उतना ही ब्यूटिफुल है ना।
1: Trending song number 20.

0: बात है, क्या बात है, मतलब क्या बात है। आवाज आवाज पहचानी आपने कि नहीं पहचानी? सीरियसली नहीं पहचानी? अरिजीत सिंह की आवाज भूल गए आप, और अमाल मलिक की आवाज भूल गए आप, और आपको लग रहा है कि ये आवारापन आपने पहचाना ही नहीं? क्या बात कर रहे हो यार। रेडियो मस्ती 24/7, जी हाँ, रेणुका के साथ यहाँ पर आप जुड़े हुए हैं मस्ती टॉप चार्ट्स पे। और अभी भी आपने सुना गाना नंबर 20। आप जानते हैं कि दिस ट्रैक इज एक्चुअली बाय द वन एंड ओनली अमाल मलिक। जी हाँ, नॉस्टैल्जिया एब्सोल्युटली। हमको 2007 की वो वाली फिल्म याद आ रही है, तेरा मेरा रिश्ता कंटिन्यूज, या तो फिर आओ दोबारा, है ना? वो वाले गाने नहीं याद आ रहे आपको इसको सुन के? बट वेल, ऑन रेडियो मसी 24/7 गाइस, दिस इज आवारापन 2 का साउंड ट्रैक एंड द टाइटल ट्रैक, एंड दैट टुक नंबर 20। नंबर 20 के बाद में हम नंबर 19 पर भी जाएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए एक प्यारा सा फ्लैशबैक में जाएंगे और गाना सुनेंगे छन छन करते हुए। वन अमेजिंग ट्रैक फ्रॉम मुना भाई MBBS कमिंग अप राइट नाउ, रेडियो मस्ती 24/7 पर।
1: बॉलीवुड फ्लैशबैक।

0: यार क्या गाना है मुन्ना भाई MBBS का, ये छन छन। मैं यहाँ बैठे बैठे भूल ही गई कि यार ये गाना चल रहा है और मुझे उसके बाद बोलना है। मैं बिल्कुल भूल गई थी। रेडियो मस्ती 24/7, वेलकम वेलकम। जी हाँ, धीरे धीरे सब टुनकते हुए यहाँ पर आ रहे हैं। सलमा जी गुड इवनिंग, पधार गई हैं आप। आज तो 90s का शो था, उसमें तो आपका फुल ऑन एक्शन होगा, है ना। एक्चुअली आज छुप के मैं भी 90s का शो सुन रही थी। नॉट बैड, नॉट बैड।
1: Musti Top 20 Bollywood Chart Busters of the Week, full on Renuka style. Renuka!
0: आज की खबर कुछ ऐसी है कि हमने हमारे हमारे सोशल मीडिया पर बड़ा एक छोटा सा सवाल पूछा है, छोटा सा है पर काफी भारी है। हमने ये कहा है कि हम आपको दे रहे हैं $1 million, चाहिए चाहिए तो फिर पहली बात तो हमारा शो सुनो, और दूसरी बात ये कि हमारे सोशल मीडिया पर जाके ये बताओ कि भाई साहब अगर तो आपको आज के दिन में $1 million मिल गए तो आपका रिएक्शन क्या होगा, और रिएक्शन जो होगा सो होगा, आप सबसे पहले किस चीज पर वो खर्चोगे। तो भाई हमारे लिसनर्स हमेशा की तरह बहुत ही डेढ़ शाने। सबसे पहले सपना जीवा लिख रही है, पहले हाथ में आने दो फिर सोचेंगे क्या करना है, सपने देखने से क्या फायदा। अरे सपना जी, अगर आप सपने नहीं देखोगे तो कौन देखेगा सपने। रेडियो मस्ती 24/7 पर जब तक बेटा सपने नहीं देखोगे तो हकीकत में कैसे वो चीज तुमको मिलेगी, बताओ।
2: मेरी चलिया।
0: मैं गलत गा रही हूँ लेकिन गाना बहुत बढ़िया है। जी हाँ, द रिश, और जैसे कि आप जानते हैं इसमें अलका याग्निक की आवाज है, उनका आखिरी आखिरी गाना है। रेडियो मस्ती 24/7 पर सुनते हैं ये वाला गाना, विच इज ऑन नंबर 19।
3: जब राजस्थान की हवाएं सिंगापुर के शाही स्वाद में घुल जाए, जब लाल मांस, दाल बाटी चूरमा, केर सांगरी और मीठे मीठे घेवर की खुशबू दिल को छू जाए, जब शाही महारानी नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट लेकर आए द रॉयल फ्लेवर्स ऑफ राजस्थान का एक्सक्लूसिव 10-day फेस्टिवल, तो बस बात शाही बन जाए। The Royal Flavors of Rajasthan by Shahi Maharani North Indian Restaurant, 14th to 23rd August. Reserve and prepay online to enjoy the early bird menu at just $78 plus per person. Exclusively for dinner. Book your royal experience today at www.shahimaharani.com.
4: Trending song number 19.
5: Meri aankhein soti hain मगर ये दिल जागता है। ए मेरी प्यारी चलिया।

0: आपको इतने प्यार से बुलाएगा तो भी अगर आप नहीं आओगे तो फिर कितने क्रूर किस्म के इंसान हो जाओगे आप। क्या हाल चाल है भाई, रेडियो मस्ती 24/7 पर, यहाँ पर हम सभी को बोल रहे हैं कि भाई हम यहाँ पहुंच चुके हैं बिल्कुल, और आप ही का इंतजार है। सपना जी जरा हॉटलाइन पर लिख लीजिए, मैं अपना पर्सनल फोन इस समय देख नहीं रही हूँ। कुछ कुछ लोगों के पास मेरा ना पर्सनल नंबर है, आप मान नहीं सकते, और ना वो ना मेरे को वहीं पर लिखते हैं इवन ड्यूरिंग द शो। हाँ किस तरह से स्निचिंग करने में मजा आ रहा है मेरे को इस टाइम। बट यू नो व्हाट, आई वांट टू टेक यू टू दिस न्यूज व्हिच हैज बीन अराउंड एक्चुअली। अब आपका क्या कहना है इस बारे में कि भाई बड़े बड़े ये जो स्टार्स हैं हमारे बॉलीवुड के, शाहरुख खान है, अजय देवगन है, टाइगर श्रॉफ है, ये सारे के सारे जब जाके विमल इलायची की एडवर्टाइजमेंट में आते हैं और उस तरह के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं तो इनकी अपनी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सो वेल FDA विच इज द Food and Drug Administration of Maharashtra, उन्होंने इशू किया है एक शो कॉज नोटिस इन तीनों एक्टर्स को, आस्किंग देम टू एक्सप्लेन कि भाई क्या है तुम्हारा सिलसिला इस एडवर्टाइजमेंट के साथ, 15 दिन के अंदर अंदर बताओ, बिकॉज बहुत ही जरूरी है, और साथ ही में अपने डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करो जो कि बताएंगे कि आपने एंडोर्स जब किया ये वाला प्रोडक्ट तो आपने क्या एग्री किया था। ठीक है, अपना एग्रीमेंट दिखाओ और ये दिखाओ माल कितना अंदर किया है। वेल, ये जो रेगुलेटर है उन्होंने डायरेक्ट किया है एक्टर्स को टू स्टॉप पार्टिसिपेटिंग इन द एडवर्टाइजमेंट्स एंड रिमूव प्रमोशनल मटीरियल, जो भी उनके ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट है, वेबसाइट है, अदर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं जो उनके कंट्रोल में है, हटा दो, लोगों को गंदी आदतें मत डालो, एंड विच इज राइट, है ना, क्योंकि कैंपेन ब्रीफ्स हैं, पेमेंट्स हैं, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन है, आपको क्या कहा गया था सारी चीजें हमको पहले से दे दो, नहीं तो बाद में जाके क्या बोलते हैं ये लोग जब खिसकते हैं कि भाई हमें तो ये कहा था कि ये होगा, हमें तो वो कहा था वो होगा, लेकिन हुआ कुछ और। तो बेटा आप बिल्कुल फंस चुके हैं इस टाइम पर, लोगों को गंदी आदतें लगाते हो और खुद पतली गली से हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हारी। रेडियो मस्ती 24/7 पर आप नेक्स्ट इज गाना नंबर 18। ये गाना कौन सा है, हम कुछ दिनों से चला रहे हैं, इट्स अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ट्रैक एंड आई नीड यू टू लिसन टू दिस वन। ऑलराइट, कमिंग अप नेक्स्ट रेडियो मस्ती 24/7 पर रेणुका के साथ मस्ती टॉप चार्ट्स।
1: ट्रेंडिंग सॉन्ग नंबर 18।

0: एंड नहीं, दिस इज फ्रॉम बटवारा 1947. आपने फिल्म देखी है या नहीं देखी है? सीरियसली अगर नहीं देखी है तो चल दो, साथ साथ चलते हैं देखने के लिए, बिकॉज आई बीन हियरिंग सच गुड रिव्यूज अबाउट दिस फिल्म कि मन कर रहा है कि या तो जल्दी से ये OTT पर आ जाए या फिर मैं जाकर आराम से पॉपकॉर्न लेके और अपनी एक कोल्ड ड्रिंक लेके वहाँ पर बैठूँ और देखूँ. और यहाँ पर देखिए ना, मैं तो फिल्म जाने की बात कर रही हूँ, कोई यहाँ पर सेकेंड हनीमून पर जाने की भी बातें कर रहा है. मतलब क्या बात है बॉस, क्या बात है, मजा ही आ गया.
1: Must be top 20 Bollywood chart busters of the week. Full on Renuka style. Renuka.
0: जी बिल्कुल, योर डार्लिंग ऑन द एयरवेव्स. इट इज 5:30 और 50 सेकंड रेडियो मस्ती 24/7 पर आप सुन रहे हैं रेणुका को. और आप जानते हैं कि मतलब यहाँ पर जो अभी भी गाना चल रहा था तबस्सुम, इट्स अ मैसिव कोलैबोरेशन. ऑस्कर विनर हमारे AR रहमान और लेजेंडरी लिरिसिस्ट जावेद अख्तर जी के बीच में. एंड ऑफ कोर्स आवाजें आपने सुनी सोनू निगम की अलॉन्ग साइड द प्लेबैक सिंगर हीर. आप जानते हैं इस गाने का एक मतलब दो तरह का मीनिंग है इसमें. एक तो तबस्सुम, जिसका मतलब होता है स्माइल या स्माइलिंग, राइट, इन उर्दू. एंड ऑफ कोर्स यही नाम है कैरेक्टर का जिसको प्ले किया है ईशा संधीर ने उस फिल्म में. एंड दिस इज द लव इंटरेस्ट ऑफ द पोएट हबीब अनवर. क्या बात है, रेडियो मस्ती 24/7 पर. अगला गाना भी रोमांटिक ही रखेंगे क्योंकि जो लोग दूसरे हनीमून पर जाना चाहते हैं भाई, उनके लिए कंटिन्यू तो करना हमारा फर्ज है ना. यहाँ पर $1 million जेब में आए नहीं कि रोमांस ही रोमांस जागे जा रहा है. क्या बात है.
2: Musty Song of the Hour. Song of the Hour.

फ्रेंकली मैंने 2012 में इससे ज्यादा बेहतरीन कोई भी रोमांटिक गाना नहीं सुना होगा. वेल दिस इज ऑफ कोर्स फ्रॉम करण जौहर्स मूवी स्टूडेंट ऑफ द ईयर एंड दिस मार्क द मेजर प्लेबैक सिंगिंग ब्रेक थ्रू नीति मोहन के लिए. जी हाँ, जिनको सडनली कॉल आई विशाल ददलानी से, उन्होंने कहा गाना गाओगी? गाऊंगी. ठीक है, आ जाओ फिर. नीति मोहन, शेखर अफजियानी एंड ऑफ कोर्स सलीम मर्चेंट ऑन द वोकल्स. सुन रहे हैं आप इश्क वाला लव, कचोरी वाला आलू, ढोकले वाला बेसन. इश्क वाला लव.

0: Aamir Khan wondered.
1: Wow. Look, I could have thought of anything. That's amazing.
0: Salman Khan wanted answers.
2: Kaise kiya ye?
0: R. Madhavan said.
3: Awesome.
2: You're very good, yaar. Very well done.
0: And Boman Irani?
4: I say this with great respect. This is actually, it's blown my mind.
0: सभी का एक ही सवाल, कैसे कर लेती है सुहानी शाह ये कमाल?
5: Anybody talks about magic in the country, I want them magic Suhani.
0: Singapore, get ready to be spellbound with Suhani Shah, the first Indian to win at what's known as the Oscars of Magic. Wonder Soul Escapades and Epic Encounters present Spellbound with Suhani Shah, an incredible evening of mind reading, mentalism and impossible experiences. 20th September, 6 p.m. Quetta Ayer People's Theatre, hosted in English. Tickets at Sistic. Come curious, leave spellbound with Suhani Shah.
6: How do you know these things? Stop reading my mind.
7: इमेजिन अगर कोई ये बता सके कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूँ, नहीं मेरे दिमाग में क्या आज है, तू कहे तो मैं बता दूँ, वो वाला हाल है सुहानी शाह का, सीरियसली। मतलब लोगों के दिमाग के अंदर घुस के बता देती है, सोच क्या रहे हो तुम, एंड दैट इज अमेजिंग। हजारों वीडियोस हैं इसके और वो हर बार जब स्टेज पे जाती है ना, शी एक्चुअली प्रूव्स इट, सीरियसली। इट्स अ यूनिक एबिलिटी टू रीड माइंड्स, एंड ऑफ कोर्स जो ऑडियंस के साथ एंगेजमेंट है वो तो देखते ही बनती है, आपको देखना है, मैजिक वैजिक नहीं है, शी इज जस्ट अमेजिंग। और जब तक आप देखेंगे नहीं, आपको मैं जितनी भी भाषा में समझाऊं यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड, बट यू नो यू हैव टू वॉच बिकॉज दिस इज योर अपॉर्चुनिटी गाइज। इन सिंगापुर $69 से उनकी टिकट्स हो रही हैं शुरू, एंड ऑफ कोर्स दिस इज हैपनिंग ऑन द 20th ऑफ सितंबर। अगर कोई शो मिस करने का मुझे वाकई पहली बार दुख हो रहा है ना, तो वो हो रहा है इस शो का, बिकॉज आई एम बिजी दैट डे, बहुत गड़बड़ है, मैं सिंगापुर में नहीं होंगी। सीरियसली स्पीकिंग 6 बजे से है ये वाला शो 20th सितंबर को, एंड दिस इज सुहानी शाह एंड शी इज बैक ऑफ कोर्स टू कैप्टिवेट एवरीबडी। दिस शो इज कॉल्ड स्पेल बाउंड, एंड सीरियसली जब आप अंदर जाएंगे आप बोलेंगे मैं पकड़ लूंगा इसको, ये कैसे पकड़, कैसे देखती है, कैसे पढ़ती है, लेकिन द मोमेंट यू वॉक आउट आई टेल यू यू विल बी एब्सोल्युटली स्पेल बाउंड। So you're all welcome to buy your tickets on sistic.com.sg, guys. Welcome. It's called Spellbound, and of course, it is Suhani Shah live in Singapore. And ye wala hai gana number 17 coming up next on Radio Masti 24/7 Masti Top Charts.
8: Trending song number 17.

0: सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: श्रेया जरा उठ के रेडियो मस्ती स्पीकर पे लगा देना।
2: भाई की डन है मम्मा।
3: ड्यूटी
4: लास्ट टाइम मैं उठा था ना,
3: मैं उठता था।
1: तेरी मेरी बनती नहीं, पर तेरे बिना मेरी चलती भी नहीं। इस रक्षाबंधन, इस नोकझोंक से बंधे रिश्ते को और भी मजबूत करे ज्योति स्टोर्स एंड फ्लावर शॉप के साथ, वन कैंपल लेन। राखी, लुम्बा और पूजा के सभी सामान के लिए आपका वन स्टॉप शॉप, अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल एट jyoti.com.sg।
5: यार इतना प्यारा गाना है ये, सारी उम्र हमें संग रहना है। अच्छा पता है क्या, मैं जब ज्योति स्टोर की बात करती हूँ ना, ठीक है रक्षाबंधन है, राखी है, इनफैक्ट विद इन 2 hours राखी डिलीवर कर देते हैं ये, यू नो दे से 2 दिन में करेंगे, बट दे डू इट विद इन 2 hours, इट इज लाइक दैट क्विक। एंड यू कैन ऑफ कोर्स सिलेक्ट फ्रॉम jyoti.com.sg, जो उनकी ऑनलाइन साइट है, वहां पर जाके आप बिल्कुल अपनी राखी चूज कर सकते हैं, एंड इट्स जस्ट यू नो सो क्विक एंड ईजी। लेकिन मैं सिर्फ बात इस चीज की नहीं कर रही हूँ, मैं करना चाहती हूँ jyoti.com.sg पर उनके जो बाकी के सारी की सारी चीज़ें। You know, when I came to Singapore, तो पहली बार मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार दिवाली पे कहाँ जाएं, रक्षाबंधन पे कहाँ जाएं, कहाँ से लें चीजें, because obviously it was not that easy, right? And I tell you, Jyoti did an amazing job. ऐसे यूनिक चीजें वहां पर हो जाती थी। इनफैक्ट आज के दिन भी अगर आप जाएंगे, प्रेशर कुकर से लेकर तवे से लेकर कढ़ाइयों से लेके, ठीक भी हो जाती हैं चीजें और नई वाली भी आप ले सकते हो। सो इट्स लाइक अ वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल द इंडियन कम्युनिटी, आई कैन प्रोमिस यू दैट, इफ यू लुकिंग फॉर anything that you want for festivals or otherwise. And of course ab to Ganpati ji bhi aane wale hain, to agar aap dhoond rahe hain the perfect idol, then you can also go. And of course they have a beautiful catalog, sab kuch aapko shayad unke website pe nahi milega, lekin if you call them they can actually show you exactly ki kya kya उनके पास है। उफ कमाल की दुकान है, बाय गॉड की कसम दिल खुश हो गया।
6: कैसे बनी फुलौड़ी बिना चटनी, कैसे बनी।
5: एंड दैट इज गाना नंबर 16 कमिंग अप। जी हाँ, मैं इसको हमेशा टॉप 5 में रखती हूँ इस गाने को, लेकिन समहाउ ये जब कोई और इस कुर्सी पे बैठता ना इस शो पे, मैं कहती हूँ बदल जाती है जिंदगी।
7: ट्रेंडिंग सॉन्ग नंबर 16।

वाकई इस गाने को सुन के बिल्कुल ऐसा लगता है कि कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। कुमार सानू की आवाज इस समय आप सुन रहे हैं 1942 अ लव स्टोरी। जी हाँ, इसमें आपने किसको देखा था, कुछ याद है? मनीषा कोइराला के साथ में कौन था एक्टर, कौन था?

0: एग्जैक्टली ऐसी फीलिंग होने वाली है आपको जब आप जाएंगे टू द जर्नी ऑफ इंडियाज रॉयल डेजर्ट किंगडम. जी हाँ, शाही महारानी लेकर आया आपके लिए रॉयल फ्लेवर्स ऑफ राजस्थान सिंगापुर में सिर्फ और सिर्फ 10 दिन का ये फेस्टिवल. आप जानते हैं कि अब से लेकर चल रहा है 23 अगस्त तक. जी हाँ, इट्स ओनली टिल दिस वीकेंड. जहाँ पर कहते हैं ना द लैंड ऑफ किंग्स राजस्थान का क्यूजीन, ऐसा कोई और नहीं है खाना पूरे के पूरे भारतवर्ष में. मतलब उनका कहना बिल्कुल सही बात है. आप अगर देखेंगे तो इसमें किस तरह का मेन्यू है वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन में, एंड ऑफ कोर्स इट इज $78 प्लस प्लस पर पर्सन. लेकिन अगर आप मेन्यू देखेंगे तो आपको लगेगा जोधपुरी गट्टे की सब्जी, पनीर पापड़ की सब्जी, लाल मांस, राजस्थानी मुर्ग के सोवेटा. मतलब मैं कहती हूँ ये क्या क्या है यार, इनके तो नाम से ही लग रहा है. आलू प्याज की सब्जी, केर सांगरी, दाल बाटी चूरमा, मोतिया पिलाव, मिसी और बाजरा की रोटी, हाय हाय घेवर. मतलब हेलो, मत दिखाओ तेवर, चले जाओ. दिस इज शाही महारानी का ऑब्वियसली द रॉयल राजस्थान फेस्टिवल जिसके बारे में बात कर रही हूँ. एंड अप नेक्स्ट इज हमारा गाना नंबर 15. लो जी, बिल्कुल आपके लिए तैयार है रेडियो मस्ती 24/7 पर ये वाला गाना. कमिंग अप नेक्स्ट राइट हियर राइट नाउ.
1: जब राजस्थान की हवाएं सिंगापुर के शाही स्वाद में घुल जाएं, जब लाल मांस, दाल बाटी चूरमा, केर सांगरी और मीठे मीठे घेवर की खुशबू दिल को छू जाए, जब शाही महारानी नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट लेकर आए द रॉयल फ्लेवर्स ऑफ राजस्थान का एक्सक्लूसिव 10-डे फेस्टिवल, तो बस बात शाही बन जाए. Royal Flavors of Rajasthan by Shahi Maharani North Indian Restaurant, 14th to 23rd August. Reserve and prepay online to enjoy the early bird menu at just $78 plus plus per person. Exclusively for dinner. Book your royal experience today at www.shahimaharani.com.
2: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं.
3: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं. मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
4: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
5: Trending song number 15.

0: दस का बीस।
1: अरे अब बस 10 से दिल कहाँ भरेगा।
2: मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है। टाइम टू रेज द बार। रम्मा मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल। Now, pumping up your Thursday evenings, 5 PM onwards, catch the OG rockstar Renuka with the week's top chart busters.
3: देखिए देखिए अब यहाँ पर हमारे साथ टेक्निकल डिटेल्स भी डिस्कस होती हैं। रेडियो मस्ती 24/7 पर आप हैं रेणुका के साथ। जी हाँ, चल रहा है मस्ती टॉप चार्ट्स, हमारा दूसरा घंटा। गाना नंबर 15 से गाना नंबर 20 आप सुन चुके हैं, या रादर गाना नंबर 20 से गाना नंबर 15 तक आप सुन चुके हैं, और अब आप सुनेंगे इस घंटे गाना नंबर 14, 13, 12, 11। देखते हैं कितने। लेकिन एक बात पक्की है कि मेरी प्लेलिस्ट पूरी की पूरी ऊपर से नीचे हो चुकी है। जी हाँ, टांगे ऊपर सर नीचे। अब क्या है ना, इस कुर्सी पर मैंने ना अगली बार ऐसा कुछ लगा देना है कि बंदा यहाँ पर जो बैठेगा थर्सडे शाम को ना, मेरे अलावा वो कुछ बदल नहीं पाएगा। सीरियसली, मतलब इतना कॉन्ट्रास्ट यार, टॉप 5 वाले गाने सारे के सारे 15-16 पे चल रहे हैं। अब क्या करेंगे, अब मैं आकर अगर सब कुछ बदल दूंगी तो फिर आप लोग कहेंगे कि क्या बात है भाई, गाने इतनी छलांगे कैसे लगा रहे हैं आजकल, व्हाट इज हैपनिंग, स्प्रिंग लगा के बैठे के नीचे। बट कमिंग बैक टू द टेक्निकल डिटेल्स जो हम लोग डिस्कस करते हैं, वेल टेक्निकल डिटेल्स में ऐसे होता है कि शर्मा जी अभी बोल रही हैं ये गाना आपने बिल्कुल सही टाइम पर लगाया है, अभी ना ये क्योंकि घंटा बदलेगा तो ये गाना कट जाएगा। मतलब आप कितने खुश हो रहे इस बात से कि जो गाने आपको नहीं पसंद है वो डेफिनेटली पूरे बजेंगे ही नहीं, क्या बात है। रेडियो मस्ती 24/7 पर अगली खबर देने से पहले हम आपको बताएंगे कि अगला गाना जो आने वाला है वो गाना नंबर 14, एंड ऑफ कोर्स इट इज आल्सो अ रीमेक, अगर आप बता सकते हैं तो बताएं, इट इज फ्रॉम द साउंडट्रैक ऑफ भाई तेरा स्टार है। एंड नंबर 13 पर ऑफ कोर्स इज अ ब्यूटीफुल ट्रैक फ्रॉम मैं वापस आऊंगा।
4: कमाल है,
3: आपने देखी या नहीं देखी ये वाली फिल्म, अब तो नेटफ्लिक्स पर है।
4: ना मुसीबतें
3: देखनी तो बनती है बॉस। रेडियो मस्ती 24/7 पर बैक टू बैक गाना 14 एंड 13, एंड ऑफ कोर्स मेरा नंबर है 9151896 3। भेजो भेजो मैसेज भेजो।
5: ट्रेंडिंग सॉन्ग नंबर 14।

0: जब हमारा कोई शो होता है सुपर हिट तो आप कहते हैं और रेडियो मस्ती 24/7 कहता है क्यों नहीं। Presenting the encore of your favorite shows. Another day, another time. For your listening pleasure only. Because super hits deserve a repeat. Check out the encore show schedule on our app menu.
1: Only on Radio Musty 24/7 Live. A part of Musty Media Network Singapore. Trending song. Number 13.

0: भाई कमाल तो है इस फिल्म का, एब्सोल्युटली इतनी जोर जोर से बोलो क्या कमाल है, क्या कमाल है। लेकिन यार एंड में वही बात याद आती है, धोती फाड़ के रुमाल है। ओहो क्या बात है, इतने गंदे गंदे जोक शाम के 6:12 पर रेडियो मस्ती 24/7 रेणुका, वी एक्सपेक्ट बेटर।
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। चेक इट
0: आउट, एब्सोल्युटली चेक अस आउट गाइस, एंड हैव यू चेक्ड कि हमारा जो ऐप का नाम है, इट हैज चेंज्ड टू मस्ती मीडिया 24/7। अब जाके ना बुद्धू मत बनना, लोगों को ये मत कहना अच्छा सुनो तुमने रेडियो मस्ती 24/7 का ऐप लिया। नहीं, वो ऐप मिलेगा ही नहीं उनको, तो वो लेंगे कहां से। मस्ती मीडिया 24/7 क्यों? क्योंकि भाई सिर्फ रेडियो तो है नहीं ना, हम AVI भी तो उसी में से देखते हैं। अब क्या करें, लोग कहते हैं रेडियो की आंखें कैसे होती हैं, तो हमने कहा भैया हम दिखाते हैं। मस्ती मीडिया 24/7 ऐप डाउनलोड करो और उसमें जाकर रेडियो मस्ती 24/7 भी सुनो और साथ ही साथ में AVI दैट इज ऑडियो विजुअल इंटरैक्टिव भी देखो। एंड गेस व्हाट, कुछ ही दिनों में ऐसे ऐसे फीचर आ रहे हैं कि मैं लिख के देती हूँ पूरे के पूरे सिंगापुर में, क्या मतलब सिंगापुर, पूरे एशिया पैसिफिक में। अगर आपको इससे बेहतर कोई ऐप मिल जाए तो मेरा नाम आप बदल देना, और बदल दोगे तो क्या रखोगे ये मुझसे आज अप्रूवल ले लो। हाय हाय क्या गाना है। रेडियो मस्ती 24/7 पर कमिंग अप नेक्स्ट इज ख्वाब देखे मोनाली और नीरज श्रीधर की आवाज है, एंड ऑफ कोर्स फॉलोड बाय गाना नंबर 12 कहीं जाना मत बिल्कुल यहीं रहना रेडियो मस्ती 24/7 पर। आज का सवाल छोटा सा ये था कि $1 million मिलेगा तो सबसे पहले क्या करोगे, बता दो, आप भी बता दो। और सलमा मोमोज ऑफर कर रही है, शर्म नाम की कोई चीज भेज दो, यहाँ पर फोटोएं मत भेजो, असली भेजो कि मैं दरवाजा खोलूं और सामने कुरियर खड़ा हो। आय हाय ओए होए।
1: It's time for Musty Song of the Hour.

0: चिका चिका चिका चिका। आजकल आपने देखा है कि हर दूसरा इंसान इतना इंटेलिजेंट, इतना नॉलेजेबल, इतना आर्टिस्टिक, इतना कुछ साउंड करता है कि लगता है वाह यार, इस दुनिया में मतलब कोई निकम्मा है ही नहीं, सारे के सारे एक से बढ़कर एक समझदार लोग हैं, है ना? आपको नहीं लगता? ये तब से हुआ है जब से AI, ChatGPT, Claude, ये वो सब हमारे हाथ लगे हैं।
1: They are fresh, they are hot, they are spicy, and they are happening. Join us on Masti Top 20.
0: Masti Top Charts, Renuka ke saath. Aap jante hain ki ek insaan jise poocho, what's your name? I Rohan. Ye bolta tha. Wo aaj ke din mein likh raha hai, my name is Rohan, and how are you doing, my lady? Maine kaha, hey, English itni sari, phir pata laga ki iska to chat bot chal raha hai. Wahan par AI mein likh likh ke, wahan se lambe lambe मैसेजेस भेज रहा है। चलो कोई ना, आजकल आप फेसबुक देखो, आप इंस्टाग्राम देखो, आप लिंक्डइन देख लो, लोगों के इतने लंबे लंबे विचार, भाषण पे भाषण, इंटेलिजेंट बातें, ओ माय गॉड, मैं भी कहूँ पता नहीं क्या हो गया। और सबसे घटिया चीज है वो AI जनरेटेड जो फोटोज और आर्टवर्क है, जैसा कि आज हमने भी डाला हुआ है अपने सोशल मीडिया पर मिलियनेयर वाला। मैं कहती हूँ सारे लेजी हरकतें कोई भी जिंदगी में करानी हो इंसानों को दे दो, एंड कितनी जल्दी लत लग जाती है पूछो मत। जैसे कि आज लेजी मोमोज बनाए गए हैं किसी के घर पे। अब बताइए, जब मोमोज हैं वो लेजी कैसे हो गए? लेजी तो आप हो ना, इसीलिए वैसे बने हैं। बट ऑन रेडियो मस्ती गाइज, द नेक्स्ट थिंग इज अबाउट जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। जी हाँ, द कल्ट क्लासिक, आपको याद है? अब उसका सीक्वल बनने की बात हो रही है। इमेजिन, डायरेक्टर जोया अख्तर, जी हाँ, शी हैज ड्रॉप्ड अ प्रीटी बिग हिंट एंड शी इज एक्सप्लोरिंग द आइडिया कि ऋतिक रोशन, फरहान अख्तर, अभय देओल, इन लोगों को दोबारा से लाया जाए क्या? आपको क्या लगता है, लाया जाए या नया माल लेकर आए? मतलब आई वुड लव टू हियर योर व्यूज। मुझे लगता है कि समटाइम्स जो चीज अच्छी है ना, उसको अच्छा ही छोड़कर उस मोड पर आगे निकल जाओ और उसको हमेशा याद करो विद अ स्माइल, रादर देन उसको दोबारा से बुला के देन यू बीट द डेड हॉर्स आउट ऑफ इट्स विट्स। मैन, मत करो मत करो, नए लोग लेकर आओ, है ना, ताकि हम बुराइयां कर सकें अच्छे से। गुड इवनिंग एवरीवन। गाना नंबर 12,
2: ट्रेंडिंग सॉन्ग नंबर 12।

0: आई नेवर अंडरस्टैंड दिस राणा जी, मुझे माफ करना, गलती मारे से हो गई, मेरे को नहीं समझ आता। आज सुबह दूसरा भी गाना मैं तेरी मांग चांद सितारों से भर दूं, मतलब व्हाई वुड यू डू थिंग्स लाइक दैट, राइट? समथिंग व्हिच इज नॉट इवन पॉसिबल, व्हाई वुड यू इवन राइट दोज इन द लिरिक्स? इवेंचुअली तुमने सिंदूर से ही भरनी है, फिर व्हाट इज दिस चांद सितारों से भर दूं? एनीवे ऑन रेडियो मस्ती 24/7 आई मस्ट साउंड रियली रियली वन ऑफ दोज पीपल जो हर चीज में गलतियां निकाल रहे हैं, बट यू नो व्हाट, इट्स सो मच फन। तो भाई रेडियो मस्ती 24/7 पर अगली खबर कुछ ऐसी दे रही हूँ मैं आपको कि डायरेक्टर राजकुमार संतोषी जी, उन्होंने हाल ही में बताया कि बंटवारा 1947 का कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट जो है उससे इन्वेस्टर्स काफी परेशान हो गए, और फिर आमिर खान ने किस तरह से आके सपोर्ट किया। आप जानते हैं कि ये वाली फिल्म, ऑल्दो इसके पॉजिटिव रिव्यूज है, परफॉर्मेंस अमेजिंग है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन इसी के बीच में बात चल रही है कि इस फिल्म ने क्या क्या परेशानियों के बीच में आकर बनी है ये फिल्म। सो राजकुमार संतोष, उन्होंने रिवील किया दैट इन्वेस्टर्स ने कहा भाई बड़ा ही रिस्की और बड़े ही मतलब मुस्लिम कैरेक्टर बन रहे हैं हमारे सनी पाजी, तो फिर ये तो सही बात नहीं है यार, उनको तो हमने सिर्फ भारत के लिए लड़ते हुए देखा है, 2.5 किलो हाथ मार के इधर हाथ मार के उधर टाइप्स, राइट? सो फिर राजकुमार संतोषी ने यह बोला कि भाई बड़ी मुश्किल हुई फाइनेंसिंग के लिए, सम इन्वेस्टर्स जो सारे मुंबई वाले लोग हैं उन्होंने ये कहा भाई सनी देओल कर रहा है फिल्म, अच्छी रेगुलर फिल्म है, सब कुछ है, लेकिन मुस्लिम कैरेक्टर क्यों बन रहा है, मतलब पाकिस्तान क्यों जा रहा है, इसको भारत में रहने दो यार, लोग इतने इमोशनल क्यों जाते हैं, फिल्म में ही तो जा रहा है ना बंदा, एक ही चीज अब कितनी बार हैंडपंप उखाड़ेगा यार, एट सम पॉइंट ही विल आल्सो मूव ऑन ना। हैंडपंप भी आजकल खैर कम ही हो गया, नलके नुलके लग गए, सब कुछ हो गया, घरों में पानी आने लगे हैं, तो हैंडपंप मिल भी तो नहीं रहा है ना, लेकिन ऑन रेडियो मस्ती कोई समझता ही नहीं है एक्चुअली रियल प्रॉब्लम्स। एनीवे उसके बाद जो आमिर खान है उन्होंने आके सपोर्ट किया एंड मेंशनड कि भाई वो प्रोड्यूस करेंगे अगर और कोई नहीं करेगा। वैसे भी आमिर खान के सारे डिसीजन आजकल गड्ढे में ही जा रहे हैं, तो ये वाली फिल्म ने भी खैर प्रॉफिट तो नहीं कमाया फिलहाल, लेकिन रिव्यू बहुत बढ़िया आ रहे हैं, और रिव्यू बढ़िया आ रहा है हमारा अगले गाने का भी, विच इज एक्चुअली गान नंबर 10। ओ माय गॉड, कैसे लोग गालियां दे देते हैं ना, मतलब सोचो, कर दे मुश्किल जीना इश्क, बीप बीप, यही कहते कहते आगे बढ़ेंगे। दिस इज बेबी डू डाइट डू एंड आई वांट टू वॉच दिस फिल्म। अब इतना ओटीटी पे भी नहीं आ रही है, सिंगापुर में भी नहीं आ रही, कैसे देखेगा कोई इंसान। बट ऑन रेडियो मसी गाइस एक बार और आपको याद दिलाएंगे कि बिल्कुल राखी का पावन त्योहार आ रहा है, मेरा भाई तो है नहीं लेकिन आप लोगों के भाई हैं, आप लोग राखी बांधते हो, तो फिर माल इकट्ठे करने का टाइम आ चुका है, राखी टाइम से खरीद लो।
1: श्रेया जरा उठ के रेडियो मस्ती स्पीकर पे लगा देना।
2: भाई की डन है मामा।
3: ड्यूटी
4: लास्ट टाइम मैं उठा था ना,
5: तेरी मेरी बनती नहीं पर तेरे बिना मेरी चलती भी नहीं। इस रक्षाबंधन, इस नोक झोक से बंधे रिश्ते को और भी मजबूत करे ज्योति स्टोर्स एंड फ्लावर शॉप के साथ, वन कैंपल लेन, राखी लुम्बा और पूजा के सभी सामान के लिए आपका वन स्टॉप शॉप, अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल एट jyoti.com.sg।
6: ट्रेंडिंग सॉन्ग नंबर 10।
7: कत्ल करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो। हमने समझा था इश्क की मोहब्बत को ही ख्याले दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हम शक्ल ना हो।

0: भाई साहब, मैं कुछ भी कर लूं, लेकिन एक चीज पक्की होती है कि जब भी ललिता आती है मेरे शो पर, वो ना तो मेरे पर्सनल नंबर पर लिखेगी, ना हमारे हॉटलाइन पर लिखेगी, ना वो हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम पर लिखेगी, वो लिखेगी मेरे पर्सनल फेसबुक पर, मैसेंजर पर, और बोलेगी क्या हाल है, ये माल शाल की क्या बातें हो रही है। और वो टाइम ऐसा होगा कि मैंने देखा ही नहीं होगा बहुत देर तक कि ये वहां पर है, और उसके बाद मेरे को डांट पड़ेगी इससे कि मैं आई थी, तुमने जवाब नहीं दिया। अरे भैया, ये क्या खेल क्या रहे हो तुम मेरे साथ, ये छुपन छुपाई टाइप की गेम कि कहीं भी आगे पकड़ लो। अरे मतलब मैं पकड़ना चाहती हूँ तुमको, टाइम से पकड़ना चाहती हूँ, लेकिन तुम छुपे भी तो ऐसी ऐसी जगह पे हो। अब कितनी आंखें हैं मेरे पास यार, आंखें तो दो ही हैं, हाथ भी दो ही हैं। मतलब याद है वो फिल्म दो आंखें बारह हाथ, ऐसा लग रहा है एक रेडियो जॉकी की किस्मत पे ही लिखा होगा, पक्की बात है। दो आंखें लेकिन भात जो है ना हमारे, वो बारह हाथों की तरह चलते हैं। सीरियसली, कंसोल पे एक होता है, कंप्यूटर पे होता है, माइक पे होता है, कीबोर्ड पे होता है, फोन पे होता है, लैपटॉप के तीन चार विंडोज खुले होते हैं वहां पर होता है, पूछो मत आप। बट ऑन रेडियो मस्ती, और साथ में मुंह चल रहा होता है ऐसे पट पट पट, कभी कभी लगता है यार मैंने बोला क्या था अभी। But on Radio Masti 24/7, guys, the next gana which will come up is obviously going to be gana number 9. अभी तक आपने 10 गाना अभी आपने सुना था, तो 11 गाने हो चुके हैं, 9 गाने रहते हैं। अब मैं पूछना शुरू करूंगी वो वाला सवाल कि भाई कौन सा गाना होने वाला है आज के दिन में नंबर 1 पर, बता पाएगा कोई या नहीं बता पाएगा, बताओ। लेकिन फिलहाल के लिए एक गाना चलाने वाली हूँ कुनाल गांजावाली की आवाज में, सोनू निगम, सुनिधि एंड ऋचा शर्मा। लेट्स सी इफ यू कैन गेस व्हिच गाना दिस इज। कमिंग अप नेक्स्ट एज अ फ्लैशबैक गाना ऑफ द आवर,
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। चेक इट आउट। Bollywood flashback.
2: अरे अरे अब बस 10 से दिल कहाँ भरेगा।
3: मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है,
4: टाइम टू रेज द बार।
5: मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक, फुल ऑन रेणुका स्टाइल।
3: Now, pumping up your Thursday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rockstar Renuka with the week's top chart busters.

0: आरजे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर
3: चेक इट आउट.

क्या गाना है यार, सिल्क राउट का ये वाला गाना। आप जानते हो कि केके की आवाज और केके का तरीका, उसका अंदाज वो सो अमेजिंग। लेकिन हमेशा की तरह हम लोग उस इंसान को तभी याद करते हैं जब वो इंसान हमारे बीच नहीं होता। जब वो होता है ना, तब उसकी वैल्यू किसी को समझ में नहीं आती। अभी मैं हूँ, मेरी वैल्यू है आप लोगों को नहीं है ना। दे आर फ्रेश, दे आर हॉट, दे आर स्पाइसी एंड दे आर हैपनिंग। जॉइन अस ऑन मस्ती टॉप 20। जी मस्ती टॉप 20 पर इस समय रेणुका आपके साथ में और चल रहा है यहाँ पर हमारा 6:45 और 56 सेकंड पर गाना नंबर 9 का इंतजार। राइट, तो अब देखने की बात यह है कि भाई आगे क्या करना है। राजपाल यादव जी ने बता दिया है कि उनको 250 करोड़, जी हाँ 250 करोड़ का नुकसान हुआ है इन द लास्ट 13 ईयर्स। कर क्या रहा था भाई ये? He said that he had been embroiled in a check bounce case since 2013 और उसके बाद जेल टर्म ये वो मल्टीपल ओकेजन्स पर। नाउ वंस अगेन ही डिनाइड द एलिगेशंस मेड अगेंस्ट हिम इन द चेक बाउंस केस और कहा है कि मुझे कोई खरीद नहीं सकता। भाई तेरे 250 करोड़ के लॉस के साथ तो वाकई कोई नहीं खरीद सकता। 2013 से 2026 उसने बोला कि मैं पर्सनल लॉस 200 से 250 करोड़ है मेरा। पता कैसे हो गया, मेरा तो नंबर पढ़ के मेरा दिमाग खराब हो रहा है सीरियसली राइट नाउ। ही सेड आई एम सेइंग दिस फ्रॉम माय हार्ट, आई मिस्ड एट लीस्ट 50 ऑफ माय टूर्स अब्रॉड एंड व्हाटएवर फीस आई शुड हैव बीन गेटिंग वाज रिड्यूस्ड। और इसकी वजह से जैसे कि अगर मुझे 100 रुपए मिलने थे तो मुझे 10 मिले। अब मैं क्या ही बताऊं, मैं तो स्टूडेंट ऑफ आर्ट्स हूं, मैं तो परफेक्शन इन माय आर्ट ढूंढता हूं, फीस तो मेरे पीछे अपने आप खुद चली आएगी। मैं यही सोच रहा था भाई, फीस के पैर नहीं होते और अगर होते भी हैं तो वन वे होते हैं बाय गॉड की कसम। वो एक ही तरफ जाती है, वो भी दूर पास नहीं आती। कभी देखा है पैसे को मतलब पैर लगा के तुम्हारे पीछे दौड़ते हुए और तुम आगे भाग रहे हो? ऐसा कभी होता ही नहीं है। गहरा हुआ, लेकिन अब मैं सिर्फ यही कहूंगी कि जिन लोगों को इस गाने से नफरत है वो प्लीज 6:02 के लिए बंद कर दे रेडियो, क्योंकि ये तो चलेगा ही चलेगा, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। गाना नंबर 9 कमिंग अप राइट नाउ फॉलोड बाय ब्यूटीफुल रेट्रो। दोनों ही सुनना और जल्दी मिलना जल्दी। ट्रेंडिंग सॉन्ग नंबर 9।

0: राज भी बहुत ही गहरा हुआ कि आप लोग इस टाइम पर धीरे धीरे आके मुझे इतना मतलब परेशान क्यों करते हैं, शुरू से क्यों नहीं आते हो यार, अभी सडनली आके रेणुका ये बीच में जो गाने चल रहे हैं उसमें हमारी पसंद का चल सकता है? नहीं चल सकता, नहीं चल सकता। आप मेरी कितनी सुनते हो जो मैं आपकी सुनूं? रेडियो मस्ती 24/7 पर चल सकता है डार्लिंग्स। आप ही के लिए तो बैठी हूँ यहाँ पर, कोई और काम तो था नहीं, जन्म मैंने आप ही के लिए लिया है ना। Is it still sounding sarcastic? Well, I tried my best not to, but all right. So that was gana number 9, Gehra Hua. Ji haan, yaad hai, it ruled the airwaves for at least I would say 15 hafte, if not more than that, you know. Gehra Hua was always number one. Lekin filhal ke liye aa raha hai gana number 8, and of course hum ye saath saath sunenge aur fir uske baad main aapko main milungi agle ghante mein, theek hai? कहीं गए ना तो मैंने पीछे आ जाना है।
1: ट्रेंडिंग सॉन्ग नंबर 8।
0: एंड ऑफ कोर्स मेरे प्यारे KNK जो मुझे भोपाल से धमकियां दे रहे हो ना, इतना बता दूं मैं, अभी ना इत्तू से हो तुम, इत्तू से मतलब अभी ना तुम जमीन से पूरे निकले भी नहीं हो और मतलब उछलने की कोशिश हो रही है। टू क्यूट गाइज, आई लव यू। रक्षाबंधन आ रहा है, दोनों मुझे फोटो भेज देना, समझ में आई है आपस में लड़ते हुए।

0: आप यहाँ के शो ही कर लो ना, मुझे बोल रहे हो अच्छा ये गाने के बीच में अब बात करना, अब ये वाला गाना चल रहे तो ये वाला हमें बहुत पसंद है, इसके बीच में मत करना। आप लोग एक काम करो, अब इतनी ट्रेनिंग तो हो गई आपकी फ्री में आरजे एकेडमी की, है ना, अब यहाँ पर आके शोज भी होस्ट करने शुरू कर दो, जान छूटेगी मेरी, सिर्फ आप लोगों को डांटने का फुल मेरे को मौका मिल जाएगा। रेडियो मस्ती 24/7 पर वेलकम टू द जंगल का ये वाला गाना हैज बीन ऑन नंबर 8। कमिंग अप एक रोमांटिक सा गाना हो जाए क्या?
1: Bollywood flashback.
0: आइए आरटी आ जाओ, गुड इवनिंग, 7 बजने वाले, बिल्कुल सही टाइम पे आई और आते ही पूछ रही है कौन तंग कर रहा है। अरे यार, दो छोटे छोटे बच्चे तंग कर रहे हैं यार मेरे को, बताओ, मेरा ये हाल हो गया आजकल।

0: They are fresh. They are hot. They are happening. From rocking the charts to ruling the countdown. Yes, Musti Top 20. Now, pumping up your Thursday evenings, 5 p.m. onwards. The latest and the brightest. The week's top chart busters.
1: भाई एक बात तो है, मुझे एक काम करना है सबसे पहले, और ये तालियां जा रही हैं स्पेशली की आशा हसवानी के लिए। ये लड़ाकी औरत। अरे मैं कहती हूँ कमाल किया लड़की ने यार, ये 2016 की पैदा हुई है, अभी 10 साल की, मतलब अभी 10 साल की भी नहीं हुई है, अभी तो मतलब रहते हैं थोड़े दिन 10 साल के होने में। एंड शी इज एक्चुअली, उसको क्या सॉलिड जीती है यार ये लड़की इन दिस कुराश चैंपियनशिप। आप जानते हो कि कुराश जो चैंपियनशिप होती है, आपको पता है कुराश क्या होता है? एक्चुअली उज्बेकिस्तान का ये खेल है जिसमें कि वो धोबी पटका कहते हैं ना, धोबी पटका वो होता है इसके अंदर। बेसिकली एक उठाता है, पकड़ता है, उसको पीठ पे उड़ाता है, उधर फेंकता है, फिर दूसरा उठाता है, मतलब इस तरह से लड़ाकी टाइप की ये जो गेम है, इसमें ये लड़की क्या सॉलिड जीत के आई है यार, मतलब सेकेंड पोजिशन पे आई है और कमाल है। मेरे को सर्टिफिकेट मिला है तो इसीलिए बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरे को कि भाई ये लड़की सच्ची में ऑथेंटिक है। सर्टिफिकेट मिला है मतलब सच में होकर आया। सो कंग्रेचुलेशंस माय डार्लिंग, ऐसे ही लड़ती रहो, क्योंकि लड़ाकी तो तुम हो ही, लेकिन कियान को मत मारना यार, उसको मत मारना, बिकॉज बेचारा बच्चा यार डर गया होगा, अब तो तुम्हें सर्टिफिकेट वगैरह भी मिल गया। बट कियान तुम क्यों नहीं हो इस गेम में यार, मुझे भी बताना। रेडियो मस्ती 24/7 पर, वेल वी ऑलवेज से As the children move ahead in life, हमें मतलब बड़ी खुशी मिलती है उनको देखते हुए कि वो अलग अलग एरियाज में कैसे कैसे चैंपियंस बनते चले जा रहे हैं। Awesome! But on radio, मस्ती guys, right now, कुछ कुछ हमारे लिसनर्स हैं जो एक ही टांग को बार बार तोड़वाते हैं। पता है ना क्यों टांगे टूटती हैं? क्योंकि जब तुम टांग अड़ाते हो तो फिर ऑब्वियस है कि उन पर कहीं ना कहीं जख्म आते हैं। टांग अड़ाना बंद करो ना दुनिया में, लोगों की जिंदगियों में। Get well soon, my dear. Trending song number 7.

0: शान, व्हाट एन अमेजिंग गाना, राइट? रेडियो मस्ती 24/7 पर चल रहा है मस्ती टॉप चार्ट्स, और मस्ती टॉप चार्ट्स पर अब रह गए हैं सिर्फ और सिर्फ 6 गाने. दे आर फ्रेश, दे आर हॉट, दे आर स्पाइसी एंड दे आर हैपनिंग. जॉइन अस ऑन मस्ती टॉप 20. यार ऑनेस्टली, ये जो ड्रामा चल रहा है बिटवीन गोविंदा एंड सुनीता आहूजा, यू रियली बिलीव ये सब सच में हो रहा है? मुझे लग रहा है कि ये सब सोशल मीडिया का ड्रामा है, बिकॉज दे जस्ट फील, ना वो होता है ना कई बार यार, यू जस्ट हैव दिस फोमो, यू हैव दिस फीलिंग कि यार तुम्हारे बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है यार, कोई मतलब कोई कंट्रोवर्सी नहीं हो रही, तुम्हारी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, यू जस्ट एग्जिस्टिंग इन लाइफ विदाउट एनी, यू नो, any reason to be spoken about. So then you create this कहानी. ये पति पत्नी जो है ना, दोनों ही मतलब अब ये नए ड्रामा लग रहा है, मुझे लग रहा है 43 years हो चुके हैं दोनों को शादी में. 43 years के बाद बंदा lazy हो जाता है यार, कि चल अब जो चल रही है चलने दे यार, मतलब seriously इसमें भी lazy हो जाता है इंसान की. अब इसने किसी और के साथ भी बाहर करना है तो कर ले, अव्वल तो कुछ होगा नहीं ऐसा, ठीक है. 43 ईयर्स साथ में, मतलब यू कैलकुलेट बैकवर्ड्स अराउंड 60 प्लस वट एवर, राइट? तो तब तक बंदा डोमेस्टिकेट हो चुका होता है, कहता है छोड़ यार, अब कौन जाएगा किसी और के पास, टू लेजी टू रियली इवन गो एंड मेक आउट, राइट? सो एक्टर गोविंदा का जो मैनेजर है शशि सिन्हा, हाल ही में बड़ा डिसअपॉइंटेड कि सुनीता आहूजा ने डिवोर्स कर दिया पहले तो, उसके बाद फिर विड्रॉ कर लिया. ही सेड मीडिया अटेंशन इतनी हो गई, कपल की मैरिटल इश्यूज के बारे में बड़ा ही बुरा हुआ जी, बड़ा ही बुरा हुआ. फिर साथ ही में ही ऑल्सो सेड कि अगर कुछ होने ही वाला था तो फिर पहले, मतलब अगर विड्रॉ ही करना था तो पहले इतना सारा ड्रामा क्यों किया? भाई तू भी तो जाके डिस्कशन कर रहा है, वो जो भी कर रहे हैं, यू आर एक्चुअली गिविंग योर इंटरव्यूज इन द मीडिया, सो यू आर ऑल्सो एडिंग फ्यूअल टू द फायर, राइट? हम सब समझते हैं, हम इतने बुद्धू भी नहीं है. आज के जमाने में कहते हैं ना, एनी पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी, सो बस करो, बैड है तो भी गुड है, पॉपुलैरिटी तो मिलेगी. रेडियो मसी 24/7 पर आपको पॉपुलैरिटी के बारे में अगर बताएं तो यू कुड बी चोजन टू बी ऑन स्टेज विद सुहानी शाह. आप सोचो, सुहानी शाह जब वो आकर मेंटलिस्ट 20 सितंबर को अपना शो करेगी तो आपके दिमाग में क्या चल रहा है सब पता लगा लेगी. जी हाँ, तो अगर आपको कोई दुश्मन है ना, है जिसके बारे में आपको निकालना है कि भाई उसके दिमाग में क्या चल रहा है, तो आप उसको लेके जाओ इस शो पे, और फिर उसके बाद सुहानी को बोलो इसके दिमाग से निकाल के बताइए मेरे बारे में क्या सोचती, और फिर पता लग जाएगा, फिर ना आप लोगों के बीच में लड़ाई हो जाएगी, बहुत कुछ हो जाएगा, ठीक है, बहुत एक्साइटमेंट हो जाएगी. तो जाओ और sistic.com.sg पर सुहानी शाह स्पेल बाउंड की टिकट्स ले लो, इट्स ओनली $69 ऑनवर्ड्स. गुड इवनिंग एवरीवन, रेडियो मस्ती 24/7 पर अगला गाना इस मस्ती सॉन्ग ऑफ द आवर. भागना नहीं है, सिर्फ सुनिधि को भागने का मन कर रहा है अपने मन के साथ.
1: Aamir Khan wondered.
2: Wow. Look, I could have thought of anything. That's amazing. Yeah.
1: Salman Khan wanted answers.
3: Kaise kiya ye?
1: R. Madhavan said.
4: Awesome. You're very good, yeah. Very well done.
1: And Boman Irani?
5: I say this with great respect. This is actually, it's blown my mind.
1: Sabhi ka ek hi sawal. Kaise kar leti hai Suhani Shah ye kamaal?
6: Anybody talks about magic in the country, I want them magic Suhani.
1: Singapore, get ready to be spellbound with Suhani Shah, the first Indian to win at what's known as the Oscars of Magic. Wow! Wonderful escapades and epic encounters present Spellbound with Suhani Shah, an incredible evening of mind reading, mentalism and impossible experiences. 20th September, 6 p.m. Quetta Ayer, People's Theatre, hosted in English. Tickets at Sistic. Come curious, leave spellbound with Suhani Shah.
7: How do you know these things? Stop reading my mind.
8: Time for Masti Song of the Hour. Song of the Hour.

0: What a beautiful gana that is. Bhage Re Man, Chameli ke soundtrack se sun rahe hum Sunidhi Chauhan ki awaaz. It's about 7:15 by the studio clock. Aur yahan par Radio Masti 24/7 par chal raha hai. Ye show jiska naam hai Masti Top Charts. Masti Top Charts mein usually hamesha obviously hum chahenge ki top 20 गाने ही आपको सुनाएं, लेकिन बीच बीच में अरे यार बाकी जो अपने हिट्स हिट्स वाले गाने होते हैं उनका टेस्ट भी कुछ अलग ही होता है ना बेटा.
1: मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल.
0: My darlings, I want to give you the next khabar. Manoj Bajpayee as a Mahatma Gandhi. Can you believe it? Or can you believe it? क्या ये जो फिल्म मेकर है ना सुधीर मिश्रा, वो जो मतलब एक फिल्म बना रहे हैं, अभी नाम नहीं है उस फिल्म का सो मैं भी बता नहीं सकती हूँ, लेकिन मनोज बाजपेयी उसमें, जी हाँ, 21 दिन ऑफ इन द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, दैट्स व्हाट द फिल्म इज अबाउट ड्यूरिंग इंडियाज इंडिपेंडेंस. वेल इट ऑल्सो मार्क्स सुधीर मिश्रा का रिटर्न टू द बिग स्क्रीन एंड पर्सनल ह्यूमन स्टोरी विद द स्केल ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस. इन दोनों को साथ साथ में मिलाते हुए काफी इंटीमेट मूविंग पर्सपेक्टिव ऑन द चैप्टर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस जर्नी ये बना रहे हैं सुधीर मिश्रा. इनफैक्ट एक फोटोग्राफ थी इस पूरी की पूरी न्यूज़ के साथ में और मैं ना उसको देखने लगी कि ये ऐसे दिखेंगे मनोज बाजपेयी, लेकिन काफ़ी लंबे सफ़ेद बाल थे तो मैंने कहा पर मनोज बाजपेयी तो महात्मा गांधी बन रहे हैं, महात्मा गांधी जी के मैंने कभी बाल मतलब ऐसे नहीं हो सकता है, वाइट तो बिल्कुल नहीं हो सकते. जब वो साउथ अफ्रीका में थे तब उनके काले बाल ज़रूर थे, राइट? देन आई रियलाइज ये तो सुधीर मिश्रा की फोटो है. बट आई यू नो sometimes you just so overwhelmed by the headline of that news that you start imagining nahi nahi ye to manoj bajpayee hoga. But yeah, obviously he is sudhir mishra and this is ye jo 21 din hai na mahatma gandhi ji ki zindagi ke, ye bade hi intense wale din the jahan par matlab nuances nikal ke aayenge of the deeply human depiction of mahatma gandhi. isme saurabh shukla bhi dikhenge, lekin aap jante hain jab main mili thi manoj bajpayee se to maine unko ek hi baat kahi thi ki bhai aap aasan picture nahi bana sakte, aapki movies देखते टाइम क्या जरूरी है कि हम कुर्सी के कोने में बैठे और अपने नाखून खा जाएं, जरूरी है क्या? तो वो हंसने लगे. अब बात ये है कि उन्होंने क्या जवाब दिया था ये आप जाके उनके इंटरव्यू में देखो ना, वो मेरे इंस्टाग्राम पर मिल जाएगा आपको या मस्ती एवीआई पर मिल जाएगा. जी हाँ, जाके देखो मजा आएगा. फॉर नाउ द नेक्स्ट गाना दैट आई एम प्लेइंग राइट नाउ इज गाना नंबर 6. कौन सा है? लेट्स फिगर दैट आउट गाइस. गुड इवनिंग.
2: Trending song number 6.

0: हेलो, गुलाबी साड़ी किस किस के पास है? फोटो भेजो ना यार, कितनी सेक्सी लगती है गुलाबी साड़ी, है ना गुलाबो। रेडियो मस्ती 24/7, इट्स अबाउट 7:21 बाय द स्टूडियो क्लॉक। और इसके बाद एक कमाल का गाना, अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज, ऑब्वियसली शाहरुख खान पर बना हुआ ये यस बॉस का गाना, बहुत ही मजा आएगा। एंड देन वील टॉक द टॉप 5 सॉन्ग्स ऑफ द इवनिंग, स्टे ट्यून्ड।
1: Bollywood Flashback, a

0: One of the most celebrated romantic tracks, Shah Rukh Khan and Juhi Chawla. Jee haan, what an amazing, amazing space this song holds in Hindi cinema history. Aap sun rahe hain Masti Top Charts with Renuka, and of course with all these fillers that keep coming every now and then. We are living in the past and the present at the same time. Film Fair mein, of course, Abhijit Bhattacharya ne jeeta his first and only Film Fair Award for Best Male Playback Singer, specifically for this सॉन्ग. और इस समय आप भी जीत रहे हैं हमारे से ये स्पेशल मतलब बहुत सारा प्यार, बिकॉज यू आर हमिंग अराउंड लॉन्ग विद मी ऑन दिस गाना. आंट यू गाइस, दिस इज रेडियो मस्ती 24/7, एंड ऑफ कोर्स दिस इज योर गर्ल रेणुका. राइट अप टू 8 PM गोना स्टिक अराउंड विद यू. मुझे छोड़ के गए ना तो बहुत पीटूंगी.
1: ट्रेंडिंग सॉन्ग नंबर 5.

0: Wow, that was absolutely noisy, but definitely bada hi amazing sa gana. Good evening everyone, this is Renuka with you. Radio Masti 24/7 par chal raha hai Masti Top Charts. Jaise ki aap jante hain, Golmaal 5, it is almost ready. Can you believe that? जी बिल्कुल, मतलब सोचिए कि डायलॉग का शूट खत्म भी हो चुका है. दिस ऑब्वियसली हैज अजय देवगन, अक्षय कुमार, अर्शद वारसी, कुणाल खेमू, साथ में तुषार कपूर एंड शर्मन जोशी. अब तुषार कपूर के डायलॉग्स तो रिकॉर्ड हो ही गए होंगे ना, आ आ ई ई ऊ, दैट इज ऑल दैट ही हैज टू डू, सो दैट मस्ट बी वेरी क्विक. बट शर्मन जोशी एंड ऑल ऑफ कोर्स दे आर ऑल वेरी इंप्रेस्ड हाउ एफिशिएंटली रोहित शेट्टी इज यंग असिस्टेंट टीम मैनेजर्स द सेट्स. मतलब सोचिए कि डायलॉग पोर्शन पूरे पूरे खत्म एंड What remains is the shooting of two songs. The title track, दोनों ही जिसमें हैं स्टार कास्ट, expected to be filmed आने वाले महीने में. And Sharman Joshi, he was largely part of the recently wrapped Ooty schedule. So बस देखने की बात ये है कि अब release कब होगा, कब होगी release. तो फिर it's already talking, circulating on social media और लग रहा है कि भाई किसी भी time पर announcement हो जाएगी कि कब release होने वाली है ये film. भाई अभी फिलहाल के लिए रिपोर्ट्स आ रही हैं इधर उधर की कि आज हो रही है, अगले हफ्ते हो रही है. तो बोला नहीं नहीं, अभी हमने कुछ अनाउंस नहीं किया, दिस इज ऑल रूमर्स, ऑलराइट, बिकॉज पीपल लव टू डू दैट. एंड हम चाहेंगे कि कोई भी अनवेरिफाइड क्लेम जो भी सोशल मीडिया पर हो उसको आप टोटली इग्नोर करें और रिपोर्ट करें. हाँ भाई, हमें तो और कोई काम ही नहीं है कि आप लोगों की प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करें. बट ऑन रेडियो मस्ती गाइस, द नेक्स्ट ट्रैक आई एम गोना प्ले इज गाना नंबर 4. एंड गाना नंबर 4 आपने शायद पहले कभी नहीं सुना होगा या शायद एक ही बार सुना होगा हमारे स्टेशन पर. वो अभी आने वाला है, फॉलोड बाय ब्यूटिफुल रेट्रो फ्रॉम द 90s. येट अगेन 90s के गाने चला दो तो सबके कान हो जाते हैं खड़े. मुझे पता है मैसेजेस आने लग जाते हैं बहुत सारे.
1: ट्रेंडिंग सॉन्ग नंबर 4.

0: माय गॉड, द मेमोरीज विद द सॉन्ग जस्ट अमेजिंग. ये तो मूवी वाज अनदर लेवल रियली. आई थिंक ईच वन ऑफ अस हैड आवर शेयर ऑफ रोमांस जस्ट लिसनिंग टू द साउंड ट्रैक ओवर एंड ओवर अगेन. है ना.
1: You're tuned into Radio Masti 24/7 live, keeping you connected anywhere, anytime, the desi way.
0: भाई देसी है, पर देसी है जो भी है आप ही का है. And please do note that our app name is now Masti Media 24/7. Radio Masti 24/7 definitely यहाँ पर है और साथ ही में है Masti AVI और भी बहुत कुछ है. और आने वाले दिनों में आप देखेंगे नए नए फीचर्स हमारे इस ऐप में. So get ready guys, get geared up and I promise you, you will not regret being a part of the Masti family. अच्छा, इसके आगे मैं ये बताना चाहती हूँ that this Sunday is really important because गुरुद्वारा जो है कतोंग में 17 Wilkinson Road, वहाँ सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक यू गोना बी हैविंग नाम रस फन फेयर. यू वोंट बिलीव इट. इट्स एक्चुअली मतलब वहां का, पहली बात तो मैंने ना वेजिटेरियन, सिंगापुर की लार्जेस्ट वेजिटेरियन वैरायटी अगर आपको खानी है ना तो आप पहुंच जाना सुबह 10 से लेकर शाम 4 बजे तक गुरुद्वारा कतोंग 23 अगस्त को. और वहां पर इट्स नाम रस फन फेयर, मतलब गेम्स हैं, लकी ड्रॉ है और खाना जैसे कि मैंने कहा यू हैव नॉट सीन एनी better variety anywhere. I promise you that. All right, on Radio Masti 24/7 guys, the next thing is kyunki ab reh gaye hain hamare show ke 20 minute and it's important for me to tell you kaun se hain 3 gaane.
2: Din chale tum hi, din dhale tum hi ho bandhu sakha tum hi.
0: Yes, bandhu cocktail 2 ke soundtrack se you'll be listening to this gana.
2: Bandhu sakha tum hi.
0: And this one. मैं वापस आऊंगा के साउंडट्रैक से राइट नाउ. ये वाला गाना भी, अब तीनों में से कौन सा नंबर पे है ये आप बताएंगे. Cocktail 2 yet again. So ये 3 गाने, तीनों में से आपको ये बताना है कि कौन सा होने वाला है नंबर 1. Now guys, come on, I've given you enough hint. I'm waiting for your messages. Radio Masti 24/7. जी हाँ, 9151896 3. Right now, right here, send me a text and yes, I will read it out to show you कि मैं सारे messages पढ़ रही हूँ.
3: Trending song number 3.

0: रेडियो मस्ती 24/7। आप भी सोच रहे होंगे रेणुका यहाँ से भाग गई, क्योंकि मुझे धमकियां तो मिलनी शुरू हो गई ना कि 7:45 पे अगर तुम निकली 7:45 पे तो हम भी पीटेंगे। यार राइट, जस्ट बिकॉज आई सेड मुझे छोड़ के गए तो मैं पीटूंगी, राइट राइट और राइट।
1: मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल।
0: Yes, your darling's right here, but right now your darling saying, अब मुझे जाने दो, जाने दो ना, पास आओ ना मत कहना, please, किसके पास आऊंगी मैं, but it's time for me to take your leave, guys, but I had an awesome time presenting this show to you. पता है क्यों? Because top charts में ना मस्तियां बहुत होती है, कुछ भी कर सकते हो, कोई भी गाने ऊपर नीचे कर सकते हो, और सबसे बड़ी बात है कि आपकी पसंद के गाने नहीं चलते, गंदे गंदे वाले रिक्वेस्ट जब आते हैं ना मंडेज को, so I just don't know what to do. But today, yes, I'm leaving you with two tracks right now. आप में से कुछ लोगों ने बोला है कि माशूका नंबर वन होगा, कुछ लोगों ने बोला है कि बंधु नंबर वन होगा, so we're going to figure that out in just a little bit. लेकिन पहले, कैसी पहेली है जिंदगी कि कभी भी कुछ भी करती है, कोई भी गाना ऊपर ले जाती है, कोई भी नीचे ले जाती है, क्या क्या दिन दिखाती है. ओ हो हो, ऑन दैट फिलोसॉफिकल नोट आई एम गोइंग टू एंड द शो एंड आई एम गोइंग टू से बाय. यू गाइस हैव अ फैंटास्टिक इवनिंग. आई विल सी यू इन व्हाट 11 hours from now. और यहाँ पर आकर फिर हम मस्ती मैडनेस में बात करेंगे. Alright, so keep smiling guys and remember, smile is the second best thing you can do with your lips. Love you all. Take care. Bye.
2: Bollywood Flashback.

Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियाँ दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। On Masti Media Network, we're opening a safe space. Dear Masti, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल

0: डियर मस्ती, दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है।
1: वेलकम टू डियर मस्ती दिल से, आप सभी का यहाँ पे इस शो के एक ब्रांड न्यू एपिसोड में स्वागत करते हैं हम। दैट्स राइट, रेडियो मस्ती 24/7 की वो सेफ जगह, वो सेफ स्पेस जो हमने आपके लिए, जी हाँ सिर्फ आपके लिए बनाई हुई है, जहाँ पर हम रेडियो पे बैठे कुछ अनजान से बट आपके दोस्त। वी आर हियर ओनली एंड ओनली टू लिसन टू यू। पता है मुझे आजकल लगता है कि लाइफ की एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है, हम अक्सर क्लैरिटी का वेट करते हैं बिफोर टेकिंग द नेक्स्ट स्टेप, राइट? कि जब सब कुछ समझ में आ जाएगा तब डिसीजन लेंगे, जब डर खत्म हो जाएगा तब शुरू करेंगे, जब कॉन्फिडेंस आ जाएगा तब बोलेंगे, जब सिचुएशन परफेक्ट होगी तब कुछ बदलेंगे। बट लाइफ रियली वर्क्स लाइक दैट, है ना? कभी कभी पहला स्टेप लेना पड़ता है विदाउट नोइंग कि 10th स्टेप क्या होगा। पहली बार स्कूल गए थे तो पता नहीं था दोस्त कौन बनेगा, पहली जॉब ज्वाइन की थी तो पता नहीं था कि वो जर्नी कहाँ लेकर जाएगी, किसी से पहली बार मिले तो नहीं पता था कि वो एक दिन लाइफ का इंपॉर्टेंट हिस्सा बन जाएंगे। एंड दैट्स द थिंग, क्लैरिटी डजंट ऑलवेज कम बिफोर द जर्नी, समटाइम्स क्लैरिटी कम्स बिकॉज ऑफ द जर्नी। एंड इमोशंस के साथ भी कुछ ऐसा ही है, कभी हमें खुद ही नहीं पता होता कि हम एग्जैक्टली क्या फील कर रहे हैं, बस अंदर कुछ एक हैवी सा कुछ कहना है, कुछ समझना है, और फिर जब हम बात करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे वो उलझी हुई सी फीलिंग्स वर्ड्स में बदलने लगती है। एंड दैट इज एग्जैक्टली वॉट वी ट्राई टू डू ओवर हियर। Welcome everyone, dear Masti Dil Se on Radio Masti 24/7. हम सब यहाँ हैं और मैं यहाँ हूँ अंतरा, रेणुका यहाँ है, नूपुर यहाँ है, और साथ में ऑफ कोर्स श्रीधर भी हमारे साथ बिल्कुल इस जर्नी में हमारा संघर्ष साथी बनकर जुड़ चुके हैं। एंड रेडियो के उस तरफ आप हैं हमारे डियर लिसनर, यहाँ आपको अपनी कहानी परफेक्टली एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, जितना कहना है जैसा कहना है बस लिख दीजिए, हम सुनेंगे। नो नेम्स, नो जजमेंट। और वैसे हमारी जो ये डियर मस्ती की ये जो जर्नी है, एक और शाम है कुछ और लेटर्स के साथ, कुछ और पर्सपेक्टिव्स के साथ, एंड बहुत सारी दिल की बातों के साथ अब शुरू करते हैं। I'll be right back, till then stay tuned. ये है डियर मस्ती दिल से।

0: tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.
1: श्रेया जरा उठ के रेडियो मस्ती स्पीकर पे लगा देना।
2: बाइकी डन है मम्मा।
3: ड्यूटी
4: लास्ट टाइम मैं उठा था ना,
3: मैं उठता था।
1: तेरी मेरी बनती नहीं पर तेरे बिना मेरी चलती भी नहीं। इस रक्षाबंधन, इस नोक झोक से बंधे रिश्ते को और भी मजबूत करे ज्योति स्टोर्स एंड फ्लावर शॉप के साथ, वन कैंपल लेन। राखी, लुम्बा और पूजा के सभी सामान के लिए आपका वन स्टॉप शॉप, अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल एट ज्योति.com.sg।

0: डियर मस्ती दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है।
1: अच्छा, जब हम अपने लिए कोई अच्छा होटल सिलेक्ट करते हैं तो हमारे लिए क्या मैटर करता है? बालकनी का व्यू, विंडो का व्यू और भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना? पर हाँ, अगर आपको यही होटल का ऑसम वाला व्यू हर रोज मिले तो शायद आप बोर हो जाओगे। डियर मस्ती दिल से शो पर मैं आरजे नुपड़ाव के साथ, एंड द पॉइंट इज कि कोई भी काम हम बार बार करते हैं ना, वो चाहे पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, वो कोई हैबिट हो, हम उससे बोर होने लगते हैं, राइट? अभी मेरे हाथों में जो लेटर है, उन्होंने भी अपनी बोरियत का चिट्ठा मुझे लिखकर भेज दिया है। हाँ जी, शॉर्ट में बताऊंगी जिन्होंने मुझे लेटर भेजा है। उन्होंने लिखा है, डियर मस्ती, मेरे संग ऐसा है कि मैं चाहे ऑफिस की विंडो पे खड़ा हूँ या घर के बालकनी में खड़ा हूँ, बाहर से गुजरते हुए लोगों को जज करना मेरा काम हो चुका है। किसी की गाड़ी, किसी के कपड़े, किसी के साथ उसके चल रहे पेट्स या कोई किससे क्या बात कर रहा होगा, मैं एक ही जगह खड़े खड़े ना पॉइंट ऑफ व्यू बना देता हूँ और लोगों को जज कर लेता हूँ। और बाय द टाइम मुझे लग रहा है कि इस आदत से मुझे कोई फायदा भी नहीं मिल रहा है, तो व्हाट शुड आई डू? अरे यार, सबसे पहली बात, जिन्होंने मुझे ये लेटर भेजा है, इनका जो ऑब्जर्वेशन है कितना तगड़ा है। दूसरी चीजों को छोड़ के इन्होंने खुद की एक वियर्ड हैबिट को नोटिस किया है, राइट? अच्छा, मेरे मन में एक सवाल आया, दूसरों को जज करना या नहीं करना अपने आप में आज भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है क्या? ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और इन्होंने जो किया वो सही किया या नहीं किया, बात करेंगे जस्ट इन अ शॉर्ट वाइल।
0: हम

0: You're tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping the world Bollywood entertained anytime, anywhere.
1: जब राजस्थान की हवाएं सिंगापुर के शाही स्वाद में घुल जाए, जब लाल मांस, दाल बाटी चूरमा, केर सांगरी और मीठे मीठे घेवर की खुशबू दिल को छू जाए, जब शाही महारानी नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट लेकर आए द रॉयल फ्लेवर्स ऑफ राजस्थान का एक्सक्लूसिव 10 डे फेस्टिवल, तो बस बात शाही बन जाए। The Royal Flavors of Rajasthan by Shahi Maharani North Indian Restaurant, 14th to 23rd August. Reserve and prepay online to enjoy the early bird menu at just $78 plus per person. Exclusively for dinner. Book your royal experience today at www.shahimaharani.com.

0: डियर मस्ती दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है।
1: कई बार हमारे लिए जो चीजें नॉर्मल होती हैं, वो सामने वाले के लिए बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पेशल होती हैं, या फिर हमारे लिए जो नॉर्मल होती हैं, वो सामने वाले के लिए वियर्ड होती हैं। पॉइंट ऑफ व्यू मैटर तो करता है। डियर मस्ती दिल से शो पर मैं आरजे नुपुरा आपके साथ, और ब्रेक पर जाने से पहले मेरे हाथों में एक लेटर आया जिसमें किसी ने कन्फेस किया हुआ है कि हाय डियर मस्ती, मेरे को बहुत ही एक वियर्ड हैबिट है, एंड दैट इज जब मैं घर की बालकनी में खड़ा होता हूँ या ऑफिस की बालकनी में खड़ा होता हूँ, कहीं से भी कुछ भी बाहर इंसानों को जाते हुए देख रहा होता हूँ ना, तो मैं सबको जज करना शुरू कर देता हूँ। तो इस हैबिट के लिए क्या किया जाए? एनीवेज, जिन्होंने मुझे ये लेटर भेजा है, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या आप सच में उन्हें जज करते? जज इन द सेंस इनके बैंक अकाउंट में इतना इतना इतना अमाउंट होगा, ऐसा ऐसा होगा, इनके चेहरे के रिंकल्स देखकर लग रहा है कि अपनी लाइफ में ज्यादा हैप्पी नहीं है, समथिंग लाइक दैट। हाँ, तो प्लीज यार, इन चीजों को थोड़ा सा किनारे रख दो। क्यों? क्योंकि ये हैबिट जो है ना, ये बाय द टाइम आप ना अपने दोस्तों के बीच भी बोल बोल के क्रिएट कर दोगे। अगर मन में भी ऐसे थॉट्स आए ना, तो उन पर कंट्रोल करना कितना इम्पोर्टेंट होता है। पर हाँ, ऑन द सेकेंड थॉट, अगर आप लोगों को खड़े होते हुए ऐसे ऑब्जर्व कर रहे हो कि यार कितनी पोलाइटली अपने पेट के साथ टहलते हुए ये जा रहे हैं, कितनी साइलेंटली ये पार्क में बैठे हुए हैं, अच्छा उसका चेहरा स्माइल करते हुए कितना अच्छा लग रहा है, वाओ व्हाट अ डेडली कॉम्बिनेशन, ये ब्लैक ट्राउजर और व्हाइट स्नीकर्स शूज का, हाँ मतलब इस तरह से आप पॉजिटिव वे में अगर आप उन्हें जज कर रहे हैं ना, तो ये चलेगा, बट नेगेटिव वे में नहीं चलेगा। ये आपकी मेंटल हेल्थ को भी इफेक्ट कर सकता है बाय द टाइम, तो वैसी आदतों से थोड़ा सा दूर रहो।

आइए आइए, मुझे मिस नहीं किया अभी तक। सोच रहे होगे ना कब आएगी रेणुका, तो आ गई। गुड इवनिंग एंड वेलकम रेडियो मस्ती 24/7 पर, रेणुका आपके साथ में। और जी हाँ, बिल्कुल वही शो जहाँ पर रेडियो पर एक अनजाना इंसान क्या होता है। डियर मस्ती, दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। और जब वो अनजाना इंसान एक एंटरप्रेन्योर हो और उसको एक दूसरे एंटरप्रेन्योर से चिट्ठी आए ना, तो लगता है वाकई दिल का कनेक्ट हो रहा है, मैं भी शायद आपसे कुछ सीख लूंगी। Hi Renuka, I'm a business owner and there's someone I work with regularly who acts as the point of contact between my company and several clients. On paper, we should be a great team. If we work together honestly, हम दोनों के businesses को फायदा हो सकता है. But lately, मुझे ऐसा लगने लगा है that something is not right. Whenever a client wants to speak to me directly, she somehow discourages it. Meetings get postponed, messages don't get passed on. Sometimes I only find out about opportunities much later. मैंने सुना है कि वो बात मेरे बारे में और मेरे बिजनेस के बारे में बहुत पॉजिटिवली भी नहीं करती है। द मोर आई थिंक अबाउट इट, द मोर आई फील शी इज अफ्रेड दैट इफ क्लाइंट्स गेट टू नो अस डायरेक्टली, दे विल रियलाइज आवर कैपेबिलिटीज एंड स्टार्ट वर्किंग विद अस डायरेक्टली इंस्टेड। इट्स फ्रस्ट्रेटिंग बिकॉज आई एम लूजिंग बिजनेस एंड आई कांट प्रूव व्हाट्स हैपनिंग। शुड आई कन्फ्रंट हर, शुड आई वॉक अवे, और शुड आई जस्ट एक्सेप्ट दैट दिस इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस। आपने जो बात करी है ना, सीरियसली आई फेस इट ऑल्सो। तो नॉर्मली मैं कोशिश करती हूँ मैं ये बात ना बोलूँ कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है या होता है, लेकिन पता है कभी कभी क्या होता है कि फेस करता है इंसान और तब ऐसा लगता है कि यार वाकई ये प्रॉब्लम सिर्फ मेरी नहीं है। तो चलिए इसी आशा के साथ कि आप अकेले यहाँ नहीं हैं और मैं आपके साथ हूँ और भी बहुत से एंटरप्रेन्योर्स होंगे और ये प्रॉब्लम को हम साथ में सॉल्व करेंगे। बढ़ते हैं आगे, रेडियो मस्ती 24/7 पर वापस आइएगा, थोड़ा डिस्कशन हो जाए इस बारे में।

0: Aamir Khan wondered.
1: Wow, look, I could have thought of anything. That's amazing.
0: Salman Khan wanted answers.
2: कैसे किया ये?
0: R. Madhavan said.
3: Awesome.
2: You're very good, yaar. Very well done.
0: And Boman Irani?
4: I say this with great respect. This is actually it's blown my mind.
0: सभी का एक ही सवाल, कैसे कर लेती है सुहानी शाह ये कमाल?
5: Anybody talks about magic in the country, I want them magic Suhani.
0: Singapore, get ready to be spellbound with Suhani Shah, the first Indian to win at what's known as the Oscars of Magic. Wonderful escapades and epic encounters present Spellbound with Suhani Shah, an incredible evening of mind reading, mentalism, and impossible experiences. 20th September, 6 p.m. Quetta Ayer People's Theatre, hosted in English. Tickets at Sistic. Come curious, leave spellbound with Suhani Shah.
6: How do you know these things? Stop reading my mind.
7: हम जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ना, वो दिल से बड़े सेंसिटिव होते हैं, स्पेशली अगर हमने एक एक पत्थर, एक एक ईंट अपनी बिजनेस का खुद खड़ा किया हो. गुड इवनिंग, रेडियो मस्ती 24/7 पर आप हैं रेणुका के साथ और ये है नो फिल्टर्स नो जजमेंट जस्ट योर लेटर्स डियर मस्ती दिल से. जी बिल्कुल, ब्रेक से पहले हमने बात करी थी किसी के साथ में जिनकी चिट्ठी कुछ ऐसी है कि एक मिडल मैन कह लीजिए या एक एजेंट कह लीजिए जो उनके बिजनेस और क्लाइंट्स के बीच में है, जिनके साथ में जुड़कर अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि बाहर नुकसान ज़्यादा और फ़ायदा कम हो रहा है. ये ऐसा क्यों कर रही हैं ये इनको समझ में नहीं आ रहा है, तो पूछ रहे हैं कि कन्फ्रंट करें या चुप रहें. You know what? Business is built on relationships and relationships are built on trust. और एक बार वो जो trust होता है ना, जो एक दीवारें पड़ने लगे तो business usually उसमें भी दीवारें पड़ने लगती हैं. So first of all, suspicion को अपना strategy ना बनाएं. Before assuming someone's intentions, अपने आप से पूछिए, do I have enough facts or only a pattern that's making me uncomfortable? अगर genuinely आप देख रहे हैं repeated behavior that is affecting your business, then don't ignore it. But don't fight it emotionally, okay? Instead of confronting this person with accusations, आप system बदल दीजिए. Create opportunities to meet the clients directly. Request कीजिए joint meetings. Build your own relationships. Strengthen your own brand so that clients know who you are and what you stand for. क्योंकि कोई भी ऐसा intermediary नहीं है जो कि आपसे आपके trust between you and your clients से ज़्यादा important बन जाए. एंड एक और लेसन जो बिजनेस हमें सिखाता है वो ये है दैट नॉट एवरी पार्टनरशिप इज मेंट टू लास्ट फॉर एवर. कभी कभी लोग आते हैं हमारी जर्नी में टू हेल्प अस ग्रो और कभी कभी हमें सिखा जाते हैं कि किस तरह की पार्टनरशिप्स में हमें कभी नहीं पड़ना चाहिए. नीदर लेसन इज अ फेलियर. प्रोटेक्ट योर रेपुटेशन, प्रोफेशनल रहिए. गॉसिप का जवाब गॉसिप से नहीं, अपनी इंटेग्रिटी को अपना सबसे बड़ा मार्केटिंग टूल बनाइए. क्योंकि बिजनेसेस जो इनसिक्योरिटी में बने होते हैं वो तो सर्वाइव बहुत ही कम करते हैं, बट बिजनेसेस बिल्ट ऑन क्रेडिबिलिटी कैन अर्न ट्रस्ट दैट लास्ट फॉर इयर्स. एंड रिमेंबर, डोंट स्पेंड सो मच एनर्जी फाइटिंग क्लोज डोर्स, ओके? यू कैन फॉरगेट टू बिल्ड न्यू वंस अगर आप इसी के पीछे पड़े रहेंगे. बिजनेस में कॉम्पिटिशन से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपनी क्रेडिबिलिटी को अपनी कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए. आखिर में लोग प्रोडक्ट से पहले लोगों पर ट्रस्ट करते हैं. रिमेंबर दैट यू आर द ब्रांड. एंड ऑन रेडियो मस्ती, आशा है आपको पसंद आएगा ये वाली बात भी. इकबाल के साउंड ट्रैक से सुनेंगे. स्टे ट्यून्ड.

Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियाँ दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। On मस्ती मीडिया नेटवर्क, we're opening a safe space. Dear मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।

0: डियर मस्ती, दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है।
1: वेलकम बैक टू डियर मस्ती दिल से ऑन रेडियो मस्ती 24/7। पता है, कुछ रिलेशनशिप्स टूटते नहीं है, कोई फाइट नहीं होती, कोई ड्रामेटिक गुडबाय नहीं होता, बस एक दिन रियलाइज होता है कि हम अपना वो वाला वर्जन नहीं रहे जो कभी हुआ करते थे। और कुछ ऐसे ही फीलिंग हमारी अगली चिट्ठी में भी यहाँ पे बयां की जा रही है। चलिए साथ में पढ़ते हैं। डियर मस्ती, मेरी एक फ्रेंड थी जो एक वक्त पर एक्सट्रीमली क्लोज थी। हमारे बीच कुछ हुआ भी नहीं, नो फाइट, नो मिसअंडरस्टैंडिंग, बट समहाउ वी आर नॉट जस्ट द सेम एनीमोर। हम आज भी बात करते हैं, बर्थडे विश करते हैं, कभी मिल भी लेते हैं, एवरीथिंग इज परफेक्टली नॉर्मल, बट आई कैन फील दैट क्लोजनेस इज गॉन। कभी मन करता है उससे पूछूं, व्हाट चेंज्ड, बट आई वंडर, अगर कोई नेचुरली दूर हो गया है तो क्या एक्सप्लेनेशन मांगना भी चाहिए? Can some relationships simply complete their time without anybody being at fault? Dear listener, personally, yes, I genuinely think they can. और शायद इसी चीज को एक्सेप्ट करना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है, बिकॉज जब फाइट होती है ना, हमारे पास रीजन होता है कि उसने ये कहा, मैंने वो कहा, इसीलिए हमारी दोस्ती खत्म हुई। दर्द होता है, बट एटलीस्ट स्टोरी का एक एंडिंग पॉइंट होता है। लेकिन जब कुछ हुआ ही नहीं तो दिमाग क्लोजर ढूंढता रहता है, दैट व्हाट चेंज्ड, क्या मैंने कुछ किया, क्या वो मुझसे अपसेट है, शुड आई हैव ट्राइड हार्डर। बट डियर लिसनर, कभी कभी आंसर बहुत सिंपल होता है, लाइफ चेंज्ड, पीपल चेंज्ड, यू चेंज्ड, शी चेंज्ड, प्रायोरिटीज चेंज्ड, मे बी जॉब्स चेंज्ड, सिटीज चेंज्ड, फैमिलीज हैपेंड, न्यू फ्रेंडशिप्स केम इन, या सिंपली वो वर्जन ऑफ यू जो एक वक्त पे किसी एक दूसरे के लिए बहुत स्ट्रॉन्गली मीट किया था, वो वर्जन ही इवॉल्व हो गया हो। और इसका मतलब ये नहीं है कि जो फ्रेंडशिप थी वो फेक थी। समथिंग डजंट हैव टू लास्ट फॉरएवर टू हैव बीन रियल। मुझे पर्सनली ये थॉट बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। कुछ लोग हमारी लाइफ में 20 साल रहते हैं, कुछ 2 साल रहते हैं, मे बी कुछ 6 महीने, कुछ महीने रहते हैं। ड्यूरेशन रिलेशनशिप की वैल्यू डिसाइड नहीं करता। अब आपका सवाल दैट शुड यू आस्क हर व्हाट चेंज्ड, सो उस पर मुझे लगता है पहले खुद से पूछ लीजिए कि मैं क्यों पूछना चाहती हूँ ये। अगर आप जेन्युइनली फ्रेंडशिप मिस करती हैं और रिकनेक्ट करना चाहती हैं, देन यस, बिल्कुल पूछिए। लेकिन तुम बदल क्यों गई, आई डोंट थिंक सो यू शुड से समथिंग लाइक दैट। मे बी जस्ट आई वॉज थिंकिंग अबाउट अस द अदर डे, आई रियली मिस हाउ क्लोज वी यूज्ड टू बी। Do you ever feel that too? And then just see कि conversation ये कहाँ जाती है। लेकिन अगर आप explanation इसलिए चाहते हैं क्योंकि आपको लगता है कि किसी की गलती तो होनी ही चाहिए इस situation में, तो शायद जरूरत नहीं है। हर ending को culprit नहीं चाहिए। और वैसे भी आप कह रही हैं कि आज भी वो respect है, birthdays है, कभी कभी coffee पे मिल लेते हैं, normal conversations है, तो maybe friendship खत्म भी नहीं हुई है, बस उसका shape change हो गया है, and that's okay, completely okay। हम कभी कभी relationships को उनके पुराने version में freeze करके रख देना चाहते हैं, but people are not photographs, right? They move, they grow, we grow। So my dear listener, अगर वो दोस्ती कभी आपको बहुत खुशी देके गई, आपको संभाला, आप दोनों ने बहुत कुछ शेयर किया, तो उस वक्त के लिए थैंकफुल रहिए। और आज जो रिलेशनशिप है उससे भी बिना फोर्स किए रहने दीजिए। हर दूरी को रिजेक्शन का नाम मत दीजिए। कभी कभी दो लोग बस लाइफ के एक क्रॉस रोड पाथ पर साथ चले थे और फिर उनके रास्ते थोड़े से अलग हो गए। कोई विलन नहीं, कोई विक्टिम नहीं, बस दो अच्छे लोग, दो अलग अलग डायरेक्शंस। एंड मे बी कुछ रिलेशनशिप्स को बचाने की नहीं, उनके बदलते हुए फॉर्म को एक्सेप्ट करने की जरूरत होती है। आई होप दिस हेल्प्स। यह है डियर मस्ती दिल से ऑन रेडियो मस्ती 24/7।

0: श्रेया जरा उठ के रेडियो मस्ती स्पीकर पे लगा देना।
1: बाइकी तने मम्मा
2: ड्यूटी।
3: लास्ट टाइम मैं उठा था ना,
1: मैं उठता था।
0: तेरी मेरी बनती नहीं, पर तेरे बिना मेरी चलती भी नहीं। इस रक्षाबंधन इस नोक झोक से बंधे रिश्ते को और भी मजबूत करें ज्योति स्टोर्स एंड फ्लावर शॉप के साथ, वन कैंपल लेन। राखी, लुम्बा और पूजा के सभी सामान के लिए आपका वन स्टॉप शॉप, अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल एट jyoti.com.sg।
4: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
5: अगर हम सब की जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
6: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
7: Dear Mastie.

0: आपके सवाल के जवाबों को भी। चलिए ज्यादा देरी ना करते हुए मेरे हाथों में जो लेटर नेक्स्ट आ चुका है उसमें लिखा हुआ है कि हाय डियर मस्ती, एंड मेरी लाइफ में ना सब कुछ उल्टा पुल्टा चल रहा है। मतलब जो होता है अच्छे के लिए होता है ऐसा कह तो दिया जाता है, पर मेरे संग जो हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे बेकार के लिए हो रहा है। कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, हर चीज़ अलग डायरेक्शन में जा रही है। मुझे क्या करना चाहिए? मैं बहुत नेगेटिव होता जा रहा हूँ। सबसे पहली बात, आपके माइंड में थोड़े भी नेगेटिव थॉट्स आए ना तो उन थॉट्स को होल्ड पर डाल दो, अपने माइंड को कंट्रोल करो। एनीवेज, इनके सवाल का जवाब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लेकिन लाइफ में अगर कॉम्प्लिकेशंस ना आए तो वो लाइफ ही क्या होगी?
1: यूं नजरें ना फेरो तुम मेरे हम मेरे तुम,
0: ऐसे ही खूबसूरत गाने डियर मस्ती दिल से शो पर मेरे यानी आरजे नुपुर के साथ आप सुन रहे हैं। इनके सवाल का जवाब इन अ शॉर्ट वाइल।

जब राजस्थान की हवाएं सिंगापुर के शाही स्वाद में घुल जाएं, जब लाल मांस, दाल बाटी चूरमा, केर सांगरी और मीठे मीठे घेवर की खुशबू दिल को छू जाए, जब शाही महारानी नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट लेकर आए द रॉयल फ्लेवर्स ऑफ राजस्थान का एक्सक्लूसिव 10-डे फेस्टिवल, तो बस बात शाही बन जाए। The Royal Flavors of Rajasthan by Shahi Maharani North Indian Restaurant, 14th to 23rd August. Reserve and prepay online to enjoy the early bird menu at just $78 plus per person. Exclusively for dinner. Book your Royal Experience today at www.shahimaharani.com.

0: डियर मस्ती दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है।
1: क्या बात है, क्या बात है। अगर आप सुबह से लेकर शाम तक 5 बार भी स्माइल कर रहे हैं ना, किसी भी रीजन से, तो मतलब आप अपनी लाइफ अच्छे से जी रहे हैं। डियर मस्ती दिल से शो पर मैं आरजे नुपुरा आपके साथ, और हम भी शो से कोशिश करते हैं कि आप तक आपके चेहरे की स्माइल पहुंचाए, आपको हैप्पी फील करवाए मेरी जान। एनीवेज, बिना देरी के डियर मस्ती दिल से शो पर मेरे हाथों में जो लेटर थोड़ी देर पहले आया, उन्होंने मुझसे पूछा है कि वैसे तो दुनिया कहती है जो होता है अच्छे के लिए होता है, पर इनकी लाइफ में जो भी हो रहा है वो इनके बुरे के लिए हो रहा है। ठीक है, तो आप जिन्होंने मुझसे ये सवाल पूछा है, पूछना चाहूंगी आप कर्मा शर्मा पे बिलीव करते हैं कि नहीं करते हैं। हाँ, देखो कर्मा जो होता है ना, वो लौट कर जरूर आता है। समटाइम्स हमारी लाइफ में ना एक ऐसा पैच आता है जब हर चीज एक अलग डायरेक्शन में जा रही होती है, अलग ही डायरेक्शन में जा रही होती है। मतलब अगर हम सोने में भी हाथ डालेंगे ना, तो वो पीतल बन के निकल कर आएगा, राइट? एंड आपको उस वक्त में ना ये सोचकर निराश नहीं होना है कि सब कुछ बुरा हो रहा है, बल्कि मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि मेरी लाइफ में भी 4 to 5 years का एक ऐसा पैच आया था जब सब कुछ खराब चल रहा था, लेकिन यू नो व्हाट, वो एक बड़ी हैप्पीनेस आने से पहले की शांति होती है। बड़ी हैप्पीनेस आने से पहले जो आपको दुख फेस करने होते हैं ना, जो परेशानी होनी होती है ना, जो मिस्टेक्स करनी होती है ना, ये उसका फेज होता है। जैसे ही ये निकलेगा ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सो लाइफ को हार्ड तरीके से या हार्श तरीके से मत देखो, हैप्पीनेस छोटे छोटे मोमेंट्स में ढूंढना शुरू करो।
2: जी भर जियो, जो है समा, कल हो न हो।
1: बिल्कुल ऐसा गाना जो आपको हर दिन जिंदा दिल से जीने के लिए और ज्यादा मोटिवेट करेगा। डियर मस्ती दिल से शो, मैं आरजे नुपुर।

All right, and I am back. This is Renuka with you, और चल रहा है आपका हमारा ये बहुत ही फेवरेट, क्या मेरा तो बहुत ही फेवरेट शो बन चुका है ये. This is called Dear Masti, दिल से. Dear Masti, दिल से. ये वाला लेटर बिजनेस से रिलेटेड तो नहीं है जैसे कि पहला पिछले वाला था, लेकिन दिस इज अ वेरी पर्सनल एंड वेरी स्पेशल वन. हाय मस्ती, माय डॉटर मूव्ड ओवरसीज 2 years ago टू स्टडी और अब वहां पर काम करने लगी है. आई एम प्राउड ऑफ हर, दिस इज व्हाट वी ऑलवेज वांटेड फॉर हर टू बिकम इंडिपेंडेंट, बिल्ड अ लाइफ ऑफ हर ओन. बट आई एम ऑनेस्ट, एवरी डे कम्स विद अ क्वाइट फियर. ठीक तो है, बता तो रही है, व्हाट इफ शी इज स्ट्रगलिंग विद वर्क, या लोनली है, या गेट्स इनटू द रॉन्ग कंपनी, व्हाट इफ शी मेक्स अ मिस्टेक एंड इज टू स्केयर्ड टू कॉल अस. समटाइम्स शी विल से एवरीथिंग्स फाइन मॉम, बट एज पेरेंट्स वी नो दैट समथिंग साउंड्स डिफरेंट. इतनी दूर रहकर हाउ डू वी रियली नो कि हमारे बच्चे ठीक हैं? डू वी प्रोटेक्ट देम विदाउट कंट्रोलिंग देम? कैसे? एंड हाउ डू वी स्टॉप वरिंग व्हेन दे आर नो लॉन्गर अंडर आवर रूफ? बड़े हो गए हैं तो हमें याद होगा हमारे माँ बाप किस तरह से हमसे बात करते थे, किस तरह से यू नो दे यूज टू हाउंड अस, जैसे हम उस समय बोलते थे, बट ऑल दे डिड वॉज टू केयर. अब आप माँ बाप बन गए हैं तो ऐसे ही बिहेव कर रहे हैं, नहीं? चलिए यहाँ पर एक छोटा सा पॉज, लेकिन जिस जनरेशन के बारे में आप बात कर रहे हैं ना, चलिए उसी जनरेशन का गाना सुन लेते हैं, थोड़ा सा यंग फील कर लेते हैं, इससे पहले कि वापस आके आपको लगे कि यार रेणुका ज्ञान मत दे यार, प्रैक्टिकल बात बता, तो प्रैक्टिकल ही बताऊंगी. कॉकटेल 2 के साउंडट्रैक से. क्या डर है कि बच्चे ज्यादा एक्सपोजर बाहर मिल जाएगा तो बिल्कुल हाथ से निकल जाएंगे, या ये कि किसी गलत जगह पहुंच गए, पड़ गए, तो जिंदगी खराब हो जाएगी, है ना? दोनों ही बहुत ही केयरिंग एस्पेक्ट्स ऑफ पेरेंट्स. लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक, आई विल कम बैक सून एंड लेट्स टॉक अबाउट दिस.

0: श्रेया जरा उठ के रेडियो मस्ती स्पीकर पे लगा देना।
1: बाय की डन है मम्मा।
2: ड्यूटी
3: लास्ट टाइम मैं उठा था ना,
1: मैं उठता था।
0: तेरी मेरी बनती नहीं, पर तेरे बिना मेरी चलती भी नहीं। इस रक्षाबंधन, इस नोक झोक से बंधे रिश्ते को और भी मजबूत करें ज्योति स्टोर्स एंड फ्लावर शॉप के साथ, वन कैंपल लेन। राखी, लुम्बा और पूजा के सभी सामान के लिए आपका वन स्टॉप शॉप, अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल एट jyoti.com.sg।
4: आइए आइए, स्वागत आपका रेडियो मस्ती 24/7 पर। रेणुका इज विद यू। और ब्रेक से पहले आपने जो चिट्ठी मुझे लिखी थी कि भाई आपकी बेटी बाहर काम कर रही है, बहुत किलोमीटर्स, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स अवे, एंड आपको लगता है कई बार कि बोल तो रही है दैट आई एम ओके, लेकिन पता नहीं ठीक है कि नहीं है, कोई गलत कंपनी में तो नहीं है, नौकरी में कोई परेशानी तो नहीं है। दिन रात माँ बाप की परेशानी, एंड हाउ डू यू डील विद इट, हाउ डू यू डील विद इट। Dear Masti, दिल से। Alright, so इस बात का जवाब कोई नहीं है, सीरियसली कोई नहीं है, क्योंकि हर माँ बाप हर जनरेशन में इस परेशानी से तो गुजरता ही है। I think every parent listening today whose child is living in another city or another country will understand this letter. Hardest part of parenting is that we spend 20 years teaching our children to become independent, और जब वो बन जाते हैं we have to learn how to let them be independent. सच्चाई कुछ ऐसी है कि you cannot protect your child from every disappointment. You cannot stop every wrong decision. You cannot be there every time they fall. And perhaps that's exactly how they become the adults you raised them to be. But हाँ, आप ये जरूर कर सकते हैं कि आप सिर्फ ये ना पूछें बेटा खाना खा लिया, काम कैसा है। Ask questions जिसकी वजह से they open the hearts. ये चलाकी माँ बाप को सिखा रही हूँ मैं। I hope kids are not tuned in right now. What's been the hardest part of your week? ऐसा सवाल पूछिए। What's something that made you smile today? ऐसा सवाल पूछिए। ये पूछिए, Is there anything you worried about but haven't told us? शायद ये आखिरी वाला सवाल फिर भी जवाब नहीं लाएगा, लेकिन पहले दो सवालों से डेफिनेटली आपको उनकी लाइफ के बारे में और कुछ पता भी लगेगा, नॉट जस्ट आई एम ओके यूर ओके। यू नो द राइट क्वेश्चन समटाइम्स दैट ओपन्स द राइट कॉन्वर्सेशन। एंड रिमेंबर, हर फोन कॉल को एडवाइज मत बनाइए प्लीज। वन डे दे मे स्टॉप कॉलिंग। Make sure they know that home is still the safest place to tell the truth. Not because you'll solve every problem, but because you'll listen without judgment. And as parents, we never stop worrying. आपको पता है कि that's a part of loving, ना? लेकिन fear को इतना loud भी मत बनने दीजिए कि वो trust को भी पीछे छोड़ दे. After all, if you've spent years teaching them good values, showing them right from wrong, helping them become kind, responsible human beings, then trust कि वो lessons भी उनके साथ ही travel कर रहे हैं. जब आप नहीं हैं तो भी. Alright, ये तो हुआ enough भाषण, बढ़ते हैं आगे, बढ़िया सा गाना सुनते हैं और smile करते हैं with the hope and the prayer and the wish कि हमारे बच्चे independent होके जहाँ भी हैं बिल्कुल absolutely fit हैं और successful हैं और अपना उन्हीं तरीके से ध्यान रख रहे हैं जो teachings हमने उन्हें दी हैं, जो values हमने उन्हें दिए हैं। चलिए चलिए, smile parents, good evening.

0: डियर मस्ती दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है।
1: वेलकम बैक टू डियर मस्ती दिल से ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। मैं हूं अंतरा यहां पर आपके साथ, और चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली चिट्ठी की ओर यहां पर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। डियर मस्ती, As my parents are getting older, I am noticing small changes in them. वो बातें रिपीट करते हैं, पहले से ज्यादा चिंता करते हैं और कुछ चीजों में अब हेल्प चाहिए जो पहले वो कभी खुद इजीली कर लिया करते थे। मैं हैप्पीली उनकी हेल्प जरूर करती हूँ, बट समटाइम्स उनसे बात करने के बाद स्ट्रेंजली इमोशनल हो जाती हूँ। They are still here, thankfully. इसलिए ये कहने में भी गिल्ट होता है, बट समटाइम्स I miss the younger, stronger versions of them. How do you accept this phase without constantly being scared of time? Nobody prepares you for watching your parents grow older, isn't it? My dear listener, I think ये एक ऐसी नाव है जिसमें मैं और मेरे जैसे और भी कितने सारे लोग इस वक्त जो सुन रहे हैं, we are all on the same boat. And I miss the younger, stronger versions of them. That line really hit me. Because एक वक्त तक ना हमारे लिए पेरेंट्स ऑलमोस्ट इनविंसिबल होते हैं कि पापा को सब पता है, मम्मी सब मैनेज कर लेगी, कोई प्रॉब्लम है हमारे पेरेंट्स है ना। और फिर धीरे धीरे रोल्स थोड़े शिफ्ट होने लगते हैं कि मम्मी ने मेडिसिन ली कि नहीं, पापा आप छोड़ो मैं कर देती हूँ, आप लोग अकेले मत जाना, फोन क्यों नहीं उठाते हो यार आप लोग। Suddenly the people who once held your hand crossing the road, you are beginning to hold theirs. Of course that makes you emotional. और जो आप feel कर रहे हैं उसके लिए guilt क्यों? आप ये तो नहीं ना कह रहे हैं कि आज वाले parents हमको पसंद ही नहीं है। आप बस उस version को miss कर रहे हैं जो आपकी memories में सबसे strongly बसा हुआ है। दोनों feelings एक साथ exist कर सकती हैं। You can be deeply grateful that they are here and still feel sad watching time change them. लेकिन my dear listener, एक चीज का ध्यान रखिए, future के डर में आज के parents को miss मत कर दीजिएगा। कभी हम इतना सोचने लगते हैं कि पता नहीं कितना time है, आगे क्या होगा, वो और भी बूढ़े हो जाएंगे, तो वो जो phone call आप आज कर सकते थे, जो चाय उनके साथ बैठ के पी सकते थे, जो story मम्मी तीसरी या हजार बार repeat कर रही है, हम उस पे वापस से हजारवीं बार हंस सकते थे, वो मोमेंट एंजाइटी में निकल जाता। टाइम को रोक नहीं सकते, बट वी कैन डिसाइड हाउ प्रेजेंट वी आर व्हाइल टाइम पासेस। जो जो करना चाहिए सब कुछ करिए उनके साथ। हर चेंज को ऑटोमेटिकली ओल्ड एज कहकर भी डिसमिस मत कीजिए। अगर मेमोरी, बिहेवियर, मोबिलिटी या डेली फंक्शनिंग में कोई नोटिसेबल या कंसर्निंग चेंज आ रहा है, तो डेफिनेटली गो फॉर अ मेडिकल चेकअप, बिकॉज दैट्स द वे टू गो। बाकी मुझे लगता है एक्सेप्टेंस का मतलब जो है वो ये नहीं है कि एक दिन आपको पेरेंट्स को एजिंग देखकर डर लगना बंद हो जाएगा। मे बी एक्सेप्टेंस इज डर के बावजूद उनके साथ आज को पूरा जीना। दैट इज व्हाट यू हैव टू डू। पहले उन्होंने हमें संभाला था, अब हमारी बारी है उन्हें चेंज करने की नहीं, उनके साथ चलने की। आई होप दिस हेल्प्स। यह डियर मस्ती दिल से, उतना ही दिल से जितना हम अपने पेरेंट्स से दिल से प्यार करते हैं। ऑन रेडियो मस्ती 24/7।

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste, behnor bhaiyo. Main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

0: डियर मस्ती दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है।
1: वेलकम बैक एवरीवन, डियर मस्ती दिल से, यही है इस शो का नाम। मैं हूँ अंतरा एंड यस, थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था दैट वंस अगेन आई हैव विद मी हमारे संघर्ष साथी श्रीधर। वेलकम बैक श्रीधर।
2: वेलकम बैक अंतरा, वेरी हैप्पी टू बी हियर, वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिस शो।
1: श्रीधर, हम अक्सर कहते हैं कि हमारी हैबिट्स जो होती है इट डिफाइंस अस। कुछ हैबिट्स हमें बेहतर बनाती हैं, कुछ इरिटेट करती हैं, और कुछ ऑनेस्टली हमें खुद ही पता नहीं होता है कि वो कब एक रियल प्रॉब्लम बन गई है। सो आई वॉज जस्ट थिंकिंग दैट आज आपसे कोई ऐसा स्पेसिफिक केस के बारे में पूछूं, समथिंग अनयूजुअल दैट माइट हैव कम योर वे, वेयर अ सिंपल हैबिट हैड एक्चुअली स्टार्टेड अफेक्टिंग समवनस लाइफ।
2: Definitely, very interesting one that came about 2 weeks back. And these habits, hamesha bachpan mein we catch on to that, and somehow they just fall into our adulthood, right? But aisa habit hai jo it is totally unusual and something we never expect to hear on air.
1: Okay, and what is that? I am now very curious.
2: No speaking, compulsive no speaking.
1: Wait, like nose digging? Okay, I definitely
2: nose digging.
1: Coming, but that really got me because सुनने में funny जरूर बहुत काफी लगता है ये, but if somebody is genuinely struggling with it, then what?
2: Yeah, सोचा नहीं था ना कि this could actually be an issue, but
1: absolutely
2: a very serious one actually.
1: ओके, नाउ आई रियली वांट टू नो श्रीधर, ये जो बिल्कुल सिचुएशन है ये आपको सबको बतानी ही पड़ेगी। एवरीवन लेट्स स्टे राइट हियर बिकॉज अपेरेंटली ऑन डियर मस्ती दिल से आज बात दिल से शुरू हुई है और नाक तक पहुंच गई है। सो वी विल बी यहाँ पे बैक एंड वी रियली डेफिनेटली वांट टू नो दैट विच केस श्रीधर इज टॉकिंग अबाउट। लेट्स टेक अ म्यूजिकल ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक।

0: डियर मस्ती, दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है।
1: वेलकम बैक एवरीवन टू डियर मस्ती दिल से ऑन रेडियो मस्ती 24/7। दिस इज योर संघर्ष साथी श्रीधर। देखिए, पहले अंता ने एक सवाल पूछा था अबाउट हैबिट्स एंड आई हैड अ वेरी स्पेसिफिक केस अबाउट नोस्टिकिंग एंड यस इट सरप्राइज्ड मी एज मच एज इट सरप्राइज्ड अंतरा एंड देयर वाज साइलेंस व्हेन आई हर्ड दिस ऑन द फोन। मैंने सोचा था कि नोस्टिकिंग कैन एक्चुअली बी अ प्रॉब्लम। आई नेवर न्यू इट कुड रियली बी दिस सीरियस।
2: I know.
1: So, here's what happened.
2: Okay.
1: This person did not even know that he was a no-speaker. ठीक है? तो जब बाहर गया था, near the shopping mall or somewhere, I think some of them spotted him and they mocked him, they laughed at him to the point he was so embarrassed

0: श्रेया जरा उठ के रेडियो मस्ती स्पीकर पे लगा देना।
1: बाइकी तने मम्मा
2: ड्यूटी।
3: लास्ट टाइम मैं उठा था ना,
1: मैं उठता था।
0: तेरी मेरी बनती नहीं पर तेरे बिना मेरी चलती भी नहीं। इस रक्षाबंधन इस नोक झोक से बंधे रिश्ते को और भी मजबूत करें ज्योति स्टोर्स एंड फ्लावर शॉप के साथ वन कैंपल लेन। राखी, लुम्बा और पूजा के सभी सामान के लिए आपका वन स्टॉप शॉप अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल एट ज्योति।

डियर मस्ती दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है।

वेलकम बैक टू डियर मस्ती दिल से ऑन रेडियो मस्ती 24/7। मैं अंतराब के साथ और यहाँ पर एक एक करके जो है सब अपनी अपनी चिट्ठियां पढ़ रहे हैं और मैं भी अपनी अगली चिट्ठी की तरफ बढ़ना चाहती हूँ। चलिए साथ में पढ़ते हैं। डियर मस्ती, ग्रोइंग अप मेरी सिस्टर को हमेशा मोर रिस्पॉन्सिबल और सक्सेसफुल माना गया। मैं केयर फ्री वाली थी जिसको अक्सर कहा जाता था कि अपनी बहन से कुछ सीखो। आज हम अडल्ट हैं। I love my sister और हमारे बीच में कुछ भी ऐसा competition जैसा नहीं है। But हमारे रिश्तेदार still they compare us, हमारा career, घर, बच्चे, even how we look। मैं हंसकर टाल देती हूँ, but somewhere that younger version of me still feels like she's being told you are not quite good enough। Why do childhood comparisons stay with us for so long, even when as adults we know better? And that is so very true। I think you asked the question and answered it at the same time yourself। कितनी बार ऐसा होता है ना कि हम अपने आप से के साथ एक इंट्रोस्पेक्शन करते रहते हैं और अपने सवाल का जवाब हमारे सवाल में ही कहीं ना कहीं उसका बिल्कुल दे देते हैं जवाब। तो वेल, वैसे भी ये बिल्कुल सिबलिंग राइबलरी टाइप का कुछ भी सिचुएशन नहीं लग रहा है, क्योंकि आपकी सिस्टर की प्रॉब्लम है ही नहीं। प्रॉब्लम वो पुराना सा मैसेज है जो कंपैरिजन के थ्रू आपको बार बार मिला कि शी इज डूइंग बेटर, यू शुड बी मोर लाइक हर, उसके जैसा बनो। और बचपन में हम इतने इमोशनली इक्विप भी नहीं होते कि सोच सकें कि अच्छा ये तो रिश्तेदार है, इनका तो कम्युनिकेशन स्टाइल ही प्रॉब्लमैटिक है, इनका तो काम ही ये है। ये सारी चीजें हम लोग अब सोचते हैं। नहीं, जब हम छोटे होते हैं हमारे लिए सब कुछ बहुत सिंपल होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, दैट अगर ये कह रहे हैं तो मे बी शी इज बेटर, सो मे बी आई एम लेस। और वो मे बी आई एम लेस वाला थॉट कभी कभी अडल्टहुड तक साथ आ जाता है। इसलिए आज भी जब करियर का कंपेयर कोई करता है या घर का या बच्चों का या लुक्स का, द अडल्ट यू परफेक्टली आप जानती हैं दैट दिस इज एब्सोल्युटली नॉट राइट, बट समवेयर द यंगर यू रिमेंबर्स हाउ दिस यूज्ड टू मेक यू फील। तो सबसे पहले तो प्लीज अपने आप को ये कहना बंद कीजिए कि इतनी बड़ी हो गई है अब भी क्यों इफेक्ट होती हो। इफेक्ट होती है बिकॉज इट मेंट समथिंग टू यू वंस एंड यू हैव टू एक्सेप्ट दैट। लेकिन अब नेक्स्ट पार्ट इम्पोर्टेंट है ज्यादा। आपको उस कंपैरिजन में पार्टिसिपेट करना बंद करना पड़ेगा। और पार्टिसिपेट करने का मतलब सिर्फ खुद का कंपेयर करना नहीं होता। हर बार हंसकर टाल देना भी कभी कभी दूसरों को सिग्नल देता है दैट दिस इज ओके। तो नेक्स्ट टाइम समवन सेज तुम्हारी सिस्टर का करियर देखो, यू डोंट हैव टू डिपेंड योरसेल्फ। आपको अपनी अचीवमेंट्स की लिस्ट भी नहीं देनी है, कोई जस्टिफिकेशन नहीं देना है। कह दो कि भाई हाँ भाई अच्छी बात है, शी इज डूइंग वेरी वेल, आई एम प्राउड ऑफ हर, बट ऑल्सो एट द सेम टाइम हम दोनों काफी डिफरेंट लोग हैं, सो प्लीज हम दोनों को कंपेयर मत कीजिए बस। और अगर फिर भी ये बात रिपीट हो तो थोड़ा सा फर्म होके जो है उनको बात समझा दीजिए। नो फाइट, नो ड्रामा, नो 20 मिनट का एक्सप्लेनेशन। बाउंड्री सेट करिए, टॉपिक खत्म वही हो जाएगा। और एक और काम कर सकते हैं, कभी अपनी सिस्टर के साथ इस बारे में बात करके देखिए, बिकॉज यू नेवर नो, आपको केयर फ्री वन का जो लेबल मिला मे बी उसको रिस्पॉन्सिबल वन होने का प्रेशर मिला हो। कंपैरिजन के दोनों एंड्स अनकंफर्टेबल हो सकते हैं। एक बच्चे को मिलता है कैचअप, दूसरे को डोंट एवर फॉल बिहाइंड, नीदर इज फेयर। सो माय डियर लिसनर, सबसे इम्पोर्टेंट काम रिलेटिव्स को समझाना नहीं है। आज वाली आपको उस यंगर वर्जन ऑफ योरसेल्फ को एक नया मैसेज देना है दैट एवरीथिंग इज ओके, समवन एल्सस लाइट डज नॉट डिम योर्स, है ना। एंड yes, smile and say we are different and we are both doing just fine। Maybe वही sentence आज वाली आपको भी सुनना है and वो छोटी वाली आपको भी यही सुनने की जरूरत है। I hope this really really helps you out। Radio Masti 24/7 live, आप सुन रहे हैं जिया मस्ती दिल से, मैं अंतरा आपके साथ। Stay tuned।

0: जब राजस्थान की हवाएं सिंगापुर के शाही स्वाद में घुल जाए, जब लाल मांस, दाल बाटी चूरमा, केर सांगरी और मीठे मीठे घेवर की खुशबू दिल को छू जाए, जब शाही महारानी नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट लेकर आए द रॉयल फ्लेवर्स ऑफ राजस्थान का एक्सक्लूसिव 10-day फेस्टिवल, तो बस बात शाही बन जाए। रॉयल फ्लेवर्स ऑफ राजस्थान बाय शाही महारानी नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट 14th to 23rd August. रिजर्व एंड प्रीपे ऑनलाइन टू एंजॉय द अर्ली बर्ड मेन्यू एट जस्ट $78 प्लस प्लस पर पर्सन एक्सक्लूसिवली फॉर डिनर। बुक योर रॉयल एक्सपीरियंस टुडे एट www.shahimaharani.com.
1: और इसी के साथ आज का रेडियो मस्ती दिल से का वक्त भी ऑलमोस्ट खत्म होने को चला। रेडियो मस्ती 24/7 में अंतरा आपके साथ। यस, पता है आज के लेटर्स को मैं अगर एक साथ रख कर देखूँ ना, तो मुझे यही लग रहा है कि लाइफ में बहुत कुछ हम चूज करते हैं, लेकिन बहुत कुछ हमें सीखना पड़ता है वाइल लिविंग इट। कभी बचपन के कंपैरिजन बड़े होने के बाद भी अंदर ही रह जाते हैं, कभी कोई फ्रेंडशिप बिना किसी फाइट के बस अपना शेप बदल लेती है, कभी हम अपने पेरेंट्स को बूढ़ा होता हुआ देखते हैं और सडनली रियलाइज करते हैं कि वक्त सच में कितनी क्वाइटली आगे बढ़ रहा है, और कभी किसी और की सिचुएशन देख कर हम रुक जाते हैं और सोचते हैं क्या मुझे कुछ कहना चाहिए, क्या मुझे हेल्प करनी चाहिए। Different situations, different people, but somewhere same human emotions. और शायद दया मस्ती का purpose भी यही है। हर बार आपको perfect answer देना नहीं है, कभी-कभी बस आपके साथ बैठकर situation को दूसरी तरफ से देखना है। क्योंकि life में हर चीज का solution तो नहीं होता है। कुछ चीजों को solve करते हैं, कुछ accept करते हैं, कुछ से boundaries बनाते हैं और कुछ को बस प्यार से जाने देते हैं। And somewhere along the way, we all grow up. So thank you to every single person जिन्होंने हमें आज लिखा। आप जब अपनी पर्सनल कहानी, अपना कंफ्यूजन, अपना दर्द हमारे साथ शेयर करते हैं, that trust means the world to us. और उन listeners को भी thank you जो शायद कभी letter नहीं लिखा हो, but every week they quietly listen, they relate, और शायद किसी आंसर में अपना जवाब ही ढूंढ लेते हैं। आप भी कुछ अगर कहना चाहें, big, small, serious, silly, there is no qualification required for a feeling to matter. WhatsApp us 9151896 पर। नेम्स नहीं लिए जाएंगे, जजमेंट भी नहीं होगा, आप हमारे लिए बस हमारे डियर लिसनर रहेंगे। और जाने से पहले छोटी सी बात, जो बीत गया उससे सीखिए, जो बदल रहा है उसे स्पेस दीजिए, और जो आज आपके पास है उसे जीना मत भूलिए। बिकॉज कल की फिक्र और कल की यादों के बीच आज को मिस कर देना वुड बी सच अ वेस्ट, है ना। मैं अंतरा एंड ऑन बिहाफ ऑफ नुपुर, रेणुका एंड हमारे संघर्ष साथी श्रीधर, थैंक यू फॉर स्पेंडिंग दीज 3 hours विद अस ऑन डियर मस्ती दिल से। फिर से मिलेंगे अगले हफ्ते नए लेटर्स, नए इमोशंस और कुछ नए पर्सपेक्टिव्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।

गजब हो या भला कोई, यहाँ कठपुतली बन जाए, मेरी महफिल में आके हुस्न कोई बच के ना जाए।

0: रात अकेली है तो क्या, हम तो आपके साथ हैं। जोश में रहो।
1: Yeah, wanna feel that? Come on, girl, be the beat.

ये वक्त ये जमाना जब ना लगे सुहाना फिर मेरे पास आना, खादिम हूँ मैं पुराना, रखता जो कुछ नजर है

दुश्मन जिसे सताए जिसको लगा के जाए जाके नजर मिलाए धोखा कभी न खाए बूढ़ा हो या हो बच्चा

एक बात समझ में नहीं आती, अच्छे लोग क्यों मरते हैं, अच्छों के साथ बुरा क्यों होता है, रोने वाला क्यों हंसता है, हंसने वाला क्यों रोता है। सह लिया बहुत सह लिया, खामोशियों में बहुत रह लिया, अब दिल का शोर सुन, इरादे कुछ और सुन।

देश बदल गया, सब कुछ बदल गया। एक थप्पड़ मारोगे तो 100 थप्पड़ मारेंगे, आंख उठा के देखोगे तोड़ देंगे फोड़ देंगे।

0: एक जज्बा है, जुनून है, एक रुतबा है, फोर्स बगावत है, एक पागलपन है, शहादत है, एक दीवानगी है, फोर्स एक आवाज है, तेरी आवाज, मेरी आवाज, हम सबकी आवाज। 120 करोड़ एक साथ मिलकर चिल्लाए तो पूरी दुनिया को सुनना ही पड़ेगा, तो चिल्लाओ।
1: बात भी बाकी है मगर अभी रात अकेली है। जोश।

0: शादी का इरादा है,
1: शादी
0: का इरादा है
1: शादी ना पापा ना,
0: मगर क्यों
1: शादी तो बर्बादी है।
0: क्या कहती
1: हो जाती आजादी है।
0: नहीं नहीं
1: बाय बाय।
0: सुनो तो, सुनो तो।

0: कहा काम तो बताइए।
1: काम? हाँ। काम सीधा साधा है, लेना एक वादा है।
0: अच्छा,

0: मुस्कुराई पहले जरा आप मुस्कुराई
1: पहले जरा आप मुस्कुराई।

0: शांति और श्रद्धा के साथ भक्ति, प्रेरणा और सुकून भरे गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर मस्ती पे भक्ति सुबह 6 बजे।
1: तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। फोकस ऑन डूइंग योर ड्यूटी विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द रिजल्ट्स।

हर सुबह एक नई शुरुआत है, मन में शांति हो तो दिन अपने आप सुंदर बन जाता है। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति, रेडियो मस्ती 24/7 पर।

की पहली रोशनी के साथ अपने मन को भक्ति और प्रेरणा से रोशन कीजिए। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।

0: एक ही ईश्वर है, उसका नाम ही सत्य है। There is one God and His name is the truth.
1: यास्क मुनि ने कहा है कि मंत्र के अर्थ से मंत्र की ध्वनि अधिक प्रभावकारी होती है। ध्वनि में भी यदि मंत्र का मूल बीज मंत्र हो तो उससे पूर्ण सिद्धि प्राप्त होती है। जिस मंत्र में बीज और शब्द दोनों का यथाविधि प्रयोग किया गया है, अतः समस्त रिद्धि सिद्धि, धन संपदा, संतति प्राप्त करने के उपायों में इस मंत्र का जाप, श्रवण, मनन बड़ा उपयोगी माना जाता है।

तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। फोकस ऑन डूइंग योर ड्यूटी विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द रिजल्ट्स।

पहली रोशनी के साथ अपने मन को भक्ति और प्रेरणा से रोशन कीजिए। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।

तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। फोकस ऑन डूइंग योर ड्यूटी विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द रिजल्ट्स।

0: You're tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.
1: 21 तारीख को हम कह रहे हैं कि साड़ी गली आया करो, आया करो, आया करो, आते ही रहा करो और जाया मत करो.
2: This is Masti Madness on Radio Masti 24/7.
1: क्या हुआ?
3: ये तो मतलब थोड़ी सी फॉर्मेलिटी वाली बात हो गई. वैसे तो आपने आना ही है, फ्राइडे वाली मॉर्निंग है, आप कहाँ ही जाओगे.
1: वेरी वेरी ट्रू. जी हाँ बिल्कुल, फ्राइडे को हम बुलाएं ना बुलाएं, आप बिल्कुल आ सकते हैं. हमारे बहुत सारे दोस्त इस समय बोलने लग चुके हैं कि भाई फ्राइडे मॉर्निंग के शो के लिए मुझे रख ले, मेरी आवाज़ आज बहुत ऐसी वाली हो रही है, वैसी वाली हो रही है. तो भाई हमारे पास एप्लीकेशंस भी आ रही हैं फ्राइडे मॉर्निंग के शो के लिए. तो अगर आप में से कुछ लोग हमारे साथ यहाँ बैठ के गंदी बातें करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम.
3: Now I'm curious, what is this Friday morning early आवाज? Like it's not even the husky आवाज we are talking in. We are like, मतलब ये तो late night वाला show होता तो बात कुछ अलग थी.
1: Honestly अंतरा, लोगों को लगता है कि there is room for improvement. जो बातें हम करते हैं यहाँ पर सुबह सुबह, I think उसके लिए अगर हमारी husky voice होगी तो बहुत ही मजा आएगा. Good morning, this is Masti Madness. ऐसे constipated आवाज लगती है मेरे को ये सुबह के time पे, है ना?
3: सुबह के टाइम पे ऐसे लगती है. आप सोचो बाकियों का हालत है पूरे के पूरे फ्राइडे वाले दिन.
1: हाँ.
3: कहते अब जाए कहाँ, कैसे काम कैसे होगा अब.
1: भाई साहब मैं तो सही बात,
3: ये जनहित में जारी है. we think about you a lot, that's why we don't do all of these.
1: Absolutely. लेकिन मैंने बहुत बार ये कहा है सिंगापुर की सरकार को कि हमें दे दो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑफ आपकी पॉपुलेशन की तरफ ध्यान देने का. सो वो हम बिल्कुल कर देंगे फ्राइडे के अपने शोज के साथ में. इसी के साथ में शुरू होते हैं यहाँ पर गंदी गंदी बातों का सिलसिला पूरे के पूरे 10 बजे तक रहेगा. क्यों अंतरा रहेगा?
3: रहेगा रहेगा बिल्कुल रहेगा जी, एकदम ऐश करेंगे और क्या.
1: Awesome. तो आवन जावन, आपका सिर्फ आवन होना चाहिए, 10 बजे हम सब जावन करेंगे. ओके, कमिंग अप नेक्स्ट रेडियो मस्ती 24/7. हैप्पी फ्राइडे. Wow.

0: श्रेया जरा उठ के रेडियो मस्ती स्पीकर पे लगा देना।
1: भाई की डन है मम्मा।
2: जूटी लास्ट टाइम मैं उठा था ना,
1: मैं उठता था।
0: तेरी मेरी बनती नहीं पर तेरे बिना मेरी चलती भी नहीं। इस रक्षाबंधन इस नोक झोक से बंधे रिश्ते को और भी मजबूत करे ज्योति स्टोर्स एंड फ्लावर शॉप के साथ वन कैंपल लेन। राखी, लुम्बा और पूजा के सभी सामान के लिए आपका वन स्टॉप शॉप अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल एट ज्योति।

0: शाबा जी हाँ, यही गाना चल रहा था इस टाइम। अर्ड शिरन मतलब हम क्या कहते हैं पंजाबियों में,
1: अर्ड शिरन। क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो।
0: दिस इज मस्ती मैडनेस। रेडियो मस्ती 24/7 पर आपका स्वागत करते हुए यहाँ पर अंतरा और रेणुका।
2: इन्होंने ऐसा एड शरीन लगाया हुआ है, मैं लिटरली एड शरीन को हर जगह पर यू नो इसका गाना। मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर थी, परफेक्ट चल रहा था किसी तो कैफे में उसका एड शरीन का गाना। सो आई लिटरली से अरे ये तो सच अ ब्यूटीफुल सॉन्ग बाय एड शरीन, एंड दे वर लाइक दे वर गिविंग मी दोस लुक, एड शरीन लाइक हाउ डेसिफाइड यू हैव डन इट। ऑल ऑफ अस आर लाइक it comes with my job, it's okay. all credit goes to Renuka for this. अब मैं बुलाती नहीं हूँ, एड शरीन ही कर दिया मैंने।
0: ठीक है चलो कोई नहीं, एड शरीन भी खुश होगा कि भाई उसके बारे में कितने प्यार से हमने इतनी देर बात करी है। बट यू नो वट द न्यूज राइट नाउ इज कि अगला गाना जो हमारा है वो बात कर रहा है साड़ी की फॉल का, और हम यहाँ पर हमेशा बात करते हैं हेयर फॉल की, ठीक है। लेकिन हाल ही में उत्तराखंड की एक जो ये लेडीज है रेणु धरियाल, उन्होंने पता है क्या किया है, She's got her space in the Guinness World Records, okay? And her hair is 8 feet 10 inches. जी हाँ, इनकी तस्वीर आप बिल्कुल देख सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर इस टाइम पर। 8 feet 10 inch, सिर्फ और सिर्फ बाल। साड़ी के बाल सा कभी मैच किया, बताओ।
2: It is not meant for neither me nor the Renu sitting.
0: Not at all. मैं तो सोचती हूँ, यू नो व्हाट, उससे पूछा कि भैया क्या है ये, क्या है ये तुम्हारा पैशन। भाई इट इज द लॉन्गेस्ट हेयर ऑन अ लिविंग पर्सन, ओके। एंड रेणु जो है 2015 से अपने बाल उगा रही हैं, शी इज नेवर कट इट, एंड शी सेज कि इनका जो डिसीजन है ना, इट वाज भाई वो इन्फ्लुएंस हो गया था इंडियन ट्रेडिशन से, जहाँ पर लंबे बाल हिस्टोरिकली आर एसोसिएटेड विद ब्यूटी एंड कल्चरल आइडेंटिटी। तो उसने कहा भैया मेरे को लगा कि वाह भाई मैं तो बहुत ब्यूटीफुल हो जाऊंगी, तो इसलिए मैंने 2015 से बाल नहीं काटे। और अब जो यूक्रेन का पिछला वाला इंसान है जिसके 8 feet 5.3 inches बाल हैं, इसने 10 इंच करके यस भारत को एक ऐसी जगह पहुंचा लिया है जहां बाल बाल बाकी सारे देश बचे हैं और हमारे पास सिर्फ बाल ही बचे हैं। वाह
2: सो दैट्स व्हाई दे से इंचेस मैटर,
0: सर्टेनली लेंथ मैटर्स।
3: यू आर ट्यून्ड इनटू रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, कीपिंग यू कनेक्टेड एनीवेयर एनीटाइम द देसी वे।

0: बनाना चाहिए? आप बोलो, हम बनाएंगे। चाहे ब्रेकअप हो या क्रश का सीन,
1: ऑल इज वेल।
0: आपकी प्लेलिस्ट, आपकी मस्ती। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।
3: चेक इट आउट।

0: We are Radio Masti 24/7 live, keeping you connected Bollywood style anywhere, anytime.
1: एक बाल से दूसरे बाल तक जाते हुए रेणुका एंड अंतरा ऑन मस्ती मैटर्स. मस्ती मैटर्स जहां न्यूज भी होती है.
2: आज तो बाल दिवस ही मना रहे हैं हम, यहाँ पर बात कर रहे हैं बालों की एक के बाद एक. गुड मॉर्निंग, इट इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7. अंतरा, क्या खबर है?
1: आपने बात की लंबे बालों की, मैं बात करूंगी छोटे छोटे बालों की, एकदम नन्हे मुन्ने ऐसे. एंड नॉट वेयर यू आर थिंकिंग, बिकॉज इट्स फ्राइडे शो. ना, मैं वो बालों पे तो बिल्कुल भी नहीं जा रही हूँ, मैं तो आंखों की आईलैशेस की बात कर रही हूँ. वैरायटी ऑफ ट्रेंड्स विच कीप ऑन कमिंग इन द मार्केट राइट नाउ. एक ट्रेंड विच इज पुशिंग सम मेन टू कट और ट्रिम अपने आई लैशेस.
2: ओह माय गॉड, मेरे से पूछो यार, मैं एक्सटेंशन करा
1: मोर. हाँ, टू अपियर मोर वॉट मैस्कुलिन. अब तुमने इसमें भी जेंडर बायस कर दिया, मतलब अब पलके भी बेचारे. एंड आई लव मेन विद यू नो ब्यूटीफुल लैशेस. डू आई गेट जेलस? कभी की कुछ कुछ बंदों की कितनी खूबसूरत आंखें होती है, बट बिग बिग आई लैशेस, उनको देख के लगता है भाई मेरे अगर होते तो मतलब मजे ही आ जाते. एंड दे आर कटिंग इट फॉर जस्ट अ ट्रेंड, क्योंकि उनको मैस्कुलिन लगना है. गाइज, नो गाइज, नो गाइज, व्हाट इज
2: या द शेप ऑफ द आई लुक्स सो ब्यूटीफुल विद लॉन्ग आई लैशेस. एंड मतलब आप सोचो, हम कैस्टर ऑयल लगा लगा के, एक्सटेंशन करा करा के परेशान हो गए हैं कि भैया किस तरह से उग जाए, और आप काट रहे हो. बट दिस इज ऑल्सो रिमाइंडिंग मी ऑफ माई फ्रेंड हुज हस्बैंड इज बॉल्ड. ओके, नॉट मतलब ही इज बॉल्डिंग वेरी क्विकली एंड शी हैज लॉन्ग हेयर. सो उसके जब बाल बाथरूम में उसको दिख जाते हैं कोम करने के बाद में, ही कीप्स पिकिंग देम अप एंड सेइंग बाल ही बाल है, बाल ही बाल है. तो शी सेज, हाँ जस्ट बिकॉज यू आर जेलस, तुम्हारे है ही नहीं तो गिरेंगे क्या?
3: Everybody's talking about peace in the world. All we get to see is the pain and the hurt. We don't want no war. We don't want no fights, no guns, no bombs, no fists or the knives.

0: इन बेशरम रंगों से बढ़ते हैं आगे। रेडियो मसी 24/7 पर स्वागत है आपका एक बार और। दिस इज रेणुका एंड ऑफ कोर्स देयर इज अंतारा विद मी ऑन अ मस्ती मैडनेस।
1: This is Masti Madness on Radio Masti.
2: हाँ जी हाँ जी, वही आपका खास खास कार्यक्रम जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अतरंगी बातें होती है, because apparently हम भी अतरंगी ही है। Bipolarity.
0: बिल्कुल बिल्कुल। So भाई, बचपन से हमें एक ही बात सिखाई गई है, मुंह में अगर कुछ डालो तो सोच समझ के डालो, है ना अंतरा? आपको मैं आज फ्राइडे के शो पर भी यही समझाना चाहूंगी, क्योंकि एक एक छोटी सी लड़की ने, आप बिल्कुल गलत मत सोचिए, जो होता है ना स्कूल में बैठे बैठे मुंह में पेन डाल देते हैं हम लोग, और पेन डालते हैं तो उसका कभी कभी जो ढक्कन होता है जो पीछे लगा के हम मुंह में डालते हैं वो कभी कभी अंदर भी जा सकता है। सो वेल व्हाट हैपेंड वाज दैट ये जो पेन का ढक्कन है इट रिमेन्ड लॉज्ड उस लड़की के अंदर ब्रोंकस, मतलब कि उसके लंग्स के वहां पर 7 साल तक। और जो मल्टीपल डॉक्टर्स हैं उन्होंने हमेशा उसको देखा कि भाई इसको क्यों सांस की प्रॉब्लम हो रही है, एवरीथिंग दे केप सेइंग ट्यूबरक्यूलोसिस, टीबी है या एस्थमा है। देन फाइनली जब वेट लॉस होने लगा, परसिस्टेंट कॉफ होने लगी, बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि हो सकता है इन्फेक्शियस डिजीज हो रही हो, कुछ एंटीबायोटिक्स भी चेप दिए एंड एवरीथिंग, एंड देन ऑल इट टुक वाज एन एक्सरे टू फिगर आउट दैट वहां पर लंग्स के पास में एक ढक्कन जो पिछले 7 सालों से वहां पर बैठा हुआ था, obviously that was the one causing the issue. अब तुम ही बताओ बहन क्या है ये?
2: मतलब कितनी सारी चीजें हम लोग करते थे बट हमने कभी उस पे इतना ध्यान ही नहीं दिया हुआ है। This कैप को चबाने वाला थिंग वो सच अ नॉर्मल थिंग इन स्कूल, क्योंकि हमारे रेनॉल्ड्स के पेन के जो ब्लू कलर के नीले रंग के कैप होते थे ना उसका हेड हमेशा चबाया हुआ ऐसा, क्योंकि यू नो हमेशा उसको वैसा ही मिलता था।
0: तो वो चबाते चबाते इसने खा लिया और शी डिडंट बॉदर टू टेल एनीबॉडी और व्हाटएवर हैपेंड, एंड देन इट्स लाइक अच्छा चलो खा लिया तो खा लिया, बट प्लीज डार्लिंग बताओ तो सही।
3: हे डार्लिंग्स, यू मैड यू
0: You mad you, but what to do?
2: You mad you.
0: Yeah, you mad you.
2: Yeah. Mm.

0: बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: छोटी छोटी बातें छोड़ो और बड़े बड़े हिट सुनो। आपके रिक्वेस्ट ही बनाएंगे शो का ब्लॉकबस्टर प्लेलिस्ट। रोमांटिक, फिल्मी, पार्टी वाइब्स, सब मिलेगा यही के यही। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।
3: चेक इट आउट।
4: श्रेया जरा उठ के रेडियो मस्ती स्पीकर पे लगा देना।
5: बाय की डन है मम्मा।
6: ड्यूटी
7: लास्ट टाइम मैं उठा था ना,
6: मैं उठता था।
4: तेरी मेरी बनती नहीं, पर तेरे बिना मेरी चलती भी नहीं। इस रक्षाबंधन, इस नोक झोक से बंधे रिश्ते को और भी मजबूत करें ज्योति स्टोर्स एंड फ्लावर शॉप के साथ, वन कैंपल लेन। राखी, लुम्बा और पूजा के सभी सामान के लिए आपका वन स्टॉप शॉप, अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल एट ज्योति

0: Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore.
1: Check it out.
2: Baba Jiggy Booty, Baba Ji is having some other booty altogether. Let's talk about it.
3: Oh, Baba Ji is having a life, huh?
4: Crazy दुनिया, crazy खबरें, और हमारा ये crazy.
3: एक सिमरन के बाबूजी थे और एक ये वाले बाबूजी हैं.
4: Radio Musty 24/7.
3: हम हैं Radio Musty 24/7. जी हम Musty Madness. अंतरा कौन बाबूजी बताओ.
2: बाबा जी जो है, बाबा जी काफी सारा ज्ञान बांट रहे. बाबा जी वैसे भी जो है जाने जाते हैं काफी ज्ञान बांटने के लिए, काफी फनी ज्ञान बांटने के लिए भी जाने जाते हैं. तो आजकल बाबा जी ने एक मोर्चा निकाला है हिंदुस्तान में कि ABCD वाला ए फॉर एप्पल नहीं होना चाहिए. इट शुड स्टैंड फॉर ए फॉर अमरूद.
3: ये क्यों?
2: Why? Because according to Babaji, apple is a foreign fruit. तो इसीलिए A for apple नहीं होना चाहिए, A for अमरूद हो जाना चाहिए. उसको convert कर. मैं सिर्फ like in my humble opinion बाबाजी से, अगर तो बाबाजी ने थोड़ा सा ChatGPT कर लिया होता तो उनको पता चल जाता कि अमरूद भी उस हिसाब से फॉरेन ही है.
3: ओ, वो तो बड़ा ही डीप है. लेकिन अगर बाबा जी ने ये बोला है तो जी फॉर गुआवा नहीं होगा तो जी फॉर क्या होगा, ये बताइए. मैं बोलूं कुछ क्या?
5: मैं निकला ओ गड्डी लेके.
2: जी फॉर वही होगा जो सबके दिमाग में अभी आ रहा है.
3: तभी तो मैंने कहा कंप्लीट कंप्लीट मैं करूं या जी फॉर गड्डी जो ये गाना है.
2: जी बिल्कुल
3: जी. तो अब ऐसा है,
2: पीपल आर इंटेलिजेंट काफी, सबको समझ में आ ही गया होगा.
3: हाँ, जो समझ गया वो समझदार है. गुड मॉर्निंग एंड हम आपको मिलेंगे अगले घंटे. लेकिन ए फॉर एप्पल, बी फॉर बड़ा एप्पल, सी फॉर छोटा एप्पल, डी फॉर दाग वाला एप्पल, ई फॉर ए केड़ा एप्पल. दैट्स माय फेवरेट.

0: Monday Blues. Not on our watch. Wake up to world news, fresh updates aur thoda Bollywood ka maza bhi. Make your Mondays matter with the morning show with Renuka, 7 AM onwards.
1: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.
2: Check it out.
3: Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।